FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। सुप्रभात के साथ हार्दिक अभिनंदन।

0: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है, जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यू

0: इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102 व 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 meter अर्थात 1413 kHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। आइए प्रभात काल के कुछ पल समर्पित कर दें परम परमात्मा के श्री चरणों में, लीन हो जाएं प्रभु भक्ति में, भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना के माध्यम से।

शिव के चरणों में है मिलते सारे तीर्थ चारों धाम, करनी का सुख तेरे हाथों में और शिव के हाथों में है परिणाम।

सुबह सवेरे उठकर करूं प्रभु चरणों में प्रणाम, इस जीवन का करेंगे मेरे प्रभु कल्याण।

मुझे शाम तेरी दरकार है, तू ही सांवरे मेरी सरकार है, तू ही मेरी नैया की पतवार है, तू ही मेरे नैनों का श्रृंगार है, तुझ पर ये जीवन निसार है।

गंगा यमुना जैसा पावन कर दो प्राण धन नाम जपन से तन मन मेरा। मंगला दर्शन देकर यह वर दो राधा रमण जो छूटे न कभी सहारा तेरा।

मृग खाल कमर कसी गिरजा संग संग है, मस्तक पे चंद्र की कला भस्म भभूति अंग है, शंकर तेरी जटा में बहती धार गंग है।

आज की अर्चना को सुशोभित करने वाले पुष्प स्वर थे हरिओम शरण अनूप जलोटा, राजेश मिश्रा और हरि हरण के। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, ईश्वर सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमें ही भरना है। इसी के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना को देते हैं विराम।

अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। FM 102 व 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप बने हुए हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान, मुख्य स्वर अनुराधा पौड़वाल और साथियों के, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दे। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण सुन रहे थे। मुख्य स्वर था अनुराधा पौडवाल का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। एफएम 102 व 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। लीजिए सुनिए पर्यावरण चेतना से जुड़ा कार्यक्रम आबोहवा। लघु वार्ता का विषय है परिंदों का संसार। वार्ताकार हैं सत्यव्रत सिंह।
1: परिंदों और पर्यावरण का अटूट संबंध है। पक्षियों का संसार एक रहस्यमय दुनिया संजोए रहता है, जिसे हम सामान्यतः नजरअंदाज कर देते हैं। पक्षी हमेशा मानव जाति के लिए उत्सुकता का विषय रहे हैं। आप गौरैया, कौवा, कबूतर, जंगली मैना और बुलबुल को देखें तो पता चलता है कि पक्षी अपने अंदर एक अद्भुत दुनिया संजोए रखते हैं। परिंदों को देखने सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, जबकि स्वाद की शक्ति कम और सूंघने की शक्ति बिल्कुल नहीं। आंखों के तेजी से घूमने के कारण ये किसी भी चीज को तुरंत देख करके पहचान लेते हैं। बहुत से पक्षी मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलते हैं। इस दौरान वो बहुत लंबी लंबी उड़ानें भरते हैं। उड़ान की दूरी हर पक्षी की अलग अलग होती है, जो कुछ किलोमीटर से लेकर के

0: कई हजार किलोमीटर तक हो सकती है। पक्षी अपने अंडों के लिए कलात्मक घोंसले बनाते हैं। बीवर वर्ड्स घास को बुनकर घोंसला बनाती है तो वाटर रेट, स्टार्ट काई और मास्क कीप के आकार का घोंसला बनाती है। मैगपाई लकड़ी के टुकड़ों से पेड़ों के ऊपर घोंसला बनाती है तो ग्रे बुडेड बोस बैपलर घास को मोड़ करके वार्न स्वेलो अपनी बीट और गीली मिट्टी को मिलाकर के घोंसला बनाती है। इन्हीं घोंसलों में ये पक्षी अंडे देते हैं और उन्हें अपने शरीर की गर्मी से सेते हैं। ये अपने बच्चों की देखभाल तब तक करते हैं जब तक कि स्वयं अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो जाते। अकेले भारत में ही 1500 से ज्यादा प्रजातियां पक्षियों की मिलती हैं। हिमालय तो पक्षियों की जन्नत कहा जाता है। किसी भी वर्ड वॉचर के लिए ये सपना होता है कि हिमालयी इलाकों में जाकर के वो इन विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखे। मानव के लिए कई मायनों में ये फायदेमंद होते हैं। ये नुकसानदायक कीड़ों को खा करके उनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं। कैनेडियन एंटोमोलॉजिस्ट के अनुसार पोटैटो बग का एक जोड़ा एक साल में लगभग 60 मिलियन का हो जाता है। इसी प्रकार चिंच बग, जो घास के लिए नुकसानदायक है, एक साल में अपनी 13 प्रजातियां पैदा कर देता है। एक कैटरपिलर अपने वजन का दोगुना खा जाता है जो उसे फसलों से मिलता है। टिड्डी कैप्सूल के आकार में अंडे देती है और एक कैप्सूल में लगभग 100 अंडे होते हैं। यदि ये सब कीड़े जन्में और बड़े हो जाएं तो पूरी दुनिया में इनका ही राज हो जाएगा। पक्षी न सिर्फ इन कीड़ों को खाते हैं बल्कि उनके अंडों को भी खत्म करते हैं, अर्थात ये हमारे लिए मित्रता का व्यवहार करते हैं। हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में इनकी भूमिका होती है। प्यारी सी गौरैया भी टिड्डी और अन्य कोमल शरीर वाले कीड़ों को खाती है। हम अक्सर ये देखते हैं कि कई पक्षी जानवरों के ऊपर बैठे रहते हैं, जो बड़ा हास्यास्पद लगता है। पर वे जानवरों की पीठ पर सवारी के लिए नहीं बैठे होते, बल्कि उनमें से बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं जो जानवरों के घातक कीड़ों को खाते हैं और जानवरों को बीमारियों से बचाते हैं। चीन ने एक बार गौरैया को मारने का अभियान शुरू किया था। तर्क था यह चिड़िया फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इससे गौरैयों को खत्म तो कर दिया गया, पर फसलों के जब परिणाम आए तो पता चला कि फसलें अब न के बराबर रह गई हैं। पता लगा कि गौरैया खेतों से बीज नहीं बल्कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाती थी। उसके बाद वहां फिर से गौरैयों को अन्य देशों से मंगवा करके उनका प्रजनन करवाया गया और बहुमूल्य पक्षी का दर्जा दिया गया। उल्लू, कैस्ट्रल और बाज चूहों को पकड़ते हैं। पक्षी बहुत अच्छे सफाई कर्मचारी होते हैं। जब भी कोई जानवर मरता है तो पक्षी उसे खा करके साफ कर देते हैं। किंगफिशर, हिरॉन और कॉमरेंट आदि पक्षी पानी को साफ रखने में उपयोगी होते हैं। पक्षी पेड़ों और फूलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और पर्यावरण को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लगभग 60 ऐसी प्रजातियां हैं जो पक्षियों के द्वारा फैलती हैं। कोरल ट्री, जिसका उपयोग दक्षिण भारत में चाय और कॉफी के खेतों में छाया के लिए किया जाता है, उसे भी पक्षियों के द्वारा ही फैलाया जाता है। यदि ये पक्षी विलुप्त हो जाएं, तो पर्यावरण के विनाश को कोई नहीं बचा सकता। मॉरिशस में पाए जाने वाले डोडो पक्षी का इतना अधिक शिकार हुआ कि अंततः वो विलुप्त हो गया। जब तक यह पक्षी था तब तक केवलिया मेजर पेड़ बहुयात में मिलता था, पर अब उस पेड़ का भी नाश हो गया है। बाद में शोध के द्वारा ये पता चला कि केवलिया मेजर पेड़ बीज का जो प्रसार होता है वो इसी पक्षी के द्वारा होता था, जिसकी वजह से अब ये पेड़ भी पूरे मॉरिशस से गायब सा हो गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल दिन प्रतिदिन प्रदूषित होने, पर्यावरण और हमारे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से इन पक्षियों के अस्तित्व पर जो खतरा आ गया है, उसको अब हमको समझना होगा। हमने पक्षियों के रहने के स्थानों को इतना अधिक नुकसान पहुंचाया है कि उनका जीवन संकट में है। पहले से घरों में एक खिड़की नुमा आकार बना रहता था, जिसमें कई तरह के पक्षी अपना घोंसला बनाते थे और मानव के साथ रहते थे, जिसमें से गौरैया सबसे प्रमुख पक्षी था। परंतु अब मकानों में ऐसा कोई स्थान नहीं मिलता, तो जरूरत इस बात की है कि अपने पर्यावास के आसपास पक्षियों को भी कुछ स्थान उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि पर्यावरण को जो हानि होती है उसको हम बचा सकें।
1: परिंदों का संसार, ये लघु वार्ता अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम आबोहवा में। वार्ताकार थे सत्यव्रत सिंह, संयोजन था हिमांशु नामा का। समय है कार्यक्रम विवरण का। लीजिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। स्थानीय सूचनाओं से जुड़ा कार्यक्रम नमस्कार कोटा सुबह 7 बजे आप सुनेंगे। सुबह 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम महिला जगत। इसके अंतर्गत चर्चा होगी अव्यवस्थित

घर तो अशांत मन विषय पर पारिवारिक सामंजस्य से इस विषय पर जानकारी देंगी श्रीमती रितु। सुबह 8:15 पर काव्यांजलि के अंतर्गत आप सुनेंगे चंपालाल हाड़ोतिया का काव्य पाठ। सुबह 7:30 पर फिल्म संगीत में एक ही फिल्म से आप सुनेंगे आज फिल्म होगी आ अब लौट चलें। सोगम संगीत का लुत्फ उठाइएगा सुबह 8:30 पर। सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। दोपहर 12:00 सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सायं 7:30 पर आज आप सुनेंगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला की रेडियो रिपोर्ट। शाम 5:00 कार्यक्रम युवाणी में आज का संवाद होगा व्यवधानों से बचाएगा ध्यान विषय पर। परिवेश हमारा इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सक्षम कोरल रीफ। नॉलेज कॉर्नर में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्म जयंती इस विषय पर आप सुनेंगे। साथ ही सुनिएगा करंट अफेयर्स और रोजगार सूचनाएं। चौपाल कार्यक्रम सायं 7:00 होगा। चर्चा होगी सामाजिक वाणी के विषय पर। मक्का की उन्नत किस्में और खेती विषय पर डॉक्टर प्रेम कुमार प्रेमी मीणा जानकारी देंगे। फिल्म संगीत सुनेगा शाम 6:05 पर रात्रि 8:00 और रात्रि 9:00। विविध भारती के कार्यक्रम और समाचारों का समय यथावत रहेगा। हम आपको एक बार फिर से बता दें सायं 7:30 पर आप सुनेंगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला की रेडियो रिपोर्ट। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.103.6 MHz मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 kHz पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ

एफएम 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर नव ऊषा काल आया है। आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल सबको भाया है। जहाँ किया जाए कुछ विचार, हो जिम्मेदारियों की बात या जानकारियों की, गीत संगीत की छटा बिखेरी जाए, हम लेकर आ गए हैं विविधताओं से भरा आपका मनचाहा कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

सुप्रभात कह अभिवादन करें हम, शुभ दिवस की कामना करें हम, आपका अभिनंदन स्वागत करें हम, आपके मंगलमय दिवस की कामना करें हम। कार्यक्रम का शुभारंभ शशि सोनी की आवाज के साथ।

और ये रहा आज का सुविचार। हद शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ सुनहरी यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर धूप का किया तो ये तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। अनुभव और सीख केवल संघर्षों का सामना करने पर ही मिलती है। जो जीवन बिना किसी चुनौती के आराम से बीत जाता है वह अर्थहीन है। यहाँ धूप का मतलब जीवन की परेशानियों, चुनौतियों और कड़े अनुभवों से है। धूप में चलने पर ही व्यक्ति को अनुभव होता है, तजुर्बा मिलता है, यानी संघर्ष करने से ही अनुभव मिलता है। आरामदायक जीवन, हमेशा छाव में रहना किसी भी व्यक्ति को मजबूत नहीं बनाता। यदि आप हमेशा आराम की तलाश में रहेंगे तो जीवन में कुछ नया बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। जब तक आप मुश्किलों का सामना नहीं करते, ठोकर नहीं खाते, तब तक आप जीवन के मूल सत्य को नहीं समझ सकते। तो यह पंक्ति अक्सर लोगों को विपरीत परिस्थितियों में लड़ने और मजबूत बने रहने की प्रेरणा देती है।

हमारे द्वारा उठाया गया हर कदम, हमारा हर लक्ष्य, हमारे सभी संबंध आखिरकार हमें प्रसन्नता की ओर ले जाने की इच्छा से ही प्रेरित होते हैं। प्रसन्नता केवल एक भाव नहीं बल्कि हमारी वास्तविक स्थिति है। प्रसन्नता सिर्फ एक क्षणिक भाव नहीं है बल्कि यह हमारी असली पहचान है। यह आत्मा की प्राकृतिक अवस्था है। जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को समृद्ध होने के लिए प्रसन्नता की आवश्यकता होती है। अगर प्रसन्नता न हो तो सबसे बड़ी सफलता भी अधूरी सी लगती है, लेकिन अगर प्रसन्नता हो तो छोटे से छोटे पल भी संपूर्ण और संतोषजनक महसूस होते हैं। हमने लंबे समय तक यह माना कि प्रसन्नता उपलब्धियों, संपत्तियों या रिश्तों में छुपी हुई हो। सोचा कि एक सही नौकरी मिल जाए, एक आदर्श जीवन साथी मिल जाए, हर चीज हमारी योजना के अनुसार हो जाए तो हमें प्रसन्नता मिल जाएगी। और कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगा भी कि हम प्रसन्न हैं, लेकिन फिर मन कुछ और खोजने लगा। कोई भी चीज प्राप्त करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ अधूरा रह गया। इसका कारण यह है कि प्रसन्नता कभी भी बाहरी चीजों में थी ही नहीं। उनसे मिलने वाला सुख स्थायी था, जबकि सच्ची प्रसन्नता स्थायी होती है और वह हमारे अंदर से आती है। एक छोटे से बच्चे की कल्पना करें, हंसता खेलता हुआ, एकदम निश्चिंत। यही आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। लेकिन समय के साथ तनाव, अपेक्षाएं और लगाव बढ़ते जाते हैं और हम अपने शरीर, भूमिकाओं, रिश्तों, पदों और धन संपत्तियों से जुड़कर अपनी पहचान बनाने लगते हैं। बस यहीं से हमारी प्रसन्नता अस्थिर और बाहरी कारकों पर निर्भर होने लगती है। जैसे सूर्य हमेशा चमकता रहता है भले ही बादल उसे कितना भी ढक लें, वैसी प्रसन्नता हमेशा हमारे अंदर ही है भले ही तनाव, चिंता या नकारात्मकता उसे कुछ समय के लिए ढक ही क्यों न दे। योग का अभ्यास निर्भरता और संदेह रूपी मानसिक बादलों की परतों को धीरे धीरे हटाकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप प्रकाश को प्रकट करता है। कहते हैं प्रसन्नता की एक तस्वीर सहेज कर रखना चाहिए। इसे रखने से आपको अपने जीवन के सबसे सुखद क्षणों को हमेशा ताजा रखने में मदद मिलती है। यह मानसिक तनाव को कम करने, कठिन समय में सकारात्मक ऊर्जा पाने और अपनों के साथ मीठी यादों को सजोने का एक बेहतरीन माध्यम है। प्रसन्नता की तस्वीर को सहेज कर रखना अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। खुशहाल यादों की तस्वीरें देखने से दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी के हार्मोन का स्त्राव होता है, जो तनाव को दूर करने में मददगार है। जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, तब खुशी की पुरानी तस्वीरें आपको यह याद दिलाती हैं कि जीवन में अच्छे पल पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। तस्वीरें बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती हैं। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत की तरह काम करती है, जो उन्हें परिवार और इतिहास से जोड़ती है। खुशियों के पलों को देखने से मन में कृतज्ञता का भाव जागता है, जिससे आप वर्तमान के प्रति अधिक सकारात्मक हो जाते हैं। तो प्रसन्नता की एक तस्वीर जरूर सहेज कर रखिए।

प्रोफेसर प्रशांत चंद महालनोबिस 29 जून 1893 से 28 जून 1972 तक इनका जीवन काल रहा। भारतीय सांख्यिकी का जनक इन्हें माना जाता है। वे एक महान वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे जिन्होंने भारत में सांख्यिकीय विज्ञान और आर्थिक नियोजन की नींव रखी। सांख्यिकी और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का की हम बात करें तो उन्होंने 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में प्रतिष्ठित भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की। महालनोबिस दूरी का आविष्कार भी उन्होंने किया जिसका उपयोग बहु भिन्न रूपी डेटा विश्लेषण और वर्गीकरण के लिए किया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले योजना

आयोग के सदस्य थे। 1956 से 1961 की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा उन्होंने ही तैयार किया था, जिसे महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण था। उनके जन्मदिन 29 जून को भारत सरकार द्वारा हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सांख्यिकी के अलावा उनका परिवार 19वीं सदी के बंगाल पुनर्जागरण से भी जुड़ा हुआ था। उन्हें 1968 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम आज मना रहे हैं। यह दिन भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं, जो देश के सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में अग्रणी थे। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, राष्ट्रीय विकास और सामाजिक आर्थिक योजनाओं के में आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का उद्देश्य है। वर्ष 2026 की थीम 20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना है।

0: श्रोताओ एक आवश्यक सूचना सुनिए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 31 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसके लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा की जाएंगी। पोर्टल का पता है https://awards.gov.in। पोर्टल का पता पुनः सुने https://awards.gov.in। इसके माध्यम से ऑनलाइन ही ये नामांकन और अनुशंसाएं जमा की जानी है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई सन 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा। तो आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। हमारी असाधारण जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण आधार है। इसमें सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय स्तनधारियों तक सभी जीवित प्राणी और उनके जटिल पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। यह विविधता हमारे पर्यावरण को संतुलित और लचीला बनाती है और हर पल हमें शुद्ध हवा, पानी और भोजन प्रदान करती है। एक ही प्रजाति के जीवों के जीन्स और डीएनए में पाई जाने वाली विभिन्नता यह जीवों को बदलते पर्यावरण और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग प्रजातियों जैसे पक्षी, पेड़, स्तनधारी और कीड़े का विस्तार की हम बात करें, वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 1 करोड़ प्रजातियां हैं। जंगलों, महासागरों, रेगिस्तानों और घास के मैदानों जैसी विभिन्न प्राकृतिक आवासों का विविध जाल यहां पर है। जंगल और महासागर विशाल कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं जो ग्रीन हाउस गैसों को सोखकर जलवायु को स्थिर रखते हैं। आधुनिक चिकित्सा में उपयोग होने वाली 40% से अधिक दवाएं प्रकृति में मौजूद रासायनिक विविधता से प्राप्त होती हैं।

हम जिन फसलों का सेवन करते हैं उनका लगभग 75% हिस्सा कीटों और अन्य जानवरों द्वारा किए जाने वाले परागण पर निर्भर करता है। तो हमारे लिए कितनी आवश्यक है ये जैव विविधता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मानवीय गतिविधियों, प्राकृतिक आवासों के विनाश और जलवायु परिवर्तन के कारण यह अनमोल संपदा खतरे में है। लाखों प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है, जिससे संपूर्ण खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार प्रकृति आधारित समाधान ही इस संकट से निपटने और हमारे अस्तित्व को बचाने का सबसे प्रभावी मार्ग है। तो हम जितना सहयोग कर सकते हैं हमें करना चाहिए इसको बचाने में।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: लीजिए कार्यक्रम नमस्कार कोटा में सुनवा देते हैं आपको ये गीत।

और लीजिए अब कुछ सूचनाएं आपको दे देते हैं। बात करें मौसम की, मानसून राजस्थान में जल्द प्रवेश करेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि आगामी दिनों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं और प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोटा शहर में रविवार को दिनभर उमस भरी गर्मी रही, शाम होते होते मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। तो बात करें हम तापमान की, तो कोटा का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद सोमवार से शहर सहित जिले भर के सभी स्कूल पुनः खुल जाएंगे। लंबे अवकाश के बाद स्कूल परिसरों में एक बार फिर से बच्चों की चहल पहल लौटेगी।

लीजिए बिजली बंद की सूचना हम आपको दें। सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक कैनाल रोड, गायत्री विहार, मीराबाई आवासीय योजना, नोहरा रोड, श्री खाटू श्याम मंदिर आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति नहीं होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 तक मोतीनगर, मोतीनगर विस्तार, अक्षरधाम और सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 तक कृष्णा नगर, गली नंबर 1-2, वसुंधरा विहार, त्रिवेणी आवास और बजरंग नगर, इन स्थानों पर बिजली आपूर्ति नहीं होगी।

को सहना होगा जो वर्षा के समय बहती है। इसी प्रकार जीवन में यदि सप्त रंगों का अनुभव करना है तो समस्याओं की वर्षा को भी सहना होगा, तभी तो यह प्राप्त होगा। एक नन्हा शिशु जब उसे भूख लगती है तब वह अपनी माता को कह नहीं पाता, उसे भी भूख की पीड़ा को सहना पड़ता है, और जब वह पीड़ा में रोने लगता है तब माता को ज्ञात होता है कि इस नन्हे शिशु को भूख लगी है। बैठे बिठाए संसार में कुछ प्राप्त नहीं होगा, सुख भोगना है तो पीड़ा भी सहनी होगी, परिश्रम भी करना होगा। तो साहस के साथ हर पीड़ा का सामना कीजिए, शौर्य के साथ परिश्रम कीजिए।

इंद्रधनुष हम सभी को प्रिय है। आकाश में सप्त रंग देखकर मन आनंदित हो जाता है, किंतु ये इंद्रधनुष हर समय हर दिन नहीं दिखता, वर्षा के मध्य में दिखता है। यदि इंद्रधनुष देखना है, इसका आनंद उठाना है, तो वर्षा को सहना होगा, उस तीव्र पवन

इस संसार में सबसे अधिक कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा युद्ध करना, कोई कहेगा धन अर्जित करना, तो कोई कहेगा ज्ञान अर्जित करना। हर एक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है और अपने अपने अनुभव के अनुसार उसका उत्तर होगा। सामान्य रूप से देखा जाए तो इस संसार में सबसे अधिक कठिन है तप करना, अर्थात सब कुछ छोड़ छाड़ कर तप में अपने आप को विलीन कर देना। अब इससे अधिक इस संसार में क्या है? इस संसार में, समाज में, परिवार के मध्य रहते हुए धीरज के साथ रहना, ये है सबसे अधिक कठिन। क्योंकि जब आप तप करते हैं तो आपके धीरज को तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता, ना कोई मित्र होता है, ना कोई संबंधी और ना ही कोई और शत्रु है, वो भी नहीं होता। किंतु जब आप जीवन जीते हैं, समाज में, परिवार में रहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ ही जाता है जो आपके धीरज को बना रहने नहीं देता। तो सबसे बड़ा है धीरज। यदि हम धीरज धारण कर सकते हैं तो हम जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। हम आपको बता दें, संयोजन था तेजराम मीणा का, प्रस्तुति राजेश महावर की। और अब अनुमति दीजिए शशि सोनी को। नमस्कार कोटा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा, FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर आपका साथ बना हुआ है आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत। आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से और आज की हमारी फिल्म है आ अब लौट चलें। आ अब लौट चलें ऋषि कपूर द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 1999 में बनी थी और उनकी पहली और एकमात्र निर्देशित फिल्म थी।

ये गीत जो आप सुन रहे थे अलका याग्निक ने गाया। आ अब लौट चलें, इस फिल्म के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अक्षय खन्ना, राजेश खन्ना, ऐश्वर्या राय, सुमन रंगनाथन, नवीन निश्चल, कादर खान, परेश रावल, सतीश कौशिक, जसपाल भट्टी, विवेक बासवानी, हिमानी शिवपुरी, आलोक नाथ, मौसमी चटर्जी और विश्वजीत प्रधान, इन सभी ने इस फिल्म में भूमिकाएं निभाईं।

0: ये गीत आपने उदित नारायण और जसपिंदर नरूला की आवाज में सुना।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ जी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा,
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: इस फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया था और गीत समीर ने लिखे थे। रिलीज होने पर इसका साउंड ट्रैक काफी लोकप्रिय हुआ, सभी गाने खूब पसंद किए गए। लीजिए अब इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सायं 7:30 पर आप सुनेंगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला की रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही फिल्म से, और आज की हमारी फिल्म है आ अब लौट चलें। इस फिल्म में जो गीत हैं वो अलग अलग गायक कलाकारों ने गाए हैं। उनमें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू, सोनू निगम, शब्बीर कुमार, अभिजीत, विजेता पंडित, जसपिंदर नरूला और बाली ब्रह्म भट्ट। ये गीत अभी आपने उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में सुना, और लीजिए इसी फिल्म का ये गीत अब आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में।

0: अब लौट चलें। फिल्म में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में थे। यह ऐश्वर्या राय के करियर की शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी। सुपरस्टार राजेश खन्ना ने एक बहुत ही भावुक और यादगार किरदार इस फिल्म में निभाया था।
1: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ।

आ अब लौट चलें फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर औसत से कम प्रदर्शन के बावजूद इसके गाने काफी लोकप्रिय हुए थे।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी आ अब लौट चलें। संयोजन था राजेश महावर का। FM 102.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन

0: चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीति साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खोट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि

0: राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल दो फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
1: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
2: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
3: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमार

0: का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू, कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नौ भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: FM 102.6 MHz, मीडियम वेव 212.1 मीटर अर्थात 1413 KHz पर। यह है आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। हम लेकर हाजिर हैं, लीजिए सुनिए काव्यांजलि। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे चंपालाल हाड़ोतिया का काव्य पाठ।
1: एक गीत सुना रही छू। गीत में दो जना बातें कर रहा है कि आप परदेश में मत जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ और आप घर में काम करा, अपन दोरी लाला लाला करा। देखो गीत का माध्यम से साजन परदेसा मत जाओ जी, घर घर गार का चूला। साजन परदेसा मत जाओ, घर घर गार का चूला। ए गार का चूला जी, घर घर गार का चूला। साजन परदेसा मत जाओ, घर घर गार का चूला। अजी परदेसा की पीत बावली कदी न देगी साथ, परदेसा की पीत बावली सदा न देगी साथ। कतनो आचो देश अपनो म्हारी मानो बात, परदेसा की पीत बावली कदी न देगी साथ। कतनो आचो देश अपनो म्हारी मानो बात, हे साची बात बता दूं था मत बनिया फरो दूला। साजन परदेसा मत जावो, घर घर गार का चूला। साजन परदेसा मत जावो जी, घर घर गार का चूला। काकी जारी भाभी जारी, जारिया गांव का सारा। काकी जारी भाभी जारी, जारिया गांव का सारा। अरे खेता में तो

0: खेता में तो काम करा अपन भी लारा लारा ए आंगन अमर बेलड़ी अच्छारी छे फूला साजन परदेसा मत जाओ जी घर घर गार का चूला अजी लामो छोड़ो खेत आपनो इमे करा कमाई जी लामो छोड़ो खेत आपनो इमे करा कमाई जी ओरा की मेरा मत फाड़ो ये पेला की नाई जी ओरा की मेरा मत फाड़ो था पेला की नाई ए उबट गेले मत चालो अजी उबट गेले मत चालो दन आवेगा सोला साजन परदेसा मत जावो घर घर गार का चूला साजन परदेसा मत जावो जी घर घर गार का चूला अरे दन उगिया खेता पे जाओ शाम पड़िया घर आओ दन उगिया खेता पे जाओ सांझ पड़िया घर आओ देख पराई मत ललचाओ रूकी सूखी खाओ जी देख पराई मत ललचाओ रूकी सूखी खाओ ए आतन स्वारे बाट बुआरे छे घर का कोड़ा साजन परदेसा मत जाओ घर घर गार का चूला अजी नटा मल्यो छे मनक जमारो ई की करो समाल जी नटा मल्यो छे मनक जमारो ई की करो समाल एक हाथ सो साजन मारा कदी न लागे ताल नटा मल्यो छे मनक जमारो ई की करो समाल एक हाथ सो साजन मारा कदी न लागे ताल अजी धक धक करती होली में धक धक करती होली में मत पटको ने पोड़ा साजन परदेसा मत जाओ घर घर गार का चूला जी साजन परदेसा मत जाओ घर घर गार का चूला आंगन अमर बेलड़ी अच्छारी छे फूला साजन परदेसा मत जाओ घर घर गार का चूला।
1: और यह जो दूसरी कविता सुना रही चुमू

0: मत अनजान्या को साथ करे मत। और एक कविता और सुना दे छू। यो भी काई मनक जमारो काम बगड़ गयो घर को सारो, यो भी काई मनक जमारो काम बगाड़े घर को सारो। पड़ोसा का फेरा पाड़े, पड़ोसा का फेरा पाड़े, घर को छोरो रहे कमारो। यो भी काई मनक जमारो, यो भी काई मनक जमारो, काम बगड़ जा घर को सारो। मन का जान्या करे रात दन, मन का जान्या करे रात दन, घर हाली सो बोले खारो। यो भी काई मनक जमारो, यो भी काई मनक जमारो, घर को काम बगड़ जा सारो। पहला की तो मेरिया काटे, पहला की तो मेरिया काटे, घर को खेत पड़त चे सारो। यो भी काई मनक जमारो। अर बरस बीत गया खाता खाता, बरस बीत गया खाता खाता, नून तेल अर नाज उदारो। यो भी काई मनक जमारो, काम बगड़ जा घर को सारो। दस बाय दस का कमरा में, दस बाय दस का कमरा में, सारा ही घर का करे गुजारो। यो भी काई मनक जमारो, यो भी काई मनक जमारो, काम बगड़ जा घर को सारो। यो भी काई मनक जमारो।
1: काव्यांजलि के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चंपालाल हाड़ो।

हम आपको बता दें, आज सायं 7:30 पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला की रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे।

शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में आज का संवाद होगा, व्यवधानों से बचाएगा ध्यान। परिवेश हमारा में आप सुनेंगे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सक्षम कोरल रीफ। नॉलेज कॉर्नर में सुनिएगा प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद प्रशांत चंद महालनोबिस की जन्म जयंती, राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही आप सुनेंगे करंट अफेयर्स, रोजगार सूचनाएं, खेल गतिविधियां। सायंग 7 बजे कार्यक्रम चौपाल में चर्चा होगी सामाजिक वानिकी विषय पर। मक्का की उन्नत किस्में और खेती विषय पर जानकारी सुनिएगा डॉक्टर प्रेम कुमार प्रेमी मीणा से। जानकारी में आप सुनेंगे फसल विविधीकरण विषय पर।

FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर आपका साथ बना हुआ है आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। सुबह के 8:30 हो रहे हैं, लुत्फ उठाइए सुगम संगीत का। आज की हमारी सरगमी महफिल की पहली फनकार हैं मिताली सिंह, मौसीकी भूपेंद्र सिंह की और अल्फाज अश्क अम्बालवी के।

सोहम संगीत में लीजिए सुनिए अगला नायाब कलाम। गायकी अंदाज है अनूप जलोटा का, अल्फाज इसरार अंसारी के।

लीजिए सुनिए सोगम संगीत की अगली पेशकश। फनकार हैं जसवंत सिंह, तर्ज जगजीत सिंह की और नगमा निगार शादाब लाहौरी।

सुगम संगीत में लीजिए अब आप सुनिए गायकी अंदाज और मौसिकी पंकज उधास की। खूबसूरत अंदाज में लिखा जफर गोरखपुरी ने

लीजिए सुगम संगीत की आखिरी सौगात हम आपको सुनवाते हैं, आवाज़ और मौसीकी भूपेंद्र सिंह की, अल्फाज मलिक गुमनाम के।

अभी आप सुगम संगीत सुन रहे थे। FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया के सेशल्स में कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। आज और कल टीमें घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में, 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी और पूर्वी इलाकों में उमस से जनजीवन प्रभावित, श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री पार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार

0: है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में बनने वाली रिफाइनरी देश और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 4 जुलाई को होने वाले प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर कल बालोतरा के पचपदरा रिफाइनरी परिसर और प्रस्तावित जनसभा का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान की बहुप्रतीक्षित परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
1: पश्चिमी राजस्थान में एक ऐतिहासिक काम होने वाला है, कई वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे थे, और ये राजस्थान के भाग्य को बदलने वाली हमारी ये रिफाइनरी, हमारे युवाओं को रोजगार देने वाली हमारी ये। आज मैं यहाँ रिफाइनरी में आया हूँ, मैंने यहाँ व्यवस्थाओं का देखा है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, बाड़मेर बालोतरा में रिफाइनरी का उद्घाटन होने जा रहा है, जो आपको इंतजार था। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: गौरतलब है कि प्रधानमंत्री 4 जुलाई को देश के ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य के 59,217 बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई गई। ये अभियान आज और कल भी जारी रहेगा। अभियान के तहत राज्य के करीब 1,04,00,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत आज और कल स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगी। इसके लिए 75,000 से अधिक टीमें बनाई गई है, जिनमें मोबाइल और ट्रांजिट टीमें भी शामिल है। ये टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ईंट भट्टों और दुर्गम क्षेत्रों में मुस्तैदी से काम कर रही हैं, ताकि कोई भी बच्चा दवा से वंचित न रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा आज जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जनसहभागिता और उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 154 भामाशाह, 99 प्रेरक और 23 NRI दानदाता शामिल हैं। इन सहयोगियों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार के लिए 318 करोड़ रूपये का उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। देश भर में आज महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महान लोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया।

0: इस वर्ष की थीम अनब्लॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। प्रदेश में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाली जिले में सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रशासनिक आंकड़ों के प्रभावी उपयोग पर कृषि विभाग के सभागार में चर्चा आयोजित की जाएगी। वहीं करौली जिले में आंकड़ों के महत्व पर जिला स्तरीय कार्यशाला रखी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सांख्यिकी केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि जिले के विकास की दिशा तय करने का सशक्त माध्यम बन रही है। करौली में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, कृषि, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग में प्रशासनिक आंकड़ों का उपयोग लगातार बढ़ा है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर योजनाओं की प्राथमिकताएं तय की जा रही है और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। सांख्यिकी दिवस पर आयोजित होने वाली कार्यशाला में प्रशासनिक आंकड़ों के बेहतर उपयोग के माध्यम से सुशासन और विकास को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष चर्चा होगी। भाग्यवैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रदेश में इन दिनों मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में मॉनसून गुजरात की उत्तरी सीमा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम की बात करें तो डबोक में सबसे अधिक 33 मिलीमीटर, प्रतापगढ़ में 10 और पिलानी में 7.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान का श्रीगंगानगर 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा बीकानेर में 43.2 और जैसलमेर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभागों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। वहीं अगले 3 से 4 दिनों में कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया के सेशल्स में कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। आज और कल टीमें घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी और पूर्वी इलाकों में उमस से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

FM 102.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। हंसते मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ के युगल स्वर में ये गीत, जिसे लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS।

फिल्म संगीत में अब आप सुनेंगे बागी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अरमान मलिक, श्रद्धा कपूर और अमाल मलिक ने। इस गीत को लिखा है संजीव चतुर्वेदी ने और संगीत अमाल मलिक का।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और लीजिए दबंग 3 का ये गीत आप सुनेंगे सलमान अली और मुस्कान के स्वर में। इस गीत को लिखा है समीर अंजान और साजिद ने और संगीत है साजिद वाजिद का।

और लीजिए सुनिए फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है कबीर सिंह। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने। गीत और संगीत मिथुन का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। FM 102 व 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनाक्षी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। एफएम बड 102 मेगाहर्ट्ज 103.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का चंबल चैनल, जिसमें चल रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें आज मैं हूं आपकी सखी मीनाक्षी शर्मा। सखियों, गर्मियां जो हैं बहुत तेज पड़ रही हैं और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। अब बच्चे जाने लगे हैं स्कूल और बच्चे जब कुछ दिन में लौटते हैं तो बहुत ही तेज गर्मी से लड़ाई करके लौटते हैं। ऐसे में अपना अपने बच्चों का खूब ख्याल रखें और कैरी की छाछ बना बना कर पिएं, ताकि किसी भी तरह की लू जो है उन पर कोई असर ना करें। बस इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो ये जो थोड़ी सी गर्मी बची है वो भी जल्दी ही कट जाएगी और जल्दी ही आशा करते हैं कि मानसून आएगा, खूब बारिश लेके आएगा, खूबसूरत फुहारे लेकर आएगा और हमारे दिन सुहाने होने लग जाएंगे। सखियों, सुहाने दिन तभी अच्छे लगते हैं जब हमारा घर जो है वो बड़ा सुहाना सा होता है। अपना घर हर किसी का सपना होता है। घर अपना हो या किराए का, जहाँ पूरा परिवार एक साथ होता है ना, वही आशियाना खूबसूरत सा घर बन जाता है। सखियों, हम कहीं भी चले जाएं, देश विदेश घूमाएं, लग्जरियस होटल में रह लें, पर जो सुकून और इत्मीनान अपने घर में मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। घर को सजाना संवारना तो हर किसी की चाहत होती है। घर सजा हो संवरा हो तो दिल भी संवर जाता है, और जब घर बिखरा बिखरा हो तो मन भी अशांत हो जाता है, और अशांत मन बहुत सारे रोगों की जड़ है। विशेष रूप से डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है, एंजाइटी के लिए जिम्मेदार होता है इस तरह का अशांत मन। सखियों, हमारे घर सजाने के लिए महंगे महंगे सामान हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जरूरी नहीं कि हमारे पास महंगे से महंगे क्लीनर हो, लेकिन हमारे पास में जो भी सुविधा हो उससे भी हम अगर अपना घर साफ सुथरा रखते हैं तो घर साफ ही रहता है। आजकल तो देखिए हर टॉयलेट क्लीनर अलग है, बाथरूम क्लीनर अलग है, वॉश बेसिन साफ करने का क्लीनर अलग है, बर्तन साफ करने का अलग है, तो सिंक साफ करने का अलग है।

और पोछा लगाने के लिए अलग दवाई डालते हैं, पौधों को स्वस्थ रखने के लिए अलग दवाई डालते हैं। और पहले हम क्या करते थे, सिंपल पानी से ही पूरा घर साफ कर लेते थे। और सखियों, सिंपल पानी से ही पूरा घर साफ करने पर ना सिर्फ हमारे घर का खर्च बचता है बल्कि साथ ही हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा महंगे क्लीनर्स का उपयोग करें, लेकिन हमारे पास में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनसे ही अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। और साफ सफाई तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, रगड़ रगड़ के झाड़ू पोछे कर लेते हैं। कई बार जब हमसे नहीं होता है तो हम हाउस हेल्प भी रखते हैं, हमारे घर में काम वाली बाई भी आती हैं और उनकी मदद से हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कितना भी घर साफ कर लो थोड़े समय बाद में वो घर बिखर जाता है। कहीं ग्लास पड़े हैं, कहीं पर जो है आपके कंघे पड़े हैं, कहीं पर आपके कुशन बिखरे पड़े हैं, कहीं पर बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े हैं। ऐसे में घर जो है बहुत ही बिखरा बिखरा नजर आता है। और वो बिखरा मन जो होता है, बिखरा जो घर होता है

में वो घर बिखर जाता है, कहीं ग्लास पड़े हैं, कहीं पर जो है आपके कंघे पड़े हैं, कहीं पर आपके कुशन बिखरे पड़े हैं, कहीं पर बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े हैं। ऐसे में घर जो है बहुत ही बिखरा बिखरा नज़र आता है, और वो बिखरा मन जो होता है, बिखरा जो घर होता है, वही बिखरे हुए मन का कारण बन जाता है। सखियों, अगर आपके साथ में भी ऐसा ही कुछ होता है तो आपको 10 मिनट का थम रूल अपनाना चाहिए। 10 मिनट का थम रूल यानी कि 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को बस आपको निकालने हैं घर के बिखरे हुए सामानों को जमाने का। इसके लिए आप क्या करें, 10 मिनट का समय निकालें, सुबह उठते ही अपना बिस्तर समेट लें, उसमें कोताही ना बरतें, और साथ ही बिस्तर समेटने के साथ ही बिस्तर को झाड़ लें, ताकि बिस्तर एकदम एक मिनट के अंदर आपका तैयार हो जाएगा। और जितने भी बर्तन आपने रात को अपने कमरे में रखे हैं, जैसे पानी का ग्लास, जग वगैरह, उनको भी तुरंत आप अपने सिंक में रख के आ जाइए। और उसी समय आप देख लीजिए कि घर में जितने भी और कहीं पर बच्चों के कमरों में या कहीं पर भी कुछ ग्लास, या बच्चों ने सुबह उठ के चाय बनाई हो, पढ़ाई कर रहे हो बच्चे तो चाय वगैरह बनाई हो, तो वो बर्तन पड़े हों या कुछ भी हो, उन सबको इकट्ठा करके सिंक में रखें और सारे घर के जो बिस्तर वगैरह हैं समेट दें। और घर में जितने भी बिखरे हुए सामान हैं, बच्चों के खिलौने वगैरह अगर बिखरे हुए हैं, या कोई फूल वगैरह आपने भगवान के चढ़ाए वो सूख गए हैं, उन सबको आप हटाकर रख दें, तो बस इतने से 10 मिनट के अंदर आपका घर बिल्कुल साफ हो जाएगा। और यही नियम हम शाम के लिए भी अपना सकते हैं कि शाम के समय में भी आप सोने से पहले जितने भी घर में बर्तन हैं उन सब बर्तनों को सिंक में रखकर उन्हें साफ कर दें। और इसके अलावा आप ने दिन भर जो डाइनिंग टेबल यूज़ किया है, ड्राइंग रूम यूज़ किया है, तो कुशन वगैरह बिखर जाते हैं, डाइनिंग टेबल पर सामान बिखरे रहते हैं, कुछ खाने पीने के सामान गिर जाते हैं, तो उसमें उसको बिल्कुल रात को ही साफ करके सो जाएं, ताकि जब आप सुबह उठें तो आपको घर एकदम साफ सुथरा नजर आए। और जो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तो बच्चों में आदत डालें कि वो अपने खिलौने तुरंत खेलने के बाद में जगह पे रखें, उनके लिए एक बॉक्स बना दें कि इस बॉक्स के अंदर वो अपने खिलौने रखें। बच्चों में आदत डालें कि जब भी वो कुछ खाएं पिएं तो अपना जो भी बर्तन है उसको सिंक में रखकर आएं, अपने बिस्तर वो खुद समेटें, और अपने जो कपड़े वगैरह होते हैं, गीले टॉवल वगैरह होते हैं, उनको निश्चित स्थान पर रखें। तो बच्चे छोटे छोटे से टिप्स, और साथ ही बाथरूम में जब भी आप कोई भी व्यक्ति, घर का कोई भी व्यक्ति नहाने जाता है, तो हर व्यक्ति के अंदर ये आदत डेवलप करें कि जब वो बाथरूम से निकले तो वो बाथरूम को साफ करके निकले। इसे बोलते हैं कि बाथरूम मैनर्स, यानी कि साबुन अपनी जगह पे रख दें, अपनी जगह पे पाटी वगैरह जो भी हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाल्टी वगैरह खाली करके उसको साइड में रख दें, और वाइपर से बाथरूम को साफ कर दें। अगर हर व्यक्ति ये काम करता है तो बाथरूम कभी भी किसी भी तरह से गंदा नहीं रहता है, और जब भी कोई दूसरा व्यक्ति नहाने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए जाता है तो उसे भी वो साफ सुथरा मिलता है। तो वैसे छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, उन टिप्स को हम अगर अपना लें तो हमारे घर में जो बिखरा सामान है वो बिखरा नहीं रहेगा, और हमारा घर हमेशा ही खूबसूरत नज़र आएगा। क्योंकि जब हम अब शादी होकर के नए घर में आते हैं तो हर लड़की का सपना होता है कि वो उस घर को अपने सपनों के से घर की तरह सजाए, लेकिन ये बिखरा हुआ सामान जो है उसमें खलल पैदा कर देता है। तो इस खलल को कर दीजिए दूर, और अपने घर को, अपने पिया के घर को खूबसूरत बनाएं।

0: इस प्यारी सी दुनिया में एक छोटा सा मेरा परिवार है। खुशियाँ मुझे इतनी मिलती है जैसे रोज कोई त्यौहार है। सखियो, जब परिवार साथ हो तो हर दिन त्यौहार नजर आता है। पर वो कहते हैं ना कि परिवार में जब चार लोग साथ रहते हैं, जैसे चार बर्तन अगर साथ रहते हैं तो खटकते ही हैं, तो वैसे ही चार जो लोग साथ रहते हैं तो आपस में खटकते ही हैं, यानी कि थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती है, लेकिन थोड़ी बहुत नोकझोंक के साथ में प्यार, सम्मान और आपस में जो सौहार्द होता है और उसके साथ में जो खिलखिलाहट होती है, वो जीवन के रंग, असली रंग बिखेरती है। तो सखियों, परिवार में अगर सामंजस्य हो तो परिवार के साथ में रहना बहुत ही खुशनुमा महसूस होता है। तो सखियों, आज हमारे साथ में जो मौजूद हैं श्रीमती ऋतु, जिनसे बात कर रही हैं प्रथमा सोनी, विषय है पारिवारिक सामंजस्य।
1: सखियों, भारत में जब भी परिवार की बात आती है तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार की बात अवश्य होती है। परिवार में एक ही छत के नीचे 10 से 12 लोग जब एक साथ रहते हैं तो आपस में प्रेम व्यवहार बनाए रखने के लिए जरूरी होता है पारिवारिक सामंजस्य। और वैसे भी कहते हैं ना सखियों कि जिस परिवार में स्नेह, वात्सल्य और आदर के भाव है, वह घर अवध के समान है, उस परिवार में प्रभु अवश्य आते हैं। तो

0: पारिवारिक सामंजस्य किस तरह से बना रहे, आइए बात करते हैं इस विषय पर हमारी ही एक सखी रितु जी से, जो कि हमारे साथ हैं। तो रितु जी, बहुत बहुत नमस्कार।
1: नमस्कार प्रसन्न जी,
0: और बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम महिला जगत में।
1: धन्यवाद।
0: रितु जी, आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं परिवार की, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में परिवार की परिभाषा क्या है।
1: परिवार से तात्पर्य है कि जहाँ एक ही परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर रहें और आपसी सामंजस्य बनाए रखें, परिवार के और सभी सदस्यों के मन और विचारों में समानता और एकरूपता होना ही परिवार है।
0: बहुत अच्छी आपने परिभाषा दी कि परिवार क्या है, और वाकई ये सही भी बात है रितु जी कि हम परिवार के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
1: जी,
0: आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप एकल परिवार में रहते हैं या संयुक्त परिवार में?
1: जी, मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ।
0: तो संयुक्त परिवार में रहते हैं तो कौन कौन है आपके साथ जैसे परिवार में?
1: मेरे साथ मेरे सास ससुर हैं
0: जी,
1: और दो जेठ हैं, जेठानियां हैं, उनके बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं दो।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जहां हम एकल परिवार की ओर जाते जा रहे हैं, वहां आज आप इतने सुंदर परिवार को लेकर चल रहे हैं। तो आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब आप परिवार में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों का समावेश होता है, तो उन सभी को लेकर परिवार के सदस्यों में जो आपसी सामंजस्य है, जो आपसी प्रेम व्यवहार है, उसको बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं?
1: जहाँ तक सामंजस्य की बात है प्रतिमा जी, कि संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों के मन और विचारों में समानता, जहाँ तक आपसी सामंजस्य की बात हम करते हैं, परिवार में रहकर हमें धैर्य और आपसी सामंजस्य रखना ही पड़ता है
0: जी,
1: क्योंकि संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों के मन और विचारों में समानता और एकरूपता होना ही पारिवारिक सामंजस्य है। मेरे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देते हैं
0: जी।
1: हमें कहीं बाहर जाना हो या हमें बच्चों की या घर की चिंता नहीं होती है। जहाँ तक संस्कारों की बात करें, बच्चों को भी दादा दादी से या परिवार के सभी सदस्यों से संस्कार मिलते हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्य ही आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान बच्चों को देते हैं
0: जी।
1: परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से ही बच्चों को संस्कार मिलते हैं आध्यात्मिक। जैसे अगर आप साथ में रह रहे हैं पूरे परिवार के, तो कई तरह की परिस्थितियां आती हैं, बड़ों और छोटों में मनमुटाव की स्थितियां भी बनती है, लेकिन ऐसे समय में धैर्य रख के और प्रेम व्यवहार के साथ अपने परिवार का साथ निभाना चाहिए। छोटी छोटी बातों को अनदेखा करके और सबके साथ एक खुशी भरे माहौल में अपना समय व्यतीत करना चाहिए
0: जी।
1: उससे सब आपसी सामंजस्य और प्रेम बना रहता है। सभी परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ हर खुशी का पल और हर दुख की परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं, यही आपसी पारिवारिक सामंजस्य है।
0: सही बात है, और आपने ये सही कहा, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है, तो शायद
1: जी, जी।
0: ये किसी ने सही ही कहा है
1: जी। जैसे कि परिवार में कई तरह की परिस्थितियां होती है प्रतिमा, कि कई बार बच्चों में भी अनबन हो जाती है, लड़ाइयां हो जाती है, जिसके कारण बड़ों में भी विवाद हो जाता है
0: जी,
1: तो ये सब ना करके बच्चे तो क्या है, थोड़ी देर लड़ते हैं और कुछ समय के बाद एक दूसरे के साथ खेलते हुए ही दिखाई देते हैं, इसके कारण बड़ों में विवाद जो होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए ये सब ना करके हमें उस परिस्थिति में ये करना चाहिए कि इन सब बातों को नजरअंदाज करके हम घर के माहौल को खुशनुमा बनाकर रखें, किसी प्रकार का कोई विवाद बढ़ने ना दें और बल्कि उसको शांति प्रिय तरीके से उसको खत्म करके और खुशी से भरा माहौल हम घर में बनाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि परिवार में सभी के मन में मुटाव बढ़ता जाता है, कम होने की बजाय मुटाव और बढ़ता जाता है। इसलिए इसे बढ़ाने की बजाय हमें इसको खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। और जैसे पति बाहर से आए हैं तो उनसे घर के विवाद से संबंधित कोई बात न कहकर उस बात को टाल के और कुछ अच्छा शुरुआत करके पूरे घर का माहौल, औरतें ही होती है, महिलाएं ही होती है जो घर का माहौल अच्छा बना के रख सकती है।
0: जी जी, और ये सही भी बात है रितु जी कि जब सुबह से शाम तक पति घर से बाहर जाके आते हैं और हम आते उन्हें शिकायत की पोटली लेकर बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी तनाव से परिपूर्ण हो जाता है और शायद घर में तनाव ज्यादा हो जाता है
1: जी।
0: अच्छा, आप कामकाजी महिला है या कोई नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं?
1: मैं संयुक्त परिवार में भी रहती हूँ और मैं साड़ियों का बिजनेस भी करती हूँ घर से ही।
0: और रितु जी, जैसा कि आपने बताया कि आप साड़ियों का घर से ही व्यापार करती हैं, तो उस व्यवसाय में आपको किस तरह का सहयोग आप

0: के परिवार से मिलता है।
1: ये बहुत अच्छी बात कही प्रतिमा जी आपने, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी सकारात्मक बात कहना चाहूंगी। संयुक्त परिवार में जो लोग होते हैं वो किस्मत वाले होते हैं। इसका एक उदाहरण मेरे लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि जब मैं साड़ियों का व्यापार करती हूँ तो उसके लिए हमें बाहर भी जाना पड़ता है,
0: जी।
1: तो पीछे बच्चों की टेंशन, हस्बैंड की टेंशन, उन्हें कौन संभालेगा, उनका खाना, सारी व्यवस्थाएं दिन भर की,
0: जी।
1: ये संयुक्त परिवार में होने का इतना बड़ा लाभ होता है इसका। मेरी मदर इन लॉ है और मेरी जेठानी है, वो ये सब संभालती हैं पीछे से, और व्यापार में मेरा पूरा पूरा साथ वो लोग देते हैं, जिससे मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन या नहीं होती है कि मैं जाऊंगी तो पीछे से ये लोग को परेशानी उठानी पड़ेगी, या बच्चे कहाँ रहेंगे, या उनके खाना कौन देगा, उन्हें स्कूल कौन भेजेगा, ये सारे काम मेरे परिवार के सभी सदस्य संभाल लेते हैं।
0: और बिल्कुल ये तभी संभव हो पाता है कि आप भी कहीं ना कहीं उनकी बात को वजन देते होंगे, उनके साथ सपोर्ट करते होंगे।
1: जी बिल्कुल, ये बात आपने सही कही, क्योंकि मैं छोटी हूँ परिवार में सबसे, तो मुझे बड़ों को उतना ही प्यार और सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। मुझे भी तभी मिलेगा तब मैं उन्हें प्यार और सम्मान दूंगी। आपसे सामंजस्य बनाने के लिए सबसे मुख्य कड़ी तो यही है, अगर हम छोटे हैं तो हमें बड़ों को सम्मान और आदर देना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: तभी आप प्यार और सम्मान प्राप्त होगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बता रही हैं रितु जी आप। वाकई आप परिवार में रहते हैं तो आपके साथ तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण है जितने भी आपने दिए। रितु जी, कई बार होता है हम परिवार में रहते हैं, कई बार छोटी छोटी सी बातें जाती है तो कहीं ना कहीं तनाव आ भी जाता है, तो उस समय परिवार किस रूप में अपने काम आता है?
1: ऐसी बात नहीं है कि परिवार में तनाव नहीं होता है।
0: जी जी,
1: कई परिस्थितियां ऐसी आती है जिनसे तनाव बन जाता है परिवार में, उसे खत्म करने के लिए कोई कुछ और सोचना चाहिए, या फिर हमें घर के बड़ों से बात करके या उस समस्या का कैसे निवारण किया जाए इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। उस तनाव को समाप्त करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपना मन कहीं धार्मिक चीजों में लगाएं, जैसे भजन कीर्तन है या कोई वेद पुराणों का पठन है, या फिर ऐसी जगह अपना मन लगाएं जहाँ पर हमारी रुचि हो, जहाँ हम अपने खुद को आनंद दे सके,
0: जिससे
1: घर का तनाव समाप्त हो सकता है। एकल परिवार भी अपनी जगह अच्छे होते हैं, वहां पर भी आप पति पत्नी को आपस में सामंजस्य बनाकर ही रहना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा समय है कि जॉब के कारण पति पत्नी को बाहर ही रहना होता है, वो संयुक्त परिवार के साथ अपना समय बहुत कम बिता पाते हैं।
0: जी,
1: जैसे दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, समय समय पर एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उनका निवारण करें, तो इससे तनाव मुक्त हो जाता है। जहां तक संयुक्त परिवार जरूरी है, एकल परिवार में भी किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है।
0: जी बिल्कुल सही कहा, कि जब नौकरी पेशा होते हैं पति पत्नी तो उनको एक शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़ता है, कई बार उसी शहर में रहकर उनको अलग भी रहना पड़ता है। बात यह है परिवार चाहे एकल हो संयुक्त हो, आपसी सामंजस्य तो हमें आपस में रखना ही होगा। तो रितु जी, कार्यक्रम सुन रहे हैं श्रोता और जो सखियां सुन रही हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी प्रतिमा जी कि परिवार में सुखी संसार छिपा है जिसके सुख का लाभ हर किसी को नहीं मिल पाता है। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनमें हमें संयुक्त परिवार की आवश्यकता होती है।
0: जी,
1: वो अच्छा समय भी हो सकता है और बुरा समय भी हो सकता है।
0: जी,
1: संयुक्त परिवार उस समय में अपने लिए एक शक्ति का रूप दिखाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी कोरोना काल में संयुक्त परिवार की लोगों को बहुत आवश्यकता रही, संबल बना रहा लोगों का परिवार एक होने के कारण, और जो अकेले थे वो कई परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें साथ देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया, इसलिए कोई पारिवारिक सदस्य नहीं मिल पाया। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, परिवार चाहे एकल हो या संयुक्त हो प्रतिमा जी, एक साथ रहें, जहां भी रहें एक साथ रहें, खुश रहें। जिंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, और अपनी खुशनुमा जिंदगी अच्छे से व्यतीत करें।
0: चलिए रितु जी, पारिवारिक सामंजस्य के बारे में आपने बहुत अच्छी और बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत अनमोल बातें बताई, हमें यकीन है कि सखियों को बहुत पसंद आई होगी।
1: जी,
0: तो हम आपसे विदा लें उसके पहले जानना चाहेंगे कि आपकी पसंद का ऐसा कौन सा गाना है जो हम भी सुने और आपको भी सुनाएं।
1: जब परिवार की हम बात कर रहे हैं तो मैं यही गाना सुनना चाहूंगी, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम।
0: चलिए रितु जी, आपकी पसंद का गाना सुनते हैं और सुनवाते हैं अपने सभी श्रोताओं को। आप हमारे साथ कार्यक्रम में आई, जुड़ी और आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

सखियों, अभी आपने सुना था श्रीमती रितु को, बात चल रही थी पारिवारिक सामंजस्य के बारे में। अगर परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, त्याग की भावना हो, प्रेम की भावना हो, थोड़ी सी सहनशीलता हो, तो परिवार में साथ रहने का मज़ा दोगुना हो जाता है। और जब परिवार में हम सब साथ रहते हैं तो बच्चों का जो जीवन होता है वो भी बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि बच्चे ही हमारे जीवन की, हमारे भविष्य की नींव हैं। और सखियों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अगर बच्चा नहीं होता है वो, तो वो बच्चे गोद ले सकते हैं, और गोद लेने के लिए मिशन वात्सल्य योजना जो है आपको लाभदायी सिद्ध हो सकती है। इसके लिए आप उसके सिटीजन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। यह बाल विकास और मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है। इसमें हर बच्चे की सुरक्षा करना, उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाना इस योजना का उद्देश्य है। आप यहाँ से यह बच्चा गोद ले सकते हैं।

या फिर बच्चा गोद ना लेना चाहें, किसी तरह का आप स्पॉन्सर करना चाहें बच्चों के लिए, तो आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अशक्त होते हैं, उन्हें नीड होती है पैसों की, तो उन बच्चों के लिए ये योजना चलाई गई है कि यहाँ पर 3 से 4 हज़ार रुपये महीने उन्हें दिया जाता है। तो सखियों, इस योजना का ज़रूर से लाभ उठाएं। और इस वादे के साथ सखियों की ये फिर से होगी मुलाकात, अभी आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।

महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 102 व 103.6 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

0: ये है विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई है उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत एक खोज में, उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है। और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया। उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था।

0: तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी और श्याम बाबू ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा सब कुछ, वो जिस तरह से आया था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पापा के लिए और उन्होंने बहुत एंजॉय किया, बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
1: हैं। अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया,
0: हाँ वो
1: आप
0: तो
1: किसी भी विषय का जिक्र करें
0: करेक्ट
1: तो वो पेज खुल जाएगा
0: करेक्ट,
1: वैसे जिसे आज हम क्लिक करते हैं ना,
0: हाँ वैसे तो ही हिमसेल्फ वाज अ सर्च इंजन इस तरह से आप कह सकते हैं।
1: yes.
0: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है राइट तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, तो एक सोच होती है अपनी एक विचार होता है और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं ये महात्मा फुले हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक पर ही इज अ नेशनल हीरो,
1: एक व्यापक दृष्टिकोण
0: है ऑफ कोर्स, और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए ये आगे जाकर गांधी जी ने अंबेडकर साहब ने इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूँ और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूँ। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे।
1: बिल्कुल।
0: और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे, तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मैच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में वो पढ़ा उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का।

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारतीय कोच की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों,

0: कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
0: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है, पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी।
1: बिल्कुल,
0: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसी कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी।
1: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है। मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
0: और वो पूरे
1: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
0: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलेंगे। हाँ,
0: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार इस तरह से था। और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बम्बई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं वहां पर प्रीमियर है, तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी। तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कहा कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। हमारे बाजू में एक जो दुकान था, मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं, और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे स्पोर्ट्स के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बम्बई और देखो क्या हुआ है।
1: अरे
0: उसके बाद फिर हम बम्बई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बम्बई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी,
0: 1-1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वाह वाह।
0: फिर एक सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते।
0: हम लोग ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे। नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर हम लोग गए अंधेरी में किराए का घर जो था।

0: वहां पर तारा पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं नहीं नहीं, नहीं रामा शेट्टी से पैसे नहीं दे सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं। हाँ, और रातों रात बंदा स्टार बन जाता है और कोने कोने में खबर फैल जाती है। और यहाँ अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बम्बई में क्या धमाका हो चुका है।
0: वाह, उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर कस किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था। हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
1: इतने फोन आने लगे।
0: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-6, 7-7 महीना, 1-1 साल फोन आने में लग जाता था। पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था, इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है एक हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी।
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में करता है
0: एक्चुअली। तो एक हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था। मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज्ड टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है।
1: एग्जैक्टली।
0: पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा। हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है।
1: सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक तकलीफ, एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर

0: थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली, और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की,
1: जब वो बहुत बड़े स्टार
0: बहुत बड़े स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक, तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग, तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं है, पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला, उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए, पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इरेटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
1: थी, उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए वो, तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो,
1: ओके, सोलो था,
0: सोलो था, और पूरे 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर,
1: क्या बात है, क्या बात
0: ये
1: है,
0: 2003-04 की बात कह,
1: खुद ही डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं,
1: और
0: नहीं,
1: को दिया?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक है, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले, और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है, ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है,
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक उनका बस था।
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था, तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वाज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने के प्रोसेस में थे, और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको?
0: बहुत। मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया,
1: वो बड़ी थी और
0: वो बड़ी थी, समझदार थी, क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है,
1: बिल्कुल,
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है शूटिंग की, जो शिफ्ट होती है उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है, और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया, तो जैसे शूटिंग लगते थे जैसे डेट्स दी जाती थी वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे इनकी डेट्स 3-3, 4-4 साल तक बुक्ड रहती थी,
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयां होती थी ना वो मम्मी बनाती थी।
1: अच्छा, तो उससे अंदाजा
0: था शायद पापा आजकल में आने वाले।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ। पापा तो बाहर गांव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग, हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास,

0: तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस. और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था. तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली. तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए. और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूँगा. और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना. उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे अच्छा। ये फिल्में देखनी है और वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर.
1: ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी.
1: ओके.
0: और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे तो. तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे. उस वक्त तो बड़े बड़े कैमराज होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमराज होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वा, वा।
0: जहां भर भी वो जाते थे, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था. तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है जो पापा ने बनाया हुआ है उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं. उसमें फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स. तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना. तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी. तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था. और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अउसट है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे. तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे. और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूं मैं, तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गया, डॉक्टर अनिल अउसट हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे.
1: वाह वाह.
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना. तो ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे. तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं बिल्कुल बिल्कुल डे वन से. जैसे याद है, जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी, टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे. जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे. और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे. तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह,
0: मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा. तो दादी कहती थी कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा. सबको खिलाते थे. और मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो पर उनके दोस्त बॉम्बे में किसी काम से आते थे तो वो, अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद

0: का घर होता था।
1: वाह वाह वाह।
0: तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई,
0: हमेशा कोई ना कोई होता था। या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था, या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उनसे

0: चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता था।
1: क्या बात है, इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहाँ बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से।
0: श्योर,
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निळू फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी, और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू हैं, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
1: हाँ, एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लग्नाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निळू फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब। इसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे दो साल तक।
0: क्या बात, एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और ज्यादा
1: ही, ज्यादा ही। तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से। और डॉक्टर लागू और निळू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ, और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था तब।
0: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते हैं।
1: हाँ हाँ, डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड? तो पापा ने कहा जरूर, क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए। और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स, डॉक्टर लागू, निळू फुले, पापा, तनुजा,
0: कमर्शियल सिनेमा की कमर्शियल, एग्जैक्टली,
1: हाँ हाँ, ये सब लोग वहां पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका, और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे।
0: वाओ,
1: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे। सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था, और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे।
0: ये कितना बड़ा मुहिम, मतलब
1: बहुत ही
0: ये अद्भुत काम रहा उस जमाने
1: तो,
0: के हिसाब से।
1: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूँ, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है, और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ। इस तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की, इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे। हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है, मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड, और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया,

0: उनको फंड रेजिंग करके दे दिया. तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं. तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे जो बहुत भाग दौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे. इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था. और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था. बॉम्बे में पापा ने पढ़ा और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे. तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया.
1: गजब.
0: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो. तो वो अहमदनगर पहुंच गए, वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम. उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे. तो पापा ने कहा ठीक है. उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था. तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए.
1: क्या बात है.
0: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय तक, लेट रिलीज होती थी. उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा किया गया फॉर द म्यूजियम. और ये बहुत बड़ी बात है और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है बिकॉज लोगों को अभी उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया है. तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए. तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज है जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है.
1: क्या बात है.
0: तो इस तरह से वो करते रहे हैं और हमेशा, मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसे मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो ठीक है, क्या आपको मदद की जरूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो CM साहब को फोन लगा लिया, दिल्ली में फोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया. और इसमें मुझे मजे की बात यह लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप अभी इन्हें क्यों दे रहे हो, 10,000 रुपए इन्हें किस लिए दिए. इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म बात.
1: वाह वाह.
0: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी. जैसा मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे, तो उनकी जो मूल्य जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी वो बिल्कुल एक जैसी थी. और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए. इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग. और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है. तो आई एम वेरी लकी दैट कि इस घर में मैं
1: बिल्कुल. चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है तो यहाँ मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता है.
0: करेक्ट.
1: वो बताएं.
0: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी और मुझे वहां पर फोन आया. प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं. मैंने कहा क्या. मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है. तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है. ऐसे क्या, मुझे पता ही नहीं था. और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सबके लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी. राइट. सो मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो. मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये. वो मम्मी का अभी नहीं मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ. तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया. मेरी बहन बॉम्बे में ही, पास ही में उसका घर है तो वो वहीं पर थी. तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ फिर हम बात करते हैं. मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम. तो फिर मैं

0: बॉम्बे पहुंची तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में. दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे और पानी हफ्ते में एक बार दो घंटे के लिए पानी आ रहा था. इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में. और यहाँ पर बम्बई में, बिकॉज हम बम्बई है तो यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती. पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे. तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था. तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर. और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं. पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था. तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे. और मीडिया से कॉल आया बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है. बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे, वैसा फोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली. तो पापा ने, कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूं मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहां पर. तो यहां पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है. और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया. तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है. वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर हो रही है. तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से. उस धक्का बुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का. उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है, पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई, सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया. और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे, तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे. तो इसलिए उन्होंने वो इसको दिखाया, देखो पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था. वो किस्सा इस तरह से कुछ हुआ था.
1: और किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहाँ नजर आता है.
0: हाँ, और क्योंकि मेरी दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी. पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे. इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे. तो किसान की जिंदगी क्या होती है
1: वो उनको
0: ये
1: पता था.
0: बहुत करीब से देखी हुई थी.
1: बिल्कुल.
0: तो इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था.
1: बिल्कुल. यहाँ एक गाना सुनते हैं.
0: Sure.
1: दो आंखें बारह हाथ का.
0: हाँ.
1: ए मालिक तेरे बंदे हम.
0: ऑफ कोर्स.

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

शंकर महादेवन की आवाज में ये पारंपरिक रचना आप सुन रहे थे। विरुद्ध फिल्म के इस रचना को अजय अतुल ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: इस पारंपरिक गीत को आप सुन रहे थे अदिति सिंह शर्मा और दिव्य कुमार की आवाजों में। सूफी जॉय एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनवाया।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: पद्मश्री पद्मजा पिहानी जोगलेकर की आवाज में जिंदगी की जुबान इस एल्बम से ये गजल आपने सुनी, जिसे लिखा संदीप गुप्ता ने और महेश खानोलकर का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: शकील आजमी की लिखी ये गजल आप सुन रहे थे। जगजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में तुम बिन टू फिल्म से इसे हमने लिया, अंकित तिवारी का संगीत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। और अगर छाया गीत कल रात आप सुन नहीं पाए हैं तो आज शाम 5 बजे पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। फिलहाल रंग तरंग कार्यक्रम में यह अगला गीत।

तलत अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे कतील शिफाई का ये कलाम, और तलत अजीज ने ही संगीत से सजाए गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एंड गजल्स इस एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं, आइए सुनते हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से ये गीत।

हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, आर किरण के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

नीदा फाजली के बोल आप सुन रहे थे। सुर फिल्म के इस गीत में महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजें, एमएम क्रीम का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रंग तरंग। तो रंग तरंग में ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, नुसरत फतेह अली खां का संगीत, फिल्म कच्चे धागे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन समाचार। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र
1: FM 102 व 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
1: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
1: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
1: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
1: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
1: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब

0: के बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
0: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा, ले आया लकड़ी।
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा, देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
2: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। न लकड़ी की कमी, न फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूँ सारे गहना गरिया मात।
2: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे, अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे, ठीक?
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
2: क्या भूल मिलकर बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
2: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
2: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
2: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है।

0: चुबा चुबा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। है सोचा बेटे सोचा सोचा, शाबाश। अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है।
0: हा?
1: जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है। वो चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, तेरे भी इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये

0: ये ये ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
1: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
1: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है। कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
1: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
1: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
2: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं। चलो
1: देखो ये पेड़
0: देख लो।
2: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़ और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे,
0: चलो इधर से निकल कर आओ।
2: अच्छा
0: आई, क्या हुआ चुप्पा?
1: क्या हुआ?
2: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा तो।
2: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
1: ठीक है ठीक है, नहीं काटेंगे। हाँ।
2: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
1: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
1: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
1: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
1: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
2: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
1: हाँ।
2: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल।
0: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
2: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया। अब किसे काटे?
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या?
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
2: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
1: तू समझ गई?
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
1: बता?
0: रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे।

0: अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं, क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोलना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का, चल।
0: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे।

0: भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
0: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आंखियों के झरोखे से, इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे, आंखियों के झरोखों से। इस फिल्म से गीत आपने सुना हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, और इसे संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: मत वाली आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420
1: एक्सक्यूज मी प्लीज
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस
2: रियली
0: राइट राइट मैं

0: Obviously, such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance.
1: What?
2: अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, अरे देखी है, आज देखी है। अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है जो मुझे इशारे करती है, पर किसी से शायद डरती है, और डरती है, आह डर।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर इज जक्सटापोजिशन्ड by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: दौलत वाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस।
2: हाउ क्यूट।

0: हर जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
3: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
4: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपकी कसम फिल्म से।

0: आते।
1: आपकी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संकेत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म आन मिलो सजना, सुनिए ये गीत।

जिलों में भी अवकाश के बाद स्कूल खुलने के साथ ही स्कूली विद्यार्थियों की चहल पहल शुरू हो गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के बाद आज से राजस्थान न्यायालय सहित राज्यभर के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित जनसुनवाई फिर से शुरू हुई। अब न्यायालयों का कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई, नए प्रकरणों की पेशी और अन्य न्यायिक कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। जैसलमेर में पर्यटन और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यूआईटी मूल सागर क्षेत्र में गोल्डन ओएसिस फार्म हाउस योजना शुरू करेगा। इस योजना के तहत 142 फार्म हाउस भूखंडों और 46 व्यावसायिक दुकानों की खुली नीलामी की जाएगी। यूआईटी को इस योजना से 22 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर आज सुबह एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना दूदू क्षेत्र के महला गांव के पास सुबह करीब 5 बजे हुई। चित्तौड़गढ़ स्थित सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन कर जयपुर लौट रही एक बस का एक्सल टूटने के कारण उसे सड़क किनारे खड़ा किया गया था। इसी दौरान पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस खड्डे में पलट गई। पुलिस ने घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भिजवाया है और फरार ट्रक की तलाश की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस परीक्षा के लिए राज्यभर से 370,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 280,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के दौरान कुल 75% उपस्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। हमारा अगला बुलेटिन शाम 7:00

आया, लेकिन दिल जिस राह पर चलना चाहता था उसका अफसोस आज भी कहीं ना कहीं बाकी है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि सच्चे दिल की आवाज बिल्कुल सुनाई देती है अच्छी तरह से। इस इबारत की दिल छू लेने वाली लाइन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी जो रूट जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। ये इस पूरी नज्म की सबसे प्यारी लाइन है। जब इंसान खुद से रूट कर खुद से ही मान जाता है तो उससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता। वहीं हमारे साथी ने कहा कि किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, ये गाना उन्होंने बताया। और आगे लिखा कि किसी की जिंदगी में एक शख्स के आने से पूरी दुनिया बदल जाती है। गीत सच्चे प्यार की उस मासूमियत और शक्ति को दर्शाता है। वहीं हमारे साथी ने कहा कि भाई आज गुजरात में वट सावित्री का व्रत मनाया जा रहा है और 15 दिन के बाद ये मनाया जाता है बाकी राज्यों की अपेक्षा, ये कह रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी ये त्योहार आज मनाया जा रहा है। सभी को शुभकामनाएं। हमारे साथी बता रहे हैं कि इबारत की आखिरी लाइनें जैसे कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम ने ये साफ कर दिया कि आज दिल धड़कने के साथ मान मनवल भी होगा। कभी ये दिन अपनी जिंदगी में आए, बहुत बार रूठ जाने पर मनाना पड़ा, इसका आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ा, लेकिन रूठा कोई अपना था। पैसा खर्च करने में कोई संकोच नहीं होता है। तो भाई क्या है ये पूरा किस्सा, हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर आप लिखकर भेजना चाहें तो कमेंट में जरूर भेजें। हमारे एक साथी ने एक नज्म ही लिखी, ए दिल सुनो एक वादा कर लो, जो बोया है उसे फूलों सा सच कर लो। राहों में कांटे आए तो संभल कर चलो, हिम्मत से अपनी हर अंधेरी को रोशन कर लो। किसी की आंखों में जब तुम्हारा अक्स दिखे, एक मीठी मुस्कान से उसे अपना कर लो। तुम्हारा भी तो है एक छोटा सा दिल, प्यार की खुशबू से उसे एक घर कर लो। झुंझला कर अगर कभी दूर हो जाओ, मायूस न करो फिर से मान जाओ। वहीं हमारे एक और साथी ने इबारत के अनुरूप कुछ गाने सुझाए हैं। देखते हैं उनकी और हमारी लिस्ट कितनी मिलती है, क्योंकि बहुत से हमारे साथियों ने लिस्ट के में जो इबारत है उसमें से कुछ शब्द चुने हैं और कहा है कि कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं। हालांकि हमें कुछ गीत तो नजर आ गए हैं जो हमारी लिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज का ये कार्यक्रम तो दिल से होकर गुजरेगा, तो कुछ दिल की बातें हो जाए। दिल से बहुत उम्मीदें होती हैं इंसान को, कभी किसी को अपना बनाएगा, कभी किसी का हो जाएगा, कभी किसी की कमजोरी बनेगा, कभी किसी की चाहत बनेगा। एक बेचारा दिल ही है, कभी टूटता है कभी संभलता है, और इस दिल के आगे मजबूर है इंसान। आज भी कितने नादान है, दिल समझता ही नहीं, बाद बरसों के उन्हें देखा है तो दुआएं मांग बैठा है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुनना चाहिए। धड़कता हुआ दिल हो या रूठा हुआ या फिर हो टूटा हुआ, दिल तो आखिर दिल ही है। वाकई बहुत ही खूबसूरत बातें आप लिख भेज रहे हैं। तो हमें ये भी बताइए कि क्या आप जो ठानते हैं वो काम करके ही रहते हैं और किस तरह से करते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है और आपका दिल कौन सा काम करने के लिए नहीं करता। ये सब बातें आप बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसने लिखा है ये गीत।

दुलारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, नौशाद का संगीत। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें मिल गया, फिल्म का नाम और गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने भी एक समय अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिमाग की बात मान ली, उस वक्त लगा कि यही सही है, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि कुछ सपने, कुछ खुशियां, कुछ अधूरी ख्वाहिशें वहीं पीछे छूट गईं। दिमाग ने मुझे सुरक्षित रास्ता तो दिखा

दो धुनी चार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल और हेमंत कुमार का संगीत। तो बिल्कुल सही नाम आपने बताया फिल्म का भी, और इसे गीत को लिखा था गुलजार ने, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी बात कर रहे हैं और अपनी दिल की बातें बता रहे हैं। बहुत से साथियों ने तो कह दिया है कि भाई दिल के नहीं सुनते, दिमाग के सुनते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुने मेरे दिल, एक बात सुनो तुम, सफर जो चुना तुमने उसे पूरा करके दिखाना तुम, कभी जो आए अंधेरे तो हौसला बढ़ाना तुम, बुने हैं जो हसरतों के ताने बाने उन्हें हकीकत बनाना तुम, किसी की चाहत में धड़को तो वफा निभाना तुम, कोई अपना सा लगे दुनिया में उसे गले लगाना तुम, कभी जो उदास हो जाओ तो मेरी बाहों में सिमट जाना तुम। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ए दिल तेरी हर बात को दिल से अपनाऊंगा मैं, जो ठान लिया है उसे मंजिल तक ले जाऊंगा मैं, राहें चाहे मुश्किल हो हिम्मत ना हारूंगा मैं, सपनों की उस दुनिया को सच कर दिखाऊंगा मैं, मोहब्बत अगर सच्ची मिली मुस्कुरा कर निभाऊंगा मैं, दिल जिसे अपना कहे उसे दिल में बसाऊंगा मैं, और अगर कभी रूठ भी गया तो तेरी पुकार सुनने पर तेरी पुकार पर मुस्कुराते हुए लौट आऊंगा मैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी कविताएं निकल रही हैं आपकी कलम से और हम तक पहुंच रही हैं। और हमारे एक साथी कह रहे कि ओह एक बार फिर उबाओ इबारत। तो देखिए इन्होंने ये कहा और कहा कि पढ़कर गीतों का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते, मतलब आज अपनी भागीदारी शून्य है। तो हम ये समझ चुके हैं कि इन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जवाब दिया है, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने तो उस शब्द भी निकाल लिए हैं इबारत से और ढेर सारे गीतों के नाम भी दे दिए हैं, जितने तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो सकते। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विविध भारती से उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को एक थीम पर लगाए गाना रहने चाहिए, क्योंकि एक थीम रहे या एक शब्द दे दिया जाए ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन हर प्रोग्राम की अपनी एक तरीका होता है, अपना एक माहौल होता है कह सकते हैं हम। तो इस कार्यक्रम को कुछ इसी तरह से चलाया जाता है जिसमें बहुत सारे शब्दों वाला एक इबारत आप तक पहुंचा दी जाती है और आपको उनमें से शब्द चुनने होते हैं जिनमें गीत आते हैं। तो कभी कभी कुछ अलग अलग चीजें भी होती रहनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रेमी दिलों को प्रोत्साहित करती ऊर्जा स्रोत रूपी इबारत ने प्रेम रस उड़ेलती सलाह भी है और सांत्वना भी। प्रेम प्रसंगों में रूठने मनाने के सुंदर संक्षिप्त चित्रण व सुलभ समाधान वाकई आशिक और माशुकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रेम गाथा के प्रवाह के संगीत में सुरीला सफर के हमराही बनने का हम के लिए हम श्रोतागण बेकरार हैं, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर छोटी सी आज की इबारत, कह रही है कि दिल की आवाज सुनकर अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखना, चुनौतियों का डटकर सामना करना और प्रेम व रिश्तों को स्नेह विश्वास तथा मुस्कान के साथ संजोकर जीवन को खूबसूरत बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गद्यांश काव्यात्मक रूप में है जो सीधे दिल को छू रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने, या दिल धड़कने का सबब याद आया जो दिल को छूकर निकला, दिल की महफिल सजी तो रूह की रौनक भर गई, वो आए मेहमान इस दिल के तो दिल की रंगत और बढ़ गई। तो इस तरह से इन्होंने भी काव्यात्मक रूप में दिया है अपना जवाब। लेकिन आप हमें ये बताइए, क्या कभी जैसा कि इस गीत में हो रहा था कि दिल की वजह से कभी कभी पिटने की नौबत भी

सकती है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो वो किस्सा हमसे साझा कीजिए अगर आप करना चाहें तो। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इसमें संगीत किसका है, फिल्म का नाम भी बताइए।

chick chat, काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना, आशा भोसले की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल। संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल से दुनिया बनाई जाती है। मनुष्य वही बड़ा है भाई जिसका दिल उसकी आंखों में दिखाई दे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल सुनो मेरी पुकार, मेरे इन सपनों को अब करो तुम साकार। मन में है ठाना जो अपने लिए, आज उस संकल्प को पूरा कर सजाऊं जीवन का साज। दिल तुम सपनों की डगर हो और उम्मीदों का संसार, जहां रोज बनेंगे नए इतिहास। मेरी आंखों में जो पलते हैं कुछ अनकहे अरमान, उन्हीं सपनों को देना है अब मुझे अब एक नया मुकाम। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत दिल को मजबूत बनने, सपने पूरे करने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और जीवन में प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हमारे एक और साथी ने भारत के लिए एक कविता लिख भेजी कि दिल के धड़कनों में सपने बसाए हैं, मानो तुम ही मेरी हर दुआ में समाए हैं। राह चाहे कठिन हो साथ अपना बना रहे, प्यार के सिलसिले यूं ही सदा चलते रहें। किसी बात पर कभी रूठ न जाना, अगर रूठ भी जाओ तो जल्दी मानना। दिन रात तेरी यादों का उजाला रहे, हर पल मुस्कुराना ही हमारा हवाला रहे। सपनों की डोर कभी टूटने ना पाए, दिल से दिल का रिश्ता सदा महकता जाए। ये जीवन तभी सच में सुंदर कहलाए जब

हर राह पर अपना साथ मुस्कुराए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ किस्से भी तो भेजिए ताकि कुछ आनंद आए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई किसी आप वो कह रहे कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि आज थीम तो अच्छी है लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, इस टोली के आदमी हैं हम। तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा। हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी नहीं मिलती, दिमाग नहीं नहीं उन्होंने लिखा है कि दिल के सुनने से खुशी मिलती है, दिमाग के सुनने से नहीं मिलती। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल में सजी यादें तो बहुत सारी हैं, हम जिक्र नहीं करते मगर बातें तो बहुत सारी हैं। तो भाई चलिए इन सारी बातों को लेते हुए क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें। और ये गीत तो हम अनुपमा फिल्म से सुनवा रहे हैं, बताइए किसने लिखा है।

0: अनुपमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। तो गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही जवाब हमें आपने दिया। और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर। हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिमाग सदैव दिल के ऊपर होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहेगा मगर दिमाग इन द्वंद्वों से सही राह दिखाता है, अतः दिमाग की ही मैं सुनता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ये सोचा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है, जहां अपना रिश्ता होता है वहां ये किस्सा है, वहीं ये किस्सा है। नाराजगी पल भर की हो सकती है लेकिन अपनापन उम्र भर का होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से अपने होते हैं वो रूट कर भी दूर नहीं जाते, बस मनाए जाने का इंतजार करते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूट जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मनाया जाए, और एक बार भी मनाने की कोशिश की जाए तो तुरंत मान जाते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप किसी से रूठे हैं और अब तक माने ना हो, उनके मनाए जाने का इंतजार कर रहे हो, और कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप रूठ जाते हैं आसानी से, और किसी को मनाना हो तो क्या करते हैं आप, ये बातें हम तक भेजिए। तब तक हमारे और साथी कह रहे हैं कि मैं हमेशा दिल की बात सुनती हूँ। वहीं हमारे एक और साथी कह रही हैं कि कभी कभी दिल उस बात को मनवा लेता है और हम मान भी लेते हैं, बाद में दिल की उस नादानी पर बेहद अफसोस होता है उन्हें। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका एक गीत शामिल हो गया उनकी लिस्ट में, जो गाना था वो शामिल हो गया, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे गीत शामिल होते रहें तो कितना ही अच्छा लगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारा जो दिल कहता है वही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग कहता है और वो काम करने से नुकसान हो सकता है, ऐसा कहते हैं तो हम वो काम नहीं करते। यानी दिल और दिमाग के बीच में बड़ा ही अच्छा सामंजस्य आपने बिठा रखा है, तभी तो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, कभी दिल के सुनते हैं कभी दिमाग के सुनते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दिल की बातें होने वाली हैं, कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुननी चाहिए, पर कैसे, दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है, और इन सब की कश्मकश में कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं। चले दिल की दुनिया को बर्बाद करके भूले से मोहब्बत कर, इस तरह से उन्होंने गानों के लाइंस बताई हैं, अपने पसंदीदा गानों के बारे में बताया है। देखते हैं उनके गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान दिल और दिमाग के बीच इस तरह से उलझ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इंसान को किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, उस समय दिल की आवाज ही सुननी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही, और हमारा दिल कह रहा है कि क्यों ना आपको एक संदेश सुना दें।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-4662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: तो अपने दिल की सुनिए और कल ही लगाइए फोन हेलो सहेली में। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने बहुत से लोगों की लिस्ट में देखा है और हमारी लिस्ट में भी पहले से शामिल था, तो हमें ये बताइए कि कौन से फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।

है बॉम्बे मेरी। सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज से। ये हमारे सवाल का सही जवाब है और हमारे साथियों ने भी सही जवाब दिया। हमारे एक साथी, हमने पूछा ना दो दुनी चार फिल्म का गीत सुनवाते हुए कि भाई कभी किसी दिल की वजह से कभी पिटने की नौबत आई क्या, तो कुछ किस्सा साझा करें। तो हमारे साथी ने भी लिखा है कि बदमाश दिल ने किसी को पिटवाया है तो वो अपनी कहानी साझा करें, लेकिन हमारे साथियों का तो कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर दिल के सुनकर पिटने की नौबत आई या नहीं, उसी को यहाँ उजागर करेंगे तो कार्यक्रम के दौरान ही शायद पिटने की नौबत जरूर आ सकती है। तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने सभी साथियों को, इसलिए आप ये किस्सा हमसे साझा ना करें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब दिल धड़कता है तो ऐसा लगता है कोई अपना हमारे पास आ रहा है, जब अपना हमारे सामने होता है तो दिल कुछ कह ही नहीं पाता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे मिस्टर जल्दी नाराज हो जाते हैं और मेरी पोती भी जल्दी रूठ जाती है, तो दोनों को ही मुझे मनाना पड़ता है और वो जल्दी से मान भी जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी मान जाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है इस कार्यक्रम के बारे में कि आज आप हमारे पिटने की बातें क्यों कर रही हैं, ये तो सोचिए भला अपनी इज्जत का फालूदा कौन करवाएगा। भाई ठीक है, हम तो बिल्कुल माफी मांगते हैं कि ये बात आप ना साझा करें कि कभी पिटने की नौबत आई थी या नहीं। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि औलाद द्वारा मन के विरुद्ध किए गए काम थोड़ी मुश्किल पैदा करता है, माँ बाप सबसे तर्क कर सकते हैं, कार्यरत जवान बच्चों से नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा, इसलिए वो इस कार्यक्रम में ज्यादा साथ नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भैया आज हेलो फरमाइश में फोन लगा रहे हैं, इस वजह से उनका पूरा ध्यान वहां है, तो बस हमारी यही कामना है कि आपका कॉल लग जाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल और दिमाग का हिसाब किताब बहुत अलग अलग होता है, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, धैर्य की बहुत जरूरत होती है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि समय से पहले और जरूरत से ज्यादा नहीं मिलता किसी को भी, किस्मत या भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। होता तो है। हमारे एक और साथी कह रहे कि दिल कब किसी पे आ जाए पता नहीं, कब किससे रूठ जाए पता नहीं, दिल के करीब किसी को आने मत देना, क्या होगा पता नहीं, दिल को रहने दो पंछी की तरह मस्त खुले आसमान में उड़ने के लिए, दिल को लगी चोट कभी भरती नहीं, संभल जाओ वरना पछताओगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें अपने पेड़ पौधों के साथ रहना और अपनी छोटी सी वाटिका में काम करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका दिल खुश होता है इस काम से। और हमारा दिल खुश हो सकता है जब हम सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है।

अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। ये हमारे सवाल का सही जवाब, हमने किसकी आवाज में गीत सुन रहे ये पूछा था आपसे। और ये हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है पर दिमाग उसे कंट्रोल में रखता है और इसी तरह से काम चलता है, ऐसा उनका कहना है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल के बारे में उन्होंने कहा कि दिल की सुनिए लेकिन फैसला दिमाग से कीजिए, क्योंकि दिल मंजिल चुनता है और दिमाग वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है, सही रास्ता चुनता है। हमारी एक और साथी कह रही है कि मैं ना तो रूठती हूँ और किसी को मनाना भी नहीं आता। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, ना इस चीज से मतलब ना उस चीज से मतलब, अपना जीवन आसानी से जीजिए। हमारे एक और साथी कह रही है कि आज की इबारत पर दिल की मानने का किस्सा बताना चाहूंगा। बात 2023 की है, छोटे बेटे ने MBBS का टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त की, काउंसलिंग सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सीट हो गई थी, फुल हो गई थी। अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के टीचर्स भी राजी थे, सिर्फ मैंने अपने दिल की मानी और अगले काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बेटा MBBS यही कर रहा है, तो जूठाना वो सच हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिल भी मुस्कुरा उठता है, हम कह सकते हैं। और आपके और हमारे दिल के लिए ये गीत सुनवाते हैं, बताइए किस फिल्म का गीत, किसकी आवाज।

जिंदगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में पापा से बहुत रूठते थे और वो मनाते थे, आज पापा उम्र के उस दौर में है वो हमसे रूठ जाते हैं और हम भी उन्हें मना लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात आपने ये लिख भेजी। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं, कभी कभी मेरा दिल मेरी सुनता ही नहीं, उसे जो चाहिए वही करना होता है, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ अपने दिल के हाथों। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि क्या बातें हुई, इन्हें तो कुछ पता नहीं, बस जैसे ही सुना तो रूठने की बातें ही सुनी। वैसे रूठने तो हम भी हैं, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं रह सकते, पर एक बात तो है, हम रूठें और कोई प्यार से मनाए उसका भी अलग एहसास होता है। कभी बच्चे रूठ जाते हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाकर उन्हें मना लेते हैं, और कभी डांट कर और कभी प्यार से। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल की हालत पर तो कई गीत, गजल और कहानियां लिखी गई हैं। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास ये दिन भी पात्र के दिली हालत और मनोवेग को शानदार चित्रण पेश करता है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाता हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात आपने लिखी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम दिल से सुनते हैं ये कार्यक्रम, गीतों की लिस्ट भी भेजते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल से गीत चुनते हैं, क्योंकि दिमाग कहेगा कि तुम्हारी लिस्ट से गीत नहीं मैच हुए तो, पर दिल कहता है कि सब अपने ही तो हैं, कार्यक्रम भी अपना, उद्घोषक भी अपना, इससे जहां भावनाएं जुड़ी हों वहां दिल की चलती है और दिमाग तो होता ही व्यवहारिक है। तो ये जब आपने कहा तो हमें मन में ये सवाल हुआ कि आपके लिस्ट में से कितने गीत शामिल हुए, आप सभी ने बताया ही नहीं कौन कौन से गीत शामिल हो गए आपकी लिस्ट में से, ये तो बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल किसी से लगाना यानी दिल को कमजोर करना। हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल वो अनमोल एहसास है जहां प्रेम जन्म लेता है, विश्वास पनपता है, रिश्तों की खुशबू बसती है, वो केवल धड़कनों का घर नहीं बल्कि यादों, सपनों और भावनाओं का सबसे सुंदर संसार है। जब दिल में अपनापन, करुणा और सच्चाई बसती है तो जीवन का हर रास्ता रोशन हो उठता है। एक साफ दिल नफरत को नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा को जगह देता है। यही दिल हमें दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना सिखाता है और कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक सुंदर, संवेदनशील और प्रेम से भरा दिल भी है जो हर धड़कन के साथ इंसानियत का गीत गुनगुनाता रहता है। तो चलिए एक गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, बताइए किसने लिखा ये गीत।

0: जाली नोट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। जाजा मेहंदी अली खां के बोल, ओपी नैहर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। हमारे एक साथी कह रहे कि जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले तब जन्म लेते हैं जब दिल की सच्चाई और दिमाग की समझ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिल हमें सपने देखने की हिम्मत देता है और दिमाग उन सपनों को हकीकत में बदलने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए न सिर्फ दिल की सुनिए, न केवल दिमाग की, दोनों का संतुलन ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि जब कोई अपना बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा आलोचनाएं कर देता है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक शख्स से ही रूठती हूँ, वो भी तब जब कहीं जाने की प्लानिंग करके देर से घर आते हैं, फिर 10 बार ना नुकुर करके फिर तैयार हो ही जाती हूँ। तो भाई इन रूठने मनाने पर एक गीत आपको सुनवा देते हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।
1: Hi.

एडमिशन के दिन आते हैं तो माता पिता का बच्चों पर दबाव बढ़ जाता है। अक्सर माता पिता ये चाहते हैं कि जो विषय वो तय करें बच्चे वही विषय चुनें और आगे की पढ़ाई करें। एक छात्र के जीवन में सबसे मुश्किल समय तब होता है जब उसे अपने आगे के रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, जब उसे अपने लिए खास विषयों का चुनाव करके पढ़ाई की

दिशा निर्धारित करनी पड़ती है और तब अगर माँ बाप के दबाव में फैसला किया तो बच्चों की प्रतिभा इस दबाव और अनचाहे विषय के तले घुटती चली जाती है। हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से अपने करियर के चुनाव के अवसर आखिर कब देंगे।

हर बच्चे में एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, किसी न किसी विषय में उसकी दिलचस्पी होती है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा कलाकार हो, बहुत अच्छा अभिनय करता हो, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता हो, कोई बहुत अच्छा लिखता हो, कोई तकनीक में बहुत अच्छा हो। जाहिर है कि हर बच्चे के भीतर छिपे प्रतिभा के इन बीजों को सही तरीके से पोषित करना अनिवार्य होता है। लेकिन हमारे यहाँ जीवन में ज्यादा पैसे कमाने और ज्यादा प्रभाव और रसूख कमाने पर जोर दिया जाता है। एक जमाना था जब डॉक्टर इंजीनियर के सिवा तीसरा करियर नजर ही नहीं आता था। आज भी माँ बाप या परिवार के बुजुर्गों का बच्चों पर दबाव रहता है कि वो कोई ऐसा करियर चुने जिसमें

ज्यादा पैसे कमाने के अवसर हों और जिंदगी ज्यादा सुख सुविधाओं में बीते। ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे का मन और उसके सपनों की उड़ान क्या है। अगर बच्चों को आजादी दी जाए अपना करियर खुद चुनने की, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा तरक्की करें।

बहुत ज्यादा दबावों में प्रतिभा का विकास नहीं होता है, बहुत ज्यादा उम्मीदों का बोझ होता है, तब भी कहीं न कहीं बच्चों की प्रतिभा और उनके मन पर असर पड़ता है। ये ठीक है कि माँ बाप बच्चों की भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक सुविधाजनक जिंदगी बच्चे जिएं, जिसमें किसी तरह का कोई अभाव ना हो, कोई परेशानियां ना हो, लेकिन बच्चों को ये आजादी तो होनी ही चाहिए कि वो अपने मन से तय करें कि वो अपनी जिंदगी की राहों को किस दिशा में ले जाना पसंद करते हैं। बस माँ बाप को चाहिए कि वो इस दिशा को निर्धारित करने में बच्चों का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर दें और उन्हें एक सही नजरिया प्रदान करें, बच्चों को सही हालात दें आगे बढ़ने के, पर फिर देखिए कि वो किस तरह से अपने सपनों की उड़ान भरते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया।

0: अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश

0: किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरा लाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार

0: पक्ष से अमीषा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
4: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
5: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हन्ने हन्ने हन्ने प्यार हो गया। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हन्ने हन्ने हन्ने प्यार हो गया।

कहता हूँ दम तो लेने दो। हा हा हा हम थे मोती और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

0: दिल ठक ठक ठक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

0: ने खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और अनुप कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे।
4: T-A-T, cat, cat माने बिल्ली।
5: R-A-T, rat, rat माने चूहा।
4: C-A-T, cat, cat माने चूहा। अरे दिल है।

0: सर ओ जाने जिगर तेरा क्या करेगी दुनिया,
1: जहाँ से डरो ये सोचा करो हमें क्या कहेगी दुनिया।
0: अरे मिला ले नजर ओ जाने जिगर तेरा क्या करेगी दुनिया,
1: जहाँ से डरो ये सोचा करो हमें क्या कहेगी दुनिया।
0: बी ए डी बैड, बैड माने बुरा,

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे लाजवंती फिल्म से ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने फिल्म का गीत आपने सुना। भरत व्यास ने इसे लिखा, कल्याण जी वीर जी शाह का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, फिल्म उजाला।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ बिजली

0: मुश्किल मौत आसान। वो जाने कैसा है ये जहां,
1: हर जीना मुश्किल मौत आसान।
0: हम फिर भी जी रहे हैं, जख्मों को सी रहे हैं,
2: हम फिर भी जी रहे हैं, जख्मों को सी।

0: यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ यारो सूरत हमारी।
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों के बाद।

0: Haley.
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, है ना।
2: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
1: बिल्कुल। और देखो, कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है यही प्रार्थना रहती कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले
2: जी,
1: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहें, खुशहाल हाँ। रहें, हरे भरे रहें। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारी, हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
2: जी।
1: तो तुम समझ गई होगी कि आज क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
2: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की। और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह, जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूज कर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या मतलब 15 दिन पहले
1: उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहां पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, है ना नहीं?
2: जी बिल्कुल, बधाइयां हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा छोले चाट।
2: तो देखिए, तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
1: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहां पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
2: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे, एक आज की कसर जी। तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
0: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
3: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी, मित्रों से प्रशंसा

पूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

0: महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
1: हाँ।
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा, जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
2: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
1: खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
2: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
1: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
2: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
2: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है, केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ हाँ, सही है।
3: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
4: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
3: हाँ, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
1: आपके कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो

0: उसका घोर अन्याय है।
1: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
2: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
1: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों। कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
3: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
1: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
2: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
4: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह ना होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष में मेरे साथ क्या रियायत होगी? मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
2: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा। चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
1: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था।

0: ये तू कहां से उठाला आया? शैतान जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
1: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
2: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
1: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
2: वाह वाह वाह वाह, यहाँ भी चलते हुए।
0: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
2: बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहाँ पाया?
3: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
0: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था, तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
3: मुझे मेज पर नहीं मिला।
0: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसी खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
1: अरे भाई ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
2: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
1: मिल तो गया था पर बस एक आंच की कसर रह गई।
2: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है।
4: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया। गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे।
1: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं? मुझे यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ?
2: मक्कार का मुंह काला।
1: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
6: एक आज की कसर, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
7: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे।
6: जी,

0: तो मंजरी जी सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए
1: भाई। बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है
0: जी।
1: और विशेष रूप से युवाओं युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी क्लब रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है। और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ही जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़े नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, हाँ। तो नेहा, इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव कर

0: करते हैं तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर हाँ। ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार के इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए, लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन है, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
1: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है, तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं, तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो इस किरदार में आपको क्यों ढलना है,
0: क्यों ढलना है। और निहा, जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके, वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है, आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए, विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों, बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी की, संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा। हमारे साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है। और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए। यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है। तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच

0: सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है। छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन छोड़े रहना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है, स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस

0: बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है। स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूँ तो दुख होता है। चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुना ही दी है,
0: सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन की बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी,
0: बिल्कुल एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है। इस गीत से भी संदेश मिलता है। और देखा जब विवाह जो है वो बंधन नहीं रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आत्य और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए।
1: वाकई मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी है वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें।

0: बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी वो आदतें हैं। एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
1: वो भी अच्छा है। और दोनों को पहल करनी पड़ती है रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी नेहा एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाए, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई जो है वो कैद नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी जहां दोनों का समान होता है, समान अधिकार है, और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए, तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना?
0: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि छोटी सी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना जरूरी है और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, न कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्होंने तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है, जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है और वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी परंपरा है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं बल्कि रिश्तों को समझने, संजोने और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
0: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती है। अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं, लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है, ये लड़कियों के लिए भी नया होता है। ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है। तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
1: तो
0: वो एक घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
1: और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझे। आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए। नेहा,

0: तो
1: नहीं, ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं, लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही
0: बिल्कुल है। और बस खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जर तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया।
1: और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं, तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए। शादी के बाद वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमें

0: हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर,
1: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे या ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
0: मूल मंत्र है
1: विवाह को अच्छी तरह से, बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह। जिसमें
0: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
1: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे?
0: तो चलो पहले गाना सुना देते।
1: बिल्कुल।

0: तो देखो,
1: बनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए। अच्छा,
0: चलो फिर बना देते हैं दाल की कचौड़ी। इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से। और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गर्म करिए, इसमें हींग जीरा सौंफ धनिया और बेसन डालकर भूने। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए है ना। और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, इस दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात यह है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको आईबीपी हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको नमक जिसको फीकी लगेगी वो क्या बना दिया।
1: आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग 1/2 छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और

0: मेथी का दाना आधा छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों एक एक छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं, और नमक का आपके स्वाद के अनुसार। अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए एक छोटा चम्मच, और एक छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको दो बड़े चम्मच लगेंगे। सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग, जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दे। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर, एक दो मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद दो तीन कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है, कचौरियां तो बन ही चुकी हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आप दोनों ये सारी चीजें खाइए। और देखिए, समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: तो अब कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लीवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारी जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारे कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक

0: लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए. एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट. अगर कुछ नहीं ठीक हुआ तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम. पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं. एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है. तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है. अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है. पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है. तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं. अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस. अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है. तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द. एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए.
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है. और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं. घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था. आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं. क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को.
0: बिल्कुल सही कहा आपने. जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से हमारी आवाज निकलती है. स्पेशली जब हम रात को सो जाए, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है. कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है. तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है. ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पर काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है. तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है. ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है, तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स.
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें. और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है. अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए.
1: सुनते हैं.

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के जमाने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयां निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के जमाने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयां लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीजन हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयां हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने जमाने में ये दवाइयां नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के जमाने में अल्सर की सर्जरी इज ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
0: जी जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
0: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूंकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने,

0: ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: ओके, तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी, तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही
0: से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया?
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना
1: क्या बात है, आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, दवाई नहीं देनी है हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज है जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेस जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेस जो बोलते हैं हम ना, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी,
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और थोड़ा

0: बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
1: जी जी, और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
0: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं, मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्ने होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ सकता है
1: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
0: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसके लिए पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? बोले हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की वो कलरफुल होनी चाहिए।
1: okay.
0: मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाए, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।
0: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
1: तो बिल्कुल, और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है, ये गाना फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे
1: जी,
0: और काफी सुना है हमने
1: जी।

0: डॉक्टर साहब बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी।
1: हाँ, तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते हैं जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है। अभी काफी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे भी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट एंड राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर्स मेजर करते हैं, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको

0: 24 आवर पीएच मैन हम पीएच प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस.
1: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय. डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस. ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
0: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है. कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतरी में कुछ इशू है. अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं. जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको आईबीडी बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको आईबीडी बोलते हैं. ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस आईबीडी वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर आईबीडी की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है. ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है. अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है. जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली. तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है.
1: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है. और अब डॉक्टर साहब एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
0: शायद मेरी शादी का ख्याल
1: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना.

0: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, कि कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये क्या समस्या है?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन आल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली है, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है।
0: जी, जी।
1: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि माइग्रेन ना हो, क्योंकि माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो, अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपना हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स, इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
0: जी, हमने भी कई बार

0: एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
1: कुछ तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स.
0: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है. तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिंस कैन कॉज एसिडिटी. तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है, तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ.
0: जी जी जी. और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
1: बिल्कुल
0: तो,
1: बिल्कुल.
0: या फिर जो लोग नहीं लेते उन्हें भी होता है? तो हाँ,
1: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है. दोनों सेम चीज करते हैं. अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है. अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है. एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है. द ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर. तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है, तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए. वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स. तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है, तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान टबैको सेम चीज, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है. अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड. अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है, समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है, और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं. ये सबसे डेंजरस है, बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है. तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल.
0: जी जी. डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
1: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है. तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं. आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए. दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी, हेपेटाइटिस बी. बाकी और भी वायरसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है, जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीकोरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है. हेपेटाइटिस ई ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम. एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है. ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से, या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है. हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं. हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है, और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है. तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो. ये कॉमन इंजरी है लिवर की. तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: ये कॉमन है. वायरसेस कॉमन है. फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज है वो काफी रेयर होती हैं. लास्ट चीज मैं कहूंगा, गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है. अगर लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर के ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है. तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस.
0: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या?
1: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली

0: फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है. इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है. एक सोनोग्राफी करेंगे, उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स है कि नहीं.
1: जी जी. और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं. गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है.
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई. और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है. अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
0: ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है. अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं. तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट है जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले. अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ. एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है. तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी. दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत.
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी? हाँ, या तो कुछ नहीं?
0: नहीं नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड. बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में. कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए. पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड.
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
0: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज जस्ट अ सेंसिटिव थिंग. अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो, तो सारा नॉर्मल होता है. इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये.
1: ओके. अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को. बताइए कौन सा गाना सुनवाए.
0: चले चलो, ये गाना सुना है चले चलो.
1: चले चलो लगान का.
0: लगान का,
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो.

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्या है।
1: तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बार। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल रहे ये तेल अच्छा है ये ले ले इसे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है, खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाई है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासिटामोल है, 500 ml पैरासिटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है।
0: और
1: स्टेरॉइड भी आता है, और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वालो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उससे क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड, मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट, इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड।
0: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता

0: सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युवाणी में, जहां आज आपके साथ है आपके दो रेडियो दोस्त, मैं राहुल
1: और मैं लक्षिता। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ।
0: कैसा सवाल लक्षिता?
1: सोचो, जरा तुम भी सोचो राहुल, कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ।
0: लक्षिता, तुम्हारे सवाल और तुम्हारे जवाब मतलब ऐसे होते हैं कि सोच नहीं सकते हैं सामने वाला।
1: चलो मैं ही बता देती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: देखिए दोस्तों, अगर आपको एक दिन के लिए समय में पीछे जाने का मौका मिले या भविष्य की दुनिया को देखने का मौका मिले, तो इन दोनों में से आप किस जगह जाना चाहेंगे?
0: वैसे लक्षिता, हमारे दोस्तों का तो पता नहीं, पर अगर ये सवाल मुझसे कोई पूछे तो मैं तो जरूर भविष्य में जाकर ये देखना चाहूंगा कि आने वाला जो टाइम है उसमें दुनिया कितनी बदल चुकी होगी।
1: क्या बात है,
0: क्योंकि
1: तो,
0: अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। मतलब 2 साल पहले जो चीज हमने देखी थी उसमें भी बदलाव आ चुका।

0: चुके हैं, इनफैक्ट कल की देखी हुई चीज में भी आज बदलाव आ चुके हैं, तो मैं बहुत ऐसा रहता हूँ कि आने वाले टाइम कैसा होगा।
1: यही तो खासियत है हमारी दुनिया की राहुल, हर दिन कुछ नया होता है, कुछ ऐसा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। और अक्सर हम नई नई चीजें देखते हैं, बदलती हुई चीजें देखते हैं, लेकिन कभी कभी तुमने सोचा है कि हम किसी चीज को काफी टाइम पहले देखते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद जब हम वापस उस चीज को देखते हैं तो हमें कितना चेंज देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल, और हम मतलब ये सब चीजें हमें हैरान भी कर देती है दोस्तों, कि अंतरिक्ष में देख लीजिए नई नई खोजें हो रही है, तो वो हमें एकदम से हैरान कर देते हैं। कभी समुद्र की गहराइयों से अचानक से ऐसी जानकारी मिलती है जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं था, ऐसी घटनाएं हमारे सामने कभी कभी आ जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा, और सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि हमारे आसपास भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। जैसे एक छोटा सा पौधा, आसमान में चमकता तारा या हमारे मोबाइल की छोटी सी तकनीक, इन सब के पीछे कोई ना कोई रोचक कहानी छिपी हुई होती है।
0: बिल्कुल सही कहा लक्षिता, और मुझे लगता है ना कि ये दुनिया जो है वो रहस्यों, नई संभावनाओं, इन सब से ना भरी हुई है। मतलब जरूरत है कि बस अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखने की। जब हम जिज्ञासु होते हैं ना तो हमें नई नई चीजें देखने को मिलती है, नई नई चीजें
1: सीखने का मौका मिलता है, जानने का मौका।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है एक बार किसी डोर को हम पकड़ते हैं ना तो फिर खींचते खींचते खींचते खींचते उसकी डेप्थ तक हम लोग चले जाते हैं।
1: और हमें जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान का सागर काफी बड़ा है। आप जितना अंदर जाते जाएंगे आप उतना ही उसमें घुलते जाएंगे, शामिल होते जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो क्यूरियोसिटी होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए।
0: बिल्कुल, और क्योंकि जो सवाल पूछता है लक्षिता वही कुछ नया सीखता भी है मुझे लगता है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता भी है।
1: बिल्कुल सही।
0: और दोस्तों आज की दुनिया भी बहुत तेजी से बदल रही है, नई नई तकनीकें, नए नए आविष्कार और नई सोच हमारे जीवन को एक मतलब नया ही रूप दे रही है।
1: लेकिन इस बदलाव के बीच जरूरी है कि हम जानकारी से जुड़े रहें,
0: बिल्कुल
1: नई चीजें सीखते रहें और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते रहें, क्योंकि वो कहते हैं ना कोशिश करने से हो जाता है और आपको चीजें नई नई जानने का मौका भी मिलता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी ही यात्रा के लिए जहां आपको मिलेगी नई नई जानकारी, रोचक कहानियाँ और ऐसे तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे।
1: क्योंकि दोस्तों युववाणी के इस कार्यक्रम के साथ कोशिश यही रहती है कि आपके ज्ञान में कुछ नया जोड़ा जाए और आपकी सोच को एक नई दिशा मिल सके। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनाते हैं आपको आज की शाम का ये पहला गीत।

0: हेलो नमस्ते गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवानी आपके दो रेडियो दोस्तों के साथ। मेरा नाम है लक्षिता
1: और मेरा नाम है राहुल।
0: बने रहिए हमारे साथ शाम 6 बजे तक।
1: लक्षिता, मैं जब से रेडियो पे आया हूँ तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ।
0: तो बोलो।
1: क्या तुम्हारी तबीयत आज ठीक है?
0: बिल्कुल मतलब? सही पकड़ा तुमने, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। 2-3 दिन से मुझे थोड़ा कोल्ड एंड कफ हो रहा है और गला भी थोड़ा खराब है।
1: ये शायद बदलते मौसम का भी मुझे लग रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, गले में खिंचावट हो रही है थोड़ी अजीब सी और काफी ज्यादा प्रॉब्लम में।
1: तो मैं तुमसे यही कहूंगा, इस मौसम में काफी ध्यान रखो और दोस्तों आप भी अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा है ना कि गर्मी सर्दी कुछ पता नहीं चल रहा है।
0: तो ये मौसम कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत धूप आ रही है, कभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और हमें ठंडा ठंडा फील हो रहा है, और इसी के साथ हमारी बॉडी टेम्परेचर भी बदलता जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: हम कभी ठंडा पानी पी रहे हैं, कभी हम नॉर्मल वाटर पी लेते हैं, तो ये सब इसी का नतीजा है। तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आपको किस वक्त क्या लेना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इसी से आप अपनी तबीयत को बचा सकते हैं। वैसे राहुल, पहले तुमने मुझे रोक दिया, मेरे दिमाग में एक और सवाल था।
1: अच्छा,
0: तुमसे मैं कुछ और भी पूछना चाहती थी।
1: लक्षिता के सवाल हो और हम जवाब ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता।
0: तुम्हें देना पड़ेगा राहुल।
1: बिल्कुल लक्षिता, तो
0: सवाल ये है कि तुम फिर से डिजिटल ब्लैक होल में तो नहीं खो गए थे? मतलब घड़ी की तरफ देखो एक बार, पूरे 2 घंटे से तुम सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल करते जा रहे हो।
1: लक्षिता, वैसे तुमने ये बात सही की, मैं जब आया था रेडियो पे तो मुझे इम्पोर्टेंट सा मेल चेक करना था।
0: okay.
1: तो मैं सिर्फ वही चेक करने में लगा हुआ था, बट तुमने ये बात अभी पूछी है

0: तो मैं बता देता हूँ कि मुझे लगता है ना, ये सबकी आदतें होती है कहीं ना कहीं, कि कब ना हम कोई इम्पोर्टेंट काम करते हुए कब हम इंस्टाग्राम पर पहुंच जाते हैं,
1: हाँ,
0: कब
1: मतलब हम देखना कुछ
0: सोशल
1: और चाहते हैं
0: मीडिया
1: फोन
0: पे
1: पे
0: हम लोग। हाँ
1: और हम भूल जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल। तो ऐसा मुझे लगता है ना कि सबके साथ होता है। और कभी हम क्या देखने हैं, कभी नोटिफिकेशन किस चीज़ का हमें देखना होता है, लेकिन हम कहाँ पहुंच जाते हैं ये हमें खुद को भी नहीं पता होता है।
1: लेकिन राहुल एक बात बताऊं, तुम अकेले नहीं हो। आजकल बहुत से लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। लगातार मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के कारण हमारा ध्यान बार-बार भटकने लगता है।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि लक्षिता, कभी कोई मैसेज, कभी कोई वीडियो और कभी कोई नया नोटिफिकेशन हमारा ध्यान जो है ना अपनी तरफ ही खींच लेता है। लगता है जैसे हमारा दिमाग हर समय ना व्यस्त ही रहता है।
1: एक मजेदार बात बताऊं, अक्सर कहा जाता है कि आज के इंसानों का अटेंशन स्पेन यानी ध्यान लगाने की क्षमता बहुत कम हो गई है। डिजिटल आदतों ने हमारी एकाग्रता को कहीं ना कहीं प्रभावित कर दिया है और ये चीज हमें भी महसूस होती है। कहीं ना कहीं हम भी इस चीज की चपेट में आ चुके हैं।
0: लक्षिता, सच में ये तो सोचने वाली बात है। अगर हमारा ध्यान इतनी जल्दी भटकने लगेगा तो पढ़ाई, काम और जो भी हम क्रिएटिव, जो हमारा माइंड है उस पर भी बहुत असर पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा राहुल, यही कारण है कि हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित रखने की जरूरत है। इस व्यवधान के जाल से बाहर निकलने का एक प्रभावी तरीका है ध्यान यानी कि मेडिटेशन।
0: लक्षिता, अब प्लीज ये मत कहना तुम हमारे दोस्तों को कि हमें हिमालय पर जाना चाहिए, हमें आंखें बंद करके घंटों बैठना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है और सच बताऊं तो बोरिंग भी है।
1: ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ साधु बनना या घंटों तक बैठना ही नहीं होता राहुल। तुम प्लीज अपना ये जो दिमाग है इतना मत लगाओ। ध्यान मतलब ध्यान जो होता है ये हमारे दिमाग को शांत और मजबूत बनाने का एक असली और अच्छा तरीका है।
0: क्या बात कर रही हो, मतलब ध्यान को आसान तरीके से भी किया जा सकता है।
1: बिल्कुल, ध्यान को तुम अपने दिमाग का एंटीवायरस समझ सकते हो। जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस बेकार फाइलों को हटाता है, बिल्कुल वैसे ही ध्यान हमारे दिमाग से अनावश्यक विचारों और तनाव को कम करने में हमारी मदद करता है।
0: तुम्हारी बात तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ध्यान हमारे दिमाग पर काम करता कैसे है रक्षिता?
1: देखो, जब हम रोज कुछ मिनट शांत बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, मतलब कह सकते हैं कि हमें सुकून मिलता है और धीरे धीरे हमारी एकाग्रता यानी कि हमारा फोकस बढ़ता जाता है। हम अपने काम पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं और अच्छे से उस चीज को समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रॉपरली।
0: तो दोस्तों, आप भी अगर 5 से 10 मिनट का ध्यान अगर रोज करते हैं तो आपका ध्यान भी आपका पहले से बेहतर बन सकता है और वो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे पड़ता ही जाता है, वो कम नहीं होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और जब भी तुम्हारा मन बार बार मोबाइल या दूसरी चीजों की तरफ जाएगा तो तुम्हारे अंदर एक जागरूकता आएगी कि तुम्हें वापस अपने जरूरी काम पर ध्यान देना है, जो कि बेहद जरूरी है।
0: वाह, इसका मतलब ध्यान हमें समय और ध्यान को नियंत्रित करना सिखाता है। जो काम हम भटकाव के कारण कई घंटों में करते हैं उसे बेहतर एकाग्रता के साथ हम बहुत ही कम समय में दोस्तों पूरा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही, ध्यान से हमारी कार्य क्षमता बढ़ सकती है और हम ज्यादा शांत तथा पॉजिटिव महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा ना कि आज से स्मार्टफोन को थोड़ा सा सीमित समय दीजिए, मतलब खुद के लिए कुछ समय निकालिए, क्योंकि आप सब भी नहीं चाहते हैं ना कि हर समय आप लोग नोटिफिकेशन के पीछे ही भागते रहें।
1: बिल्कुल सही कहा। और राहुल, मैं यूं भी कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव वे में ही सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है कि आपको अपनी जो सोच है उसे
0: पॉजिटिव
1: रखना है, ताकि आप भी पॉजिटिव रहें और आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो भी आपसे प्रभावित हों और वो भी पॉजिटिविटी अडॉप्ट करें। तो इसमें आपका काफी बड़ा रोल है और यही है आज का संदेश दोस्तों। आप भी अपने जीवन में थोड़ा समय ध्यान के लिए निकालिए, यानी अपने लिए, खुद के लिए निकालिए। देखिए, डिजिटल व्यवधानों को पहचानिए और अपने मन को मजबूत बनाइए।
0: और दोस्तों, याद रखिए कि तकनीक का उपयोग करिए लेकिन तकनीक को अपने ऊपर ना हावी होने दीजिए।
1: और इसी के साथ अभी मेरा मन है कुछ प्यारा सा गाना सुनने का और मैं आशा करती हूँ हमारे दोस्तों का भी यही मन होगा राहुल।
0: बिल्कुल,
1: तो प्ले कर दो कुछ अच्छा सा गाना और ले चलते हैं दोस्तों को गीत और संगीत की दुनिया में, कर देते हैं उनके मन को मंत्रमुग्ध।

0: इस प्यारे से गाने के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, ले चलते हैं आपको हमारे अगले विषय की ओर, जिसका नाम है समुद्र के सुपर सिपाही कोरल रीफ।
1: लक्षिता, हम हमारे दोस्तों के लिए जैसा कि कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसा ही बोल सकते हैं इसको।
0: ओके।
1: क्योंकि इसका जो है ना, हमारी धरती को बचाने में एक बहुत योगदान बोल सकते हैं रहा है, मतलब सुपर पावर की तरह ये हमारे लिए काम करती है।
0: क्या सुपर पावर?
1: यस।
0: क्या बात है, मतलब ये सुनकर तो मुझे खुद को भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि ऐसा क्या है। कहीं तुम एक्वामैन की कोई कहानी तो नहीं सुनाने वाले?
1: नो, एक्वामैन की कहानी नहीं लक्षिता, आज की कहानी किसी फिल्म की हीरो की नहीं है, बल्कि प्रकृति के असली नायकों की है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं समुद्र के जंगलों यानी कि कोरल रीफ की, जिन्हें कि हम हिंदी में मूंगे की चट्टाने भी कहते हैं।
0: वाह राहुल, कोरल रीफ सच में प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है, हम कह सकते हैं। देखने में ये बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन इनका महत्व केवल सुंदरता तक सीमित नहीं है। ये समुद्री जीवन और पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने लक्षिता। और दोस्तों, कोरल रीफ जो है समुद्र के अंदर बनने वाली एक ऐसी संरचनाएं हैं जो छोटे छोटे जीवों द्वारा बनाई जाती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि लाखों वर्षों में धीरे धीरे ये विकसित होती है और समुद्र के अंदर एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र तैयार करती है।
0: मतलब हजार भी नहीं और सौ भी नहीं और लाखों में होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये कितना बड़ा प्रोसेस होता
1: होगा, मेहनत का काम, अगर हम लोग ये करें तो कितना मेहनत का काम है ये देखो।
0: और सबसे खास बात ये कि इससे ये समुद्र के बहुत छोटे हिस्से में फैली होने के बावजूद असंख्य समुद्री जीवों को जीवन भी देती है।
1: बिल्कुल।
0: अब ऐसी कितनी सारी चीजें है ना राहुल, जो हमें नहीं पता।
1: बिल्कुल।
0: और जब हमें जानने को मिलती है तो हम कितना अचंभ रह जाते हैं। देखिए, मछलियाँ, कछुए, छोटे समुद्री जीव और कई अन्य प्रजातियाँ इन पर निर्भर रहती हैं, ये भी हम आज जान रहे हैं।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के लिए, इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोरल रीफ जो है, इसे समुद्र का घर भी कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्री जीवों को भोजन, सुरक्षा और प्रजनन के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करती हैं।
0: लेकिन मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है राहुल, लेकिन जैसे कि ये इतनी महत्वपूर्ण है, फिर भी आजकल जो कोरल रीफ है ये खतरे में क्यों है फिर?
1: लक्षिता, ये बहुत ही अच्छा सवाल तुमने पूछा है, और ये एक गंभीर समस्या भी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण देखो समुद्र का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
0: बिल्कुल सही।
1: और जब हम जानते हैं कि जब समुद्र का पानी बहुत अधिक गर्म होता है ना, तो कोरल तनाव में आ जाते हैं और अपना रंग जो है ना वो खोने लगते हैं।
0: ओके।
1: और इसी जो ये पूरी प्रोसेस होती है, इसी को हम कोरल ब्लीचिंग भी कहते हैं।
0: तो दोस्तों, कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कि कोरल के अंदर रहने वाले छोटे जीव जिन्हें शैवाल कहा जाता है, उनसे अलग हो जाते हैं। यही शैवाल कोरल को ऊर्जा और रंग प्रदान करते हैं। इनके चले जाने से कोरल कमजोर हो जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
1: और दोस्तों, इसके अलावा समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, सब जगह देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा मछली पकड़ना और समुद्र में बढ़ता जो अम्लीकरण है, ये भी ना कोरल रीफ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सी बन गई है। मतलब इसको बर्बाद करने में इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है।
0: बिल्कुल सही कहा। यदि कोरल रीफ नष्ट होती है तो इसका असर केवल समुद्री जीवों पर ही नहीं पड़ेगा दोस्तों, बल्कि इंसानों पर भी पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों लोग भोजन, रोजगार और तटीय सुरक्षा के लिए समुद्री परिस्थिति की तंत्र पर भी निर्भर रहते हैं।
1: लेकिन लक्षिता,

0: तुम्हारी बात को मैं बीच में काट रहा हूँ क्योंकि इस बीच एक अच्छी खबर भी है हमारे दोस्तों के लिए मतलब जिसको सुनकर थोड़ी सी हमें राहत मिलती है कि वैज्ञानिकों ने समुद्र में ना कुछ ऐसे कोरल खोजे हैं जिन्हें सुपर कोरल्स कहा जा रहा है।
1: सुपर कोरल्स?
0: यस।
1: ये तो बहुत दिलचस्प नाम लग रहा है। आखिर इनमें ऐसी कौन सी खासियत है?
0: जैसा नाम है वैसी ही खासियत है लक्षिता,
1: बता दो हमें भी।
0: इन कोरल्स में दोस्तों गर्म पानी और बदलते समुद्री वातावरण को सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और इनका जो सामान्य कोरल की तुलना में कठिन परिस्थितियों में भी इनका जो जीवन काल होता है वो बहुत मजबूत होता है, मतलब ये बहुत टाइम तक जीवित रह सकते हैं।
1: यानी ये कोरल जलवायु परिवर्तन के दौर में समुद्री जीवन को बचाने की एक नई उम्मीद बन सकते हैं।
0: बिल्कुल बन सकते हैं।
1: और ये खुशी की बात है,
0: बहुत खुशी की बात है। और वैज्ञानिकों ने अब इन विशेष कोरल्स पर जो है ना वो शोध अभी भी जारी है और इनके संरक्षण के लिए भी विशेष नर्सरी तैयार हो रही है और इनके नए कोरल विकसित करके उन क्षेत्रों में इनको लगाया जा रहा है कि जहां पर पुरानी जो रीफ है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है वहां पर इन्हें लगाया जा रहा है।
1: तो दोस्तों ये प्रयास समुद्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर हम इन सुपर कोरल्स को सफलतापूर्वक संरक्षित कर पाए तो समुद्री जैव विविधता को बचाने में बड़ी मदद मिल सकती है।
0: बिल्कुल लक्षिता, और क्या तुम जानती हो कि कोरल रीफ इंसानों की भी रक्षा करती है?
1: हाँ राहुल, कोरल रीफ समुद्र की तेज लहरों और तूफानों की शक्ति को कम करती है। इस प्रकार ये तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में भी मदद करती है।
0: और दोस्तों साथ ही ये पर्यटन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई देशों की अर्थव्यवस्था इन समुद्री संसाधनों से जुड़ी हुई है।
1: तो दोस्तों अब सवाल ये है कि हम कोरल रीफ को बचाने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं?
0: दोस्तों हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का कम उपयोग करिए, समुद्रों को प्रदूषण से बचाइए, ऊर्जा की बचत करिए और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जागरूकता रखिए।
1: देखिए दोस्तों ये सारे वो रूल्स हैं, वो नियम हैं जो हम कई दौर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बेसिक से बिल्कुल कि प्लास्टिक यूज नहीं करनी और प्रदूषण नहीं करना पानी का, और ये सारी चीजें नॉर्मल है। तो अब तो ये लोगों को समझ जानी चाहिए कि ये कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और इन्हीं सब चीजों से हम काफी सारी चीजें प्रभावित कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और इनका कम होना बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है।
1: तो हमें ये समझना होगा कि प्रकृति की हर छोटी चीज का अपना महत्व है, एक अपनी इम्पोर्टेंस है और हमारी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ भी प्रीशियस है।
0: बिल्कुल।
1: समुद्र के अंदर मौजूद ये छोटे छोटे कोरल वास्तव में धरती के बड़े रक्षक हैं दोस्तों, आप चाहे माने या ना माने।
0: बिल्कुल, और सही कहा लक्षिता तुमने। और दोस्तों यदि हम आज कोरल रीफ की रक्षा करेंगे ना तो आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण हम दे पाएंगे।
1: तो दोस्तों आइए हम सभी संकल्प लें कि समुद्रों को स्वच्छ रखने और प्रकृति की रक्षा करने में अपना योगदान सफलतापूर्वक देंगे।
0: बिल्कुल, और याद रखिए दोस्तों समुद्र की गहराइयों में छिपे ये सुपर सिपाही यानी कि कोरल रीफ हमारी धरती के लिए बहुत ज्यादा अनमोल है।
1: और फिलहाल हमारे कार्यक्रम के लिए अनमोल है कुछ हसीन पल, और वो हसीन पल हमें मिलते हैं कुछ गीतों के माध्यम से, है ना राहुल?
0: बिल्कुल। तो बिना देरी करे लक्षिता ले चलते हैं हमारे दोस्तों
1: को। तो मैं चाहूंगी अब तुम्हारी पसंद का कोई गाना हमारे दोस्तों को सुनाओ ताकि शाम और भी मजेदार हो जाए।
0: ओके, तो मेरी अगर पसंद का गाना है तो मैं ये गाना तुम्हें सुनाता हूँ।

0: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी, आपका अपना कार्यक्रम। दोस्तों, आज है 29 जून और इस अवसर पर पूरी दुनिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रही है। दोस्तों, ये दिन हमें पृथ्वी के उन क्षेत्रों के महत्व को समझाने का, समझने का अवसर देता है जो कि जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और मानव जीवन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर है। दोस्तों, इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी और इसे पहली बार 29 जून 2017 को मनाया गया था।
1: राहुल, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आखिर है क्या?
0: बिल्कुल सही कहा लक्षिता। दोस्तों, पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा, जिनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पर वर्ष भर अपेक्षाकृत अधिक तापमान रहता है बाकी जगहों की तुलना, और अधिकांश स्थानों पर लक्षिता यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा होती है। और हमें जानकर ये होगा कि भारत का जो एक बड़ा हिस्सा है वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है।
1: अच्छा, बिल्कुल सही कहा तुमने। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है दोस्तों, बल्कि लोगों को ये समझाना भी है कि ये क्षेत्र पृथ्वी के भविष्य के लिए कितना जरूरी है।

0: है और महत्वपूर्ण है। दुनिया की लगभग 40% भूमि और लगभग 80% जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है।
1: बिल्कुल, और यही कारण है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा जो है वो पूरी मानवता के लिए आवश्यक है। यहाँ केवल घने जंगल ही नहीं है बल्कि लाखों प्रकार के पौधे, जीव जंतु, पक्षी और समुद्री जीव भी पाए जाते हैं।
0: साथ ही ये क्षेत्र कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन और औषधीय पौधों का भी प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, अमेज़न वर्षावन, पश्चिमी घाट, सुंदरबन और अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्र इसकी समृद्ध प्राकृतिक विरासत के उदाहरण हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, और अमेज़न के जो जंगल हैं उनके बारे में तो सभी ने सुना है कि कितने बड़े होते हैं। लक्षिता, क्या तुमने सुना है कभी?
0: मतलब घने होते
1: यहाँ
0: हैं।
1: पर मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पर कई प्रजातियाँ ऐसी है ना, आदिवासी जो प्रजातियाँ हैं जिनको मतलब जिनके बारे में पता ही नहीं है बाहरी दुनिया को कि ये प्रजातियाँ भी यहाँ पर है। हाँ, एग्जिस्ट करती है दुनिया में। लेकिन दोस्तों, आज ये क्षेत्र जो है वो कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि जलवायु

0: मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पर कई प्रजातियाँ ऐसी हैं ना, आदिवासी जो प्रजातियाँ हैं, जिनको मतलब जिनके बारे में पता ही नहीं है बाहरी दुनिया को कि ये प्रजातियाँ भी यहाँ पर हैं।
1: एग्जिस्ट करती है।
0: हाँ, एग्जिस्ट करती है दुनिया में। लेकिन दोस्तों, आज ये क्षेत्र जो है वो कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, वनों की कटाई हो गई, प्रदूषण हो गया और अनियोजित शहरीकरण आ गया। इन सब के कारण जो है ना कहीं प्राकृतिक संतुलन लगातार बिगड़ रहा है और इससे अनेक जो वन्य जीव हैं उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है, वो भी सफर कर रहे हैं।
1: वैसे दोस्तों, भारत भी एक महत्वपूर्ण उष्ण कटिबंधीय देश है, जहाँ पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के घने वन, सुंदरबन के मैंग्रोव वन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसी अनमोल प्राकृतिक धरोहरें हैं। इनके संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हम इन्हें सुरक्षित रख पाएं और हम इन्हें बचा सकें।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, हमारी जो ये सब है, ये हमारी प्राकृतिक विरासतें हैं।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही दोस्तों, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और वन संरक्षण जैसे अभियान भी पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने राहुल। क्या केवल सरकारों के प्रयास पर्याप्त हैं इन सभी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए?
0: देखा जाए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि युवा और आम नागरिकों की भागीदारी ना सबसे ज्यादा मुझे लगता है आवश्यक है इसमें। और हम सभी को छोटे छोटे कदम उठाकर, जैसा हम बोलते ही हैं, क्योंकि हम युवा हैं, हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम किसी भी चीज को बदल सकते हैं। हम सभी अगर बड़ा बदलाव इसमें ला सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, प्लास्टिक को थोड़ा कम कम यूज करना, जैसा कि हम हर बार कहते ही हैं, ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है विषय कोई भी हो, लेकिन जो इनको बचाने के जो वो होते हैं, तरीके होते हैं, ये सब सेम ही है। और जल और ऊर्जा की दोस्तों बचत करें और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करें। वो आपका तरीका है कि आप किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या आप नई चीजें इंस्पायर कर
1: वो
0: सकते
1: कहते
0: हैं।
1: कहते हैं ना राहुल, एक पंथ दो काज। अगर सभी के लिए यही नियम लागू हो रहे हैं कि हम इन्हीं तरीकों से किसी चीज को बचा सकते हैं या सुरक्षित रख सकते हैं, तो इसका मतलब हम काफी सारी चीजें एक बार में सही कर सकते हैं।
0: बिल्कुल कर सकते हैं।
1: और एक साथ हम एक चीज करेंगे और फायदा हमें और चीजों में भी
0: मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा।
1: तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व के लगभग 95% मैंग्रोव वन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साथ ही दुनिया के नवीकरणीय जल संसाधनों का बड़ा हिस्सा भी इसी क्षेत्र में आता है। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक विश्व की अधिकांश आबादी उष्ण कटिबंधीय देशों में रहेगी।
0: क्या बात है। और दोस्तों, प्रकृति ने, हम यही कहेंगे कि जो अनमोल धरोहर दी है उसकी रक्षा करना हमारी ही जिम्मेदारी है। और आप सोचिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अगर सुरक्षित रहेगा तो पृथ्वी का पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा, वरना उन्हें कुछ नहीं मिल पाएगा।
1: और बिल्कुल सहमत हूँ मैं राहुल तुम्हारी बातों से। तो आइए दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम सभी संकल्प ले कि पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रहित और हरित, मतलब राहत से भरा हुआ और हरा भरा एक जीवन, स्वच्छ और स्वस्थ पृथ्वी का वातावरण हम उन्हें दे पाए, और ऐसे वातावरण का निर्माण हमें ही करना होगा।
0: लक्षिता, तुम्हारे मुंह से जब मैं ये इतनी समझदारी वाली बातें सुनता हूँ ना, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब लक्षिता इतनी समझदारी वाली बातें करती है, क्वेश्चंस भी जो तुम्हारे होते हैं वो इतने समझदारी वाले होते हैं। तो इसी बात पे मैं तुमसे इम्प्रेस होके अब तुम्हारी पसंद का गाना सुनना चाहूंगा।
1: ओह माय गॉड, क्या बात है। और इतनी जो ये तुम कृपा मुझ पे कर रहे हो तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी।
0: बिल्कुल।
1: तो प्ले कर दो मेरी पसंद का गाना, सुनाते हैं हमारे दोस्तों को और देखते हैं उन्हें कितना मजा आता है।
0: तो चलिए दोस्तों, लक्षिता की फरमाइश पे अगला गाना आपके लिए पेश है।

0: आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज का दिन भारत के लिए बहुत ही खास है। लक्षिता, आज 29 जून को हम हमारे दोस्तों को एक और दिन के बारे में बता दें।
1: बिल्कुल, तो देरी किस बात की?
0: तो दोस्तों, आज 29 जून को हम भारत के महान वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद और योजनाकार प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्म जयंती के रूप में याद करते हैं। दोस्तों, इनका अतुलनीय योगदान सम्मान देने के लिए हर वर्ष इस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है।
1: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे प्रशांत चंद्र महालनोबिस के प्रेरणादायक जीवन, उनके वैज्ञानिक योगदान और वर्तमान समय में सांख्यिकी के महत्व के बारे में। साथ ही ये भी समझेंगे कि किस प्रकार आंकड़े हमारे जीवन और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल लक्षिता। और लक्षिता, सबसे पहले मुझे लगता है हमें हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहिए कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी थे कौन।
1: बिल्कुल, यही मेन क्वेश्चन है।
0: हाँ, तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी का जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था।
1: जी।
0: इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए ये इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। शुरुआत में इनकी रुचि भौतिक विज्ञान में थी, लेकिन बाद में इनका झुकाव सांख्यिकी की ओर बढ़ा। और दोस्तों, इन्होंने अपने शोध और ज्ञान के माध्यम से भारत में सांख्यिकी को एक नई पहचान दिलाई। उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है।
1: तो राहुल, हमारे काफी सारे दोस्तों के मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर सांख्यिकी होती क्या है।
0: बिल्कुल होगा।
1: तो बहुत अच्छा सवाल है ये। तो इसका जवाब मैं देती हूँ कि सांख्यिकी का अर्थ है आंकड़ों को एकत्रित करना, उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना और उनसे सही निष्कर्ष निकालना। आज सांख्यिकी का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, जनगणना, मौसम विज्ञान, बैंकिंग, खेल और अर्थव्यवस्था जैसे लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है, जो कि हम सभी जानते हैं। किसी भी देश की योजनाओं और नीतियों को सफल बनाने में सही आंकड़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: और दोस्तों, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी के बहुत सारे योगदान इसमें रहे हैं। जैसा कि सन 1931 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। दोस्तों, ये संस्थान आज के विश्व के प्रमुख शोध संस्थानों में शामिल है और सांख्यिकी और डेटा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। दोस्तों, इन्होंने महालनोबिस दूरी नामक एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी विधि की भी विकसित की। और दोस्तों, इसका उपयोग आज भी डेटा विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान, चिकित्सा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी शिक्षाओं में किया जा रहा है। और इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की अवधारणा भी को भी आगे बढ़ाया,
1: जिससे कम समय और कम खर्च में विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करना संभव हुआ। भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, तो राहुल, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है, आइए ये जान लेते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007 से हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सांख्यिकी के महत्व के प्रति जागरूक करना है और ये समझाना है कि सही आंकड़े देश के विकास की मजबूत नींव होते हैं।
0: और दोस्तों, इस अवसर पर देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम, संगोष्ठियां और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से लोगों को डेटा के सही उपयोग के बारे में जानकारी दी जाती है।
1: राहुल, आज का समय डेटा और तकनीक का युग है, ऐसे में सांख्यिकी की भूमिका कितनी बढ़ गई है ना?
0: बिल्कुल, आज के डिजिटल युग में सांख्यिकी का महत्व दोस्तों पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। आप देख लीजिए, मोबाइल ऐप हो गया, ऑनलाइन खरीददारी हो गई, मौसम का पूर्वानुमान हो गया, चिकित्सा अनुसंधान हो गया, चुनाव विश्लेषण हो गया, खेलों का प्रदर्शन हो गया, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पॉपुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इस क्षेत्र में भी डेटाओं के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है।
1: लोगों का जो खिंचाव है वो इन सारी चीजों की तरफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है।
0: बिल्कुल। और
1: यदि आंकड़े सही हो और उनका विश्लेषण वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं और विकास की गति को बढ़ाया भी जा सकता है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, आज के युवाओं के लिए प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जीवन हमें ये संदेश देता है कि
1: उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि मेहनत, जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से बड़ी उपलब्धि

0: विविधताएं और उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।
1: बिल्कुल। और दोस्तों आज डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हर युवा अनेक अवसर उनके लिए बनते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। और युवा गणित और सांख्यिकी को अगर वो समझे ना तो एक तरह से वो देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं
0: कि बच्चों के फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा
1: ब्राइट चांसेस हैं।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों आइए जानते हैं प्रशांत चंद्र महल नूबिस से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
1: और दोस्तों यही नहीं है, वो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भी प्रमुख सलाहकारों में शामिल थे। दोस्तों
0: उनके द्वारा स्थापित भारतीय सांख्यिकी संस्थान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों आपको बता दें कि प्रशांत चंद्र महल नूबिस केवल एक महान वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि दूरदर्शी विचारक भी थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सही आंकड़े और वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: तो आइए दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में तथ्यों, वैज्ञानिक सोच और सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की आदत विकसित करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और कही सुनी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें, आप खुद रिसर्च करिए, खुद समझिए तो आपको चीजें बेहतर तरीके से
1: समझ आएगी। और फिलहाल ले चलते हैं आज की इस शाम के आखिरी गाने की ओर। तो मुझे लगता है कि अब आखिरी जो गाना है वो तो थोड़ा सा धमाकेदार ही होना चाहिए।
0: बिल्कुल। और जिसे सुनकर हमारे दोस्त बिल्कुल खुश हो जाएं और उनका रोम रोम
1: डांस करने का उनका मन हो जाए।
0: बिल्कुल। तो आइए सुनाते हैं आपको ये मजेदार गीत आज की शाम का, जो कि आखिरी गीत है।

0: तो दोस्तों, गाना सुनते सुनते हम भी इतने जोश में खो गए कि पता ही नहीं चला कि कब हमारी घड़ी की सुइयां जो है उन्होंने अपनी स्पीड इतनी पकड़ ली है कि हमारा टाइम ही पूरा होने को आ
1: और
0: गया है।
1: ये तो नहीं पता कि किसने डांस किया या किसने नहीं किया, लेकिन राहुल ने जरूर डांस
0: बिल्कुल,
1: किया और
0: मैंने तो पूरा
1: मुझे अभी
0: एंजॉय
1: तक हंसी आ रही है राहुल का
0: मेरा डांस
1: डांस याद करके। तो
0: बिल्कुल, अरे
1: दोस्तों
0: मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी भी पल जीने के लिए हमें सोचना नहीं चाहिए,
1: सोचना नहीं चाहिए,
0: जब जो मिल
1: अगर
0: रहा है वो कर
1: वही
0: लेना
1: और अगर
0: चाहिए।
1: मजा आ रहा है तो एक्सप्रेस करना आना चाहिए, है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: आना
1: तो ये
0: चाहिए।
1: शाम वाकई काफी मजेदार थी, काफी रोचक थी, काफी सारी बातें हमने आपसे की, काफी सारा ज्ञान और

0: जो ज्ञान का भंडार हम लेकर आए थे वो
1: जो
0: सभी
1: हमारे
0: हमने
1: पास
0: आपको,
1: था वो हमने शेयर किया।
0: और आशा करते हैं आपको भी काफी मजा आया होगा दोस्तों। और यही टाइम है जब मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ से जाना, लेकिन जाना पड़ता है वापस आने के लिए। तो करेंगे आपसे फिर से मुलाकात, करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें।
1: तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में आपके साथ है आपके दो रेडियो दोस्त, मैं राहुल
0: और मैं लक्षिता।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।

0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: समारोह में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाशने, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का

0: दायरा बढ़ाया है। इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

अलका याग्निक और जावेद अली की आवाजों में फिल्म युवराज का गीत अभी आपने सुना, शब्द गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का। आयुष गांव आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म यस बॉस से। आवाजें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की, शब्द जावेद अख्तर के और संगीत जतिन ललित का।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदले, आगे बढ़े, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100

0: से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे यूपीआई से। अच्छा, हाँ। और सुनो, एक और नियम है। वो क्या है मम्मी जी? तुम्हारी वो दिखाई भी यूपीआई से मिलेगी। हम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यमुना जल बंटवारे को लेकर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच एमओए हुआ। इस ऐतिहासिक जल समझौते से 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के प्रदेश में आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन को लेकर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एमओए किया गया। आज नई दिल्ली में ये एमओए राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हुआ। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। एमओए पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि समझौते के तहत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथिनी कुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। परियोजना के निर्माण के लिए करीब 3,900 करोड़ रुपए की लागत से हथिनी कुंड बैराज से चूरू तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे पेयजल के साथ ही सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिलेगी।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथिनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस दिन को भावनात्मक बताते हुए कहा कि ये केवल एक समझौता नहीं बल्कि लाखों परिवारों की बरसों पुरानी आशाओं, विश्वास और संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के विकास, जल सुरक्षा और समृद्ध भविष्य का नया अध्याय लिखेगा। इससे जल्दी ही धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। इस समझौते पर और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी।
2: यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के लिए विन विन सिचुएशन और संवाद से समाधान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। इस समझौते के बाद सीकर, चुरू और झुंझुनू तथा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। इसके तहत जुलाई से अक्टूबर तक 58 करोड़ घन मीटर पानी यमुना

0: शहर से तीन भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर 1994 में सहमति बनी थी, किंतु तीन दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई कवायद नहीं हो पाई थी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: शेखावाटी क्षेत्र की बरसों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में आज हुए एमओए से सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में खुशी का माहौल है। लोगों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को बड़ी राहत देने वाला बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में वीर जवानों और सशस्त्र बल कर्मियों को असाधारण वीरता, साहस और विशिष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में हुए इस समारोह में मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले कई जाबाजों को मरणोपरांत भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई इन सुविधाओं में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक और बास्केटबॉल कोर्ट भी शामिल है। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए वैश्विक स्तर की सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
2: कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गांव में हो, शहर में हो, सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हो, इसके लिए कोटा शहर में चारों इलाकों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जहां सिंथेटिक ट्रैक वो बच्चा आज भी राजस्थान के अलग अलग राज्यों से यहां पर आता है और 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक में वो एथलीट की तैयारी करता है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते हैं और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉकवे भी उनके लिए बना है।
1: श्री बिरला ने सियाम सभागार में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को भी संबोधित किया। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाने और नवाचार करने का आह्वान किया। राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज नई दिल्ली में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन ने संसद भवन में इन्हें शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल है। राजस्थान से डॉ अलका सिंह ने भी आज शपथ ली। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उपस्थित रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को भी 10वीं कक्षा में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा का अध्ययन करते हुए अपनी विदेशी भाषाओं को जारी रखने की अनुमति होगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में आयोजित किया गया। बिड़ला सभागार में हुए इस समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा जगत के 276 दानदाताओं और प्रेरकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बैरवा ने दानदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भामाशाहों की ये भावना समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा का प्रतीक है। इससे हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में सहायता मिलती है। जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक दीवार ढहने से 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई और 3 व्यक्ति घायल हो गए।

0: घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा आज दोपहर में ताला मोड़ के पास एक होटल में बन रहे एसटीपी प्लांट की दीवार गिरने से हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और जिला कलेक्टर संदेश नायक ने मौका मुआयना किया। मीडिया से बातचीत में श्री पटेल ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इसकी विस्तृत जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: कौन इसका जिम्मेवार है, किस हद तक जिम्मेवार

0: दुखद बताते हुए कहा कि इसकी विस्तृत जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: कौन इसका जिम्मेवार है, किस हद तक जिम्मेवार है, वो जांच का विषय है। और किस आदमी की वजह से, किस अथॉरिटी की वजह से दुर्घटना घटित की, इसमें लापरवाही किसकी है, इसकी हमारी जिला प्रशासन की ओर से इसमें इंक्वायरी भी बैठाई गई है। जैसी भी जरूरत पड़ेगी, पीड़ित परिवार की सहायता हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और ये भी हम प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित नहीं हो।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के आमेर क्षेत्र में दीवार गिरने से हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। हालांकि मॉनसून के पहुंचने में हो रही देरी से अधिकतर हिस्सों में उमस का असर बना हुआ है। कुछ हिस्सों में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में मॉनसूनी गतिविधियां पश्चिमी भागों के मुकाबले अधिक सक्रिय रह सकती है। अगले कुछ दिनों में अलग अलग इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात का दौर जारी रह सकता है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और 2 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।
2: दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज मेघ गर्जन के साथ तेज हवाओं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तापमान भी 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हालांकि 30 जून और 1 जुलाई से उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती है।
0: केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। इसके लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के पहले बिंदु के रूप में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। सरकार ने बेहतर इलाज के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संबंध मजबूत किए हैं। देशभर में 23 नए एम्स और विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त और पिछड़े जिलों में 157 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यमुना जल बंटवारे को लेकर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOA हुआ। इस ऐतिहासिक जल समझौते से 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के प्रदेश में आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। डीग जिले में इन दिनों जनकल्याणकारी योजनाओं, कृषि, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, पर्यावरण और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं जिले की प्रमुख गतिविधियों के बारे में। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर जिले में आमजन के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को रोटावेटर अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों को खेती की लागत कम करने और समय की बचत करने में मदद मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन शिविरों को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान भी शुरू हो गया है। अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष

0: तक की बच्चों की आयु के 1,87,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो बूथों के अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष टीमों की तैनाती की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जिले में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान रैलियां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जागरूकता संगोष्ठियां और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 16 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आशा सहयोगिनी और एएनएम कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों वाले परिवारों का सर्वे कर रही है। परिवारों को ओआरएस और जिंक की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही माताओं को डायरिया से बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है। अभियान का उद्देश्य मानसून के दौरान बच्चों को डायरिया से सुरक्षित रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुष विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर रैलियां और योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के अनुरूप लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया गया। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक काम किए गए। विभिन्न स्थानों पर फार्म पौंड, रिचार्ज शाफ्ट और जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इन कार्यों का उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण और भूजल स्तर में सुधार करना है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जिले में उल्लेखनीय काम हुए। विभाग के अनुसार जिन क्षेत्रों में भूजल खारा है वहां फार्म पौंड के माध्यम से वर्षा जल का संग्रहण किया जा रहा है। इससे खेती और बागवानी कामों को लाभ मिल रहा है। किसान सोलर पंप और ड्रिप सिंचाई पद्धति का भी उपयोग कर रहे हैं जिससे पानी की बचत हो रही है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में डीग शहर में मालीपुरा रोड पर फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है। इस संयंत्र के माध्यम से घरों से निकलने वाले अपशिष्ट का उपचार किया जाएगा। इससे जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सड़क सुरक्षा को लेकर भी जिले में अभियान चलाया जा रहा है। डीग पुलिस द्वारा विशेष ग्राम गोद योजना के तहत गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही दुर्घटना में घायलों की सहायता करने वाले लोगों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की जानकारी भी दी जा रही है। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए डीग शहर में इको कूलिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर आमजन को विश्राम, शीतल पेयजल और ओआरएस की सुविधा उपलब्ध होगी। इन केंद्रों में प्राकृतिक वेंटिलेशन और सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जाएगा। बीते दिनों जिले में मौसम में बदलाव देखने को मिला। हाल ही में बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई स्थानों पर तेज हवाएं और वर्षा भी दर्ज की गई। बारिश से किसानों में उत्साह का माहौल है। उनका मानना है कि इससे खरीफ फसलों की बुआई और उत्पादन को लाभ मिलेगा। इसी के साथ डीग जिले की चिट्ठी यहीं समाप्त होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, यमुना जल बंटवारा ने लेर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच एमओएवीओ ई ऐतिहासिक जल समझौताओं 3 दशक पुरानी समस्या रो निपटारो वेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार दिया। सीबीएसई 10वीं कक्षा रा चालता बैच ने त्रिभाषा नीतियों छूट दी और दिखनाद आथुनी मानसून रे प्रदेश में आवन सारू परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई रा पहला हफ्ता में पुगन रा आसार। समाचारों के साथ है मैं शंभु सिंह। रवि समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज यमुना जल परियोजना ने बनावण और लागूकरण ने लेर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एमओए करीजियो। आज नई दिल्ली में ओ एमओए राजस्थान और हरियाणा

0: सरकार बीच भियो। मीटिंग में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रिया। एमओए माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दस्तखत करया। ई मौके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कहो के करार रे तहत मानसून रे दौरान राजस्थान रा हकरो पानी भूमिगत पाइपलाइन री मार्फत हथिनी कुंड बेराज सप्लाई करियो जायला। परियोजना री बनाई चुनाई सारू कोई 3,900 करोड़ रुपया री लागत हथिनी कुंड बेराज चूरू ताई पाइपलाइन बिछाई जायला। एणु पीवण रा पानी रे साथ ही पाणत सारू पानी री सुविधा मिलेला।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू सीकर झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा इस दिन ने भावनात्मक बतावता कहो कि वो फगत एक करार नहीं है बल्कि लाखों परिवारों री साला पुरानी आस विश्वास और संघर्ष री जीत है। वणा कहो कि वो ऐतिहासिक कदम राजस्थान रा विकास पानी री हिफाजत और समृद्ध भविष्य रो नुओ पाठ लिखेला। इणु बेगाई जमी माथे काम शुरू वे जायला। ई करार माथे और जानकारी दे रिया है मारा खबर नवीस जितेंद्र द्विवेदी।
2: यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के लिए विन विन सिचुएशन और संवाद से समाधान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। इस समझौते के बाद सीकर चुरू और झुंझुनू तथा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। इसके तहत जुलाई से अक्टूबर तक 58 करोड़ घन मीटर पानी यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर 1994 में सहमति बनी थी, किंतु 3 दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई कवायद नहीं हो पाई थी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: शेखावाटी हलकारी बरसा पुरानी पीवण रा पानी री समस्या रा निपटारा कानी आज वियो एमओए रे पछे सीकर चूरू और झुंझुनू जिला में खुशी रो माहौल है। लोगा इन महत्वाकांक्षी परियोजना ने मोटी राहत देवन वाली बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रक्षा अलंकरण जलसा रा दूजा चरण में वीर जवाना और सशस्त्र बल कर्मिया ने असाधारण वीरता साहस और ठावी सेवा में सारू इनाम दिया। राष्ट्रपति भवन में विया ई जलसा में मातृभूमि री हिफाजत में ठावो बलिदान देवन वाला कई वीरा ने मरण रे पछे सम्मानित करी जिया। ई मौके उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सशस्त्र बलारा ठावा एहलकारी मौजूद रिया। वो सम्मान देश री आतंकवाद उग्रवाद और सरहदी हल्का में चुनौतियां रे खिलाफ बरोबर लड़ाई ने दर्शावे है। साथ ही विमानन समुद्री अभियाना और मानवीय मिशना में दिखाई जी असाधारण बहादुरी ने मान्यता दी जावे है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा श्रीनाथपुरम स्टेडियम में न्यारा न्यारा खेल सुविधाओं रो लोकार्पण करियो। कोई 4.5 करोड़ रुपया की लागत विकसित करी जी आ सुविधाओं में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक और बास्केटबॉल कोर्टी बेड़ा है। ई मौके श्री बिरला कहो कि कोटा बूंदी हल्का रा खिलाड़ियां सारू वैश्विक थरी सुविधा देवन री कोशिश करी जावे।
3: कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गांव में हो शहर में हो सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हो, इसके लिए कोटा शहर में चारों इलाकों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जहां सिंथेटिक ट्रैक वो बच्चा आज भी राजस्थान के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आता है और 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक में वो एथलीट की तैयारी करता है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते हैं और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बना है।
0: श्री बिरला श्याम सभागार में प्राकृतिक खेती माते भी राज्य थर्री कार्यशाला में भाषण करियो। वना काश्तकारों प्राकृतिक और जैविक खेती ने अपनावण और नवाचार करने की अर्ज करी। राज्यसभा 8 नवा चुनिजा सदस्य आज नई दिल्ली में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन संसद भवन में आने शपथ दिराई। आ सदस्य में कर्नाटक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भेड़ा है। राजस्थान डॉक्टर अलका सिंह ही आज

0: ई मौके केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, ठावा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज त्रिभाषा नीति माथे दिशा निर्देश काढ़िया। बोर्ड कहो के कक्षा दसवीं रा अबारा बेस ने नवी भाषा नीति री पालना नहीं करनी वेला। बोर्ड ओई कहो के सातवीं आठवीं और नवी कक्षा माए पढ़ रिया पढ़ेसरा ने ही दसवीं कक्षा माए पुगण माथे तीजी भाषा माए बोर्ड परीक्षा देवन री जरूरत नहीं वेला। बोर्ड कहो के वाने एक बत्ती भारतीय मातृभाषा माए पढ़ाई करता आपरी विदेशी भाषा ने चालती राखण री मंजूरी वेला। तीसवा राज्य थर्रो भामाशाह सम्मान जलसो आज जयपुर माए राखी जो बिड़ला सभागार में आविया। ई जलसा माए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा जगत रा 276 दानदातामा ए प्रेरका रो सम्मान करियो। जलसा माए बोलता श्री बिरला दानदातामा री सराहना करता कहो के ओ समाज रे प्रति उत्तरदायित्व और सेवा रो प्रतीक है। इनो हजारों पड़ेसना रा सपना पूरा करण माए मदद मिले है। केंद्र सरकार देश माए स्वास्थ्य प्रणाली ने घनी मजबूत करी है। इस सारू करड़ी कोशिश करी जी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कहो के सरकार पहला दूजा और तीजा थरे स्वास्थ्य सेवा मारो पसारो करियो है। श्री नड्डा आज नई दिल्ली माए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद रा सम्मेलन माए बोल रहा है। वना कहो के रहवासियां और स्वास्थ्य प्रणाली रे बीचे मेलू पहला बिंदुरा रूप में 186,000 आयुष्मान आरोग्य मिंदर तर्पित करी जा है। सरकार चोखा इलासारू प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं रे बीचे तालमेल मजबूत करियो है। देश भर में 23 नुआ एम्स और खास तौरू कम सुविधा वाला और पिछड़ा जिला में 157 मेडिकल कॉलेज ने स्थापना रे साथ ही तीजा थर्री स्वास्थ्य सेवाओं ने मजबूत करिया है। जयपुर रा आमेर हल्का में एक दीवार ढह जावणु 3 मजूरा री मौत वेगी। ए 3 लोग घायल भया। घायला ने एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराई जा है। हादसो आज दोपहरा ताला मोड़ कने एक होटल में भया। एसटीपी प्लांट री दीवार पर जावणु भियो। सूचना मिलता ही पुलिस और प्रशासन कानियों राहत और बचाव रा काम शुरू करी जा। जिला प्रभारी मंत्री जोकाराम पटेल और जिला कलेक्टर संदेश नायक मौका रो मुआयनो करियो। मीडिया साथे बदल में श्री पटेल हादसा ने दुखदायी बतावता कहो के इनरी विगतवार जांच करार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जायला।
1: कौन इसका जिम्मेवार है, किस हद तक जिम्मेवार है, वो जांच का विषय है। और किस आदमी की वजह से, किस अथॉरिटी की वजह से दुर्घटना घटित की, इसमें लापरवाही किसकी है, इसकी हमारी जिला प्रशासन की ओर से इसमें इंक्वायरी भी बैठाई गई है। जैसी भी जरूरत पड़ेगी, पीड़ित परिवार की सहायता हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरत जाएगी। और ये भी हम प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित नहीं हो।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा आमेर हल्का माए दीवार ढह जावणु हुआ हादसा रे माथे गहरो शोक जतायो है। और अब मौसम। राज्य माए दिखनाद आथुणी मानसून आवन सारू परिस्थितियां बरोबर है। फिर वही मानसून रे आवन माए भी देरी घनकरा हल्का माए उमस रो असर बनोड़ो है। कुछ ऐसा माए मानसून में पेलेरी गतिविधियां बनोड़ी है। मौसम महकमा मुजब अगुणी राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां दिखनाद हल्कारे मुकाबले बत्ती सक्रिय वह सके है। आज तक कुछ दिन माए न्यारा न्यारा हल्का माए गरज चमक और तेज बायरा रे साथ हल्की मझला दर्जारी बरसात रो दौर चाल सके है। दिखनाद अगुणी और अगुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माए 2 जुलाई बिरखरी गतिविधियां माए बढ़ोतरी होवर और 2-5 जुलाई रे बीचे अगुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माए बिरखरी गतिविधियां माए बढ़ोतरी री आस है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बतायो के इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग माए कठे कठे भारी बिरखा वह सके है।
2: दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज मेघ गर्जन के साथ तेज हवाओं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तापमान भी 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हालांकि 30 जून और 1 जुलाई से उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग और शेखावटी

0: क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती है।
1: देश भर में आज संत कबीरदास की जयंती मनाई जावे। वे भक्ति कालरा महान संत एर कवि हा, वना जीवन भर सामाजिक बुराइयां अंधविश्वास एर आडंबरे खिलाफ आवाज उठाई। वारा दुआ आज सही जीवन जीवन रो मार्ग दिखावे है। कबीर जयंती के मौके आज पाली माए शोभा यात्रा निकाली जी। अब आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन दे रहो। यमुना जल बंटवारा ने लेर नई दिल्ली माए राजस्थान एर हरियाणा सरकार बीचे MOAVO ई ऐतिहासिक जल समझौताओं 3 दशक पुरानी समस्या रो निपटारो वेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली माए वीरता पुरस्कार दिया। CBSE 10वीं कक्षा रात चालता बैच ने त्रिभाषा नीतियों छूट दी। और दिखनाद आथोनी मानसून रे प्रदेश माए आवन सारू परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई रा पहला हफ्ता माए फुगन रा आसार। इन रे साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल।

नित नई खेती करसाने की जानकारी और लोक गीतां सु भरपूर चौपाल कार्यक्रम सुन बाला सभी करसान बन भाया कताई सुरेंद्र भाई के आडी सु घणी घणी राम राम। काई हाल चाल छे कासगर भाई बनाऊ? हाल चाल तो सभी का ही मजा का होगा और होनी भी चाहिए जी। आसाड़ी जमाबा को टर्म छ घना कासगर भाया काडी तो पानी बढ़िया पड़ गयो तो वहां तो उराया को काम भी शुरू कर दियो और हाल घनी जगह बरखा न पड़ी तो हाल वहां उराई शुरू न हुई। सभी कासगर भाया ने खेती तो बराबर तैयार खेत तो बराबर तैयार कर रहा गया छ बस बरखा पड़वा को इंतजार छ क्योंकि यो जो खरीफ की फसल रह छ वह पूर्ण रूप से बरसात का पानी पर ही निर्भर रह छ कासगर भाई बनाओ और अगली फसल का लेख अपनी जेब में अपनी जेब भर दियो छ ताकि आपने ताई सेठ साहूकार या बैंक से कर्ज लेबा की जरूरत कतई न पड़े कासगर भाई बनाओ। तो खरीफ की फसल अगर बढ़िया हो जाओ तो यो सभी कासगर भाई बनाकर लेकर फायदा को सो दूर छे बाकी भगवान की मर्जी छे कासगर भाई बनाओ वो खर्च न जिन्हें चाँच दी छे वो चुगो भी देगो तो सारी व्यवस्था भगवान को ऊपर छे बढ़िया ही होगो। तो हाल अपना आस पास अपने पास काफी टाइम छे थोड़ा दिन में जैसे जून में जून को लास्ट आ गयो जुलाई ताई बढ़िया पानी पड़ना शुरू हो जाओगे तो बुआई ज्याना न करी वह बुआई कर दीजो। कासगर भाई बनाओ बरसात को टर्म छ और क्यों नाम आपन सामाजिक वनिका प्रणाली का माध्यम सु पर्यावरण का ताई हरियो करवाई की कोशिश करा आपन अपना आसपास की जितनी भी बंजर भूमि जो बरसात का मौसम में पेड़ पौधा लगा पर्यावरण का ताई हरियो और शुद्ध करवा की एक पहल करा। कासगर भाई बनाओ सामाजिक वनिका एक प्रणाली छे जिको मतलब छे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण और सामाजिक विकास करबो छे। इमे खाली पड़ी बंजर भूमि में जनता का माध्यम और सहयोग से पेड़ पौधा लगाया जाओ छे ताकि स्थानीय लोगों की ईंधन चारा और लकड़ी की जरूरत कताई आपन पूरी कर सका। कासगर भाई बनाओ इमे आपन सभी सहयोग कर सका छा पर्यावरण बे शुद्ध बनावा के लेख

0: हरियो बनाबा कर लेकर अपना जानवर ना कर लिए बढ़िया हरियो चारो करबा कर लिए खाद कार्रवाई बनाओ। एक साथ ही आज 29 जून को दिन और आज का दिन कताए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस का रूप में भी मनायो जाओ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ई दिन की घोषणा 2016 में करी जी। इको मुख्य उद्देश्य उष्ण कटिबंधीय देशा का साम आबाड़ी घनी चुनौतियां वो चुनौतियां पर प्रकाश डालबो और वहां क्षेत्र का संरक्षण का बारे में जानकारी बढ़ावो। योदन यहाँ क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन वना की कटाई और शहरीकरण जैसी प्रमुख समस्या के लिए जागरूकता लाओ च का कार्रवाई बनाओ। काज कार्रवाई बनाओ अपनी बातचीत अब चौपाल कार्यक्रम में चलती रहेगी एक थोड़ा सा अंतराल के बाद।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: एक बार फिर चौपाल कार्यक्रम में स्वागत है आपका साथी सुरेंद्र किलारा आपको खास कार्रवाई बनाओ मां चौपाल कार्यक्रम में जानकारी या भेंट वार्ता को भी एक विषय ले रहा हूं छा। तो आज चौपाल कार्यक्रम में भेंट वार्ता को विषय है मक्का की उन्नत किस्मा और मक्का की खेती। इस विषय पर जानकारी देवा का लेख अपना चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित है डॉक्टर पवन कुमार प्रेम मीणा जी। तो सुना चाहिए भेंट वार्ता।
5: राम राम। आज आपने चौपाल में आपन बात करेंगे मक्का की उन्नत किस्मा का बारे में और मक्का की खेती किसान बन भाई की तरीका सु करे किसी विधि काम में ले और ये विषय पर विस्तार से जानकारी देवा के लेकर आपने साथ चौपाल में बैठे हुए है डॉक्टर पवन कुमार प्रेम मीणा जी। आप चाहे प्राध्यापक पादप प्रजनन कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। तो आप सभी के डॉक्टर साहब को कार्यक्रम में स्वागत कराए। राम राम साहब।
6: राम राम किसान भाइयों सभी को मेरा राम राम।
5: डॉक्टर साहब किसान बन भाई खरीफ फसला की तैयारी पूरी कर मली छे और इंतजार जो वहाँ करता है कि बढ़िया बरसात हो जाओ तो उनके बाद वो बुआई करेगा। मक्का की जो अगर बात करी जाओ तो आपने जो हार्ड होती की जलवायु छे यहाँ की मिट्टी छे उनके अनुसार काई संभावना मक्का की फसल कर लेकर यहाँ पर छे।
6: तो शशि भाई जैसा कि आप जानते हैं मक्का की जो फसल है हाड़ौती संभाग के लिए काफी प्रमुख फसल है और सोयाबीन और धान के बाद मक्का का जो है तीसरा स्थान जो है हाड़ौती संभाग में आता है। ये करीब 158,000 हेक्टेयर में इसकी खेती चारों जिलों में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में की जा रही है और दिन प्रतिदिन इसका क्षेत्रफल जो है बढ़ता ही जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये खरीफ की फसलें मुख्य रूप से वर्षा आधारित ही होती हैं तो इस बार की अगर हम बात करें तो वैसे तो मक्का की बुआई का समय हो गया है मानसून थोड़ा सा लेट चल रहा है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले प्रथम सप्ताह में जुलाई की 2 या 3 तारीख को जो है कोटा संभाग में वर्षा होने की संभावना काफी प्रबल बताई जा रही है। तो अभी मक्का की बुआई का समय चल रहा है और किसान भाई जो है इसकी तैयारी कर लें इसी की चर्चा आप अपन करेंगे।
5: मानसून का तय आधार माना तो इस बार जो संभावनाएं बताई जा रही है मौसम विभाग के अडिसो के भाई बरसात की तरह की रहेगी कहीं संभावना चे वो आधार पर मक्का की खेती को चुनाव किसान बनवाया कर लेकर कतनो लाभकारी छे या विकल्प का रूप में वो कहीं कर सके छे।
6: शशि भाई मक्का की जो खेती है वो कई रूप से जो है किसान भाइयों के लिए लाभकारी होती है। मक्का एक बहुमुखी फसल जो है मानी जाती है इसका न केवल आर्थिक बल्कि जो है सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से भी जो है काफी अच्छा महत्व है। मक्का की फसल का जो उपयोग खाद्य फसल के अलावा और भी कई रूपों में किया जाता है। खाद्य के रूप में रोटी दलिया स्नैक्स आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मक्का जो है पशुओं के लिए बहुत अच्छा चारा भी होता है खासकर दुधारू और मांस वाले पशुओं के लिए और मक्का का उपयोग जो है कई प्रकार के औद्योगिक उसमें स्टार्च बनाने तेल प्रोटीन और कई प्रकार के ईंधन बनाने काम में भी आता है। आजकल आपने देखा होगा कि बायोडिग्रेडेबल जो दोने या जो डिस्पोजेबल्स होते हैं वो भी मक्का के उससे बनाए जाते हैं और कई प्रकार के रसायन भी इससे बनाए जाते हैं। तो मक्का का जो है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छा जो है योगदान है किसान भाइयों की आय का प्रमुख स्रोत है मक्का। मक्का को निर्यात करके जो विदेशी मुद्रा भी किसान भाई अर्जित कर सकते हैं हमारे देश को विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और मक्का जो है पोषक तत्वों का काफी अच्छा जो है भंडार माना जाता है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन जो है वो खनिज जो है आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और आजकल जो है मक्का की जो है कुछ किस्में हैं जो अधिक प्रोटीन वाली या हाई क्वालिटी प्रोटीन

0: मक्का जिनको कहते हैं वो भी विकसित की गई है खाने की दृष्टि से। तो किसान भाइयों को मैं यही कहूंगा कि मक्का जो है एक बहुमुखी फसल है, उसका आर्थिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी।
1: बहुत बढ़िया छे। और डॉक्टर साहब यह भी समझवो चाहूंगा कि मक्का की खेती आड़ोती में घना किसान बण भाई करे छे, मक्का की रोटियां भी खाओ छे यहाँ का लोग बाग, साथ ही मक्का की खेती या मक्का की उन्नत खेती, तो ये दुनिया का ताई की तरीका से समझे।
0: देखो सचिव भाई, उन्नत खेती से मतलब ये होता है कि किसान भाई जो है आधुनिक वैज्ञानिक जो तरीके हैं उन सभी तरीकों को अपना के खेती करें। किसान की अपनी लागत तो और मेहनत जो होती है वो तो वैसे भी होती है, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो किसान भाई निश्चित रूप से जो है अच्छी पैदावार और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो कसी कसी बात आज जहाँ को ध्यान मक्का की जो फसल किसान बण भाई ले रहे उम्र खान भाई की जरूरत है, वैज्ञानिक आधार का है जी का?
0: तो सचिव भाई, सभी फसलों में जो है सबसे पहले तो आता है कि किसान भाई उन्नत किस्मों का चयन करें और अच्छे से जो है उसका बीजोपचार करें और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग जो है किसान भाई सबसे पहले ध्यान में रखें। इसके अलावा खाद और उर्वरकों का जो है समय पर और उचित प्रबंधन जो है किसान भाइयों को करना चाहिए। इसके बाद आता है खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार का समय समय पर और पूर्ण जो है प्रबंधन अगर किसान भाई करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी पैदावार होगी। इसके अलावा कटाई गहाई और सुखा करके जो है उचित भंडारण का भी विशेष रूप से ध्यान किसान भाइयों को रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़े तो वृद्धि संवर्धक या जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनका भी किसान भाइयों को समय समय पर उपयोग करते रहना चाहिए। तो ये जो है वैज्ञानिक तरीकों को अपना के किसान भाई जो है काफी अच्छी पैदावार मक्का की ले सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बात आओ चे भाई मक्का की जो उन्नत किस्म है वहाँ कहते हैं किसान बन भाई ज्यादा से ज्यादा काम मिल ले, तो मक्का की उन्नत किस्म कसी कसी है और कहाँ पे ये मिलेगी वहाँ कहते हैं?
0: शशि भाई, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि मक्का जो है कई प्रकार की होती है। सामान्य रूप से हम जो खेती करते हैं मक्का की दानों के लिए वो सामान्य तरह की मक्का होती है। इसके अलावा जो है एक मीठी मक्का होती है जिसको स्वीट कॉर्न अंग्रेजी में कहते हैं। स्वीट कॉर्न के अलावा एक जो है बेबी कॉर्न होते हैं इसको शिशु मक्का भी कहते हैं। इसमें दाने नहीं निकाल के इसको पूरी जो है खाया जाता है। इसके अलावा एक आपने देखा होगा पॉपकॉर्न जिसको फूली मक्का कहते हैं, जो आजकल सिनेमा हॉल वगैरह में अक्सर बिकती रहती है। ये कई प्रकार की मक्का होती है। और अगर मैं बात करूं कि इसकी जो है विकास के आधार पर अगर मैं इसको बताऊं मक्का को, तो एक होती है देसी मक्का, उसके बाद आती है संकर मक्का जिसको हाइब्रिड मक्का कहते हैं, और इसके अलावा संकुल मक्का भी एक होती है।
1: अच्छा,
0: इसके अलावा अगर बात करें कि जो किस्में हैं उनको पकने के अवधि के आधार पर अगर इसको बांटें तो कुछ होती हैं जो जल्दी पकने वाली किस्में या संकर किस्में होती हैं। इसके अलावा कुछ मध्यम अवधि किस्में होती हैं और कुछ होती हैं जो काफी देर से पकते हैं, यानी 105 दिन से ज्यादा की होती है, उनको अधिक अवधि की जो है उसमें श्रेणी में रखा गया है।
1: एक रंग के आधार पर भी यहाँ में थोड़ा सो अंतर रह छे
0: शशि भाई? रंग के आधार पर ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। लेकिन हमारे बुजुर्ग लोगों का मानना है और साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि जो सफेद रंग की जो मक्का होती है खाने की दृष्टि से उसका स्वाद अच्छा होता है, लेकिन वो देसी मक्का तक ही सीमित था। और अब जो है सारी जो देसी मक्का को उपलब्धता बहुत कम है और सभी जो है संकर मक्का पे किसान भाई अधिक पैदावार की दृष्टि से संकर मक्का उत्पादन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने भी किसान भाइयों को बताया कि हाई क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन वाली जो मक्का है उसमें जो है अच्छी गुणवत्ता के जो है अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो खाने की दृष्टि से और अधिक गुणकारी होती है। बाकी रंग के हिसाब से जो है ऐसा कोई विशेष वर्गीकरण अभी तक मक्का में नहीं किया गया।
1: बहुत बढ़िया। अब बात आवश्यक भाई यहाँ की जो किस्म है तो वह कसी कसी किस्म है जो यहाँ हार्ड होती की जलवायु और मिट्टी के अनुसार अनुकूल और बढ़िया उत्पादन दे?
0: तो जैसा कि सचिव भाई मैंने बताया कि जो है देसी किस्में संकर किस्में और संकुल किस्में होती हैं कई तरह की, तो इसमें से मैं किसान भाइयों को यहाँ की मिट्टी और जलवायु के आधार पर अगर बात करूं तो इसमें संकर किस्मों में सबसे पहले प्रताप मक्का 3-1 आती है, प्रताप संकर मक्का 3 और प्रताप संकर मक्का 6 अभी नवीनतम एक जो है विकसित की गई है। इसके अलावा खाने की दृष्टि से HQPM 5, प्रताप QPM संकर मक्का 1, प्रताप QPM 5 और जो प्राइवेट कंपनियों की भी कुछ हाइब्रिड्स हैं संकर मक्का हैं जिनको यहाँ पर ला करके और इस क्षेत्र के लिए अनुमोदित किया गया है टेस्ट, उनको परीक्षण करके टेस्ट करके, उनमें बायो 96-82 एक हाइब्रिड है, बायो 95-44 एक हाइब्रिड है और DMS 117 और 111 ये हाइब्रिड जो है संकर मक्का की अच्छी किस्में हैं जो इस क्षेत्र के लिए काफी अच्छी साबित हुई हैं। इसके अलावा संकुल मक्का की अगर मैं बात करूं जिनको कि किसान भाइयों को, इतना मैं बीच में आपको बताना चाहूंगा कि संकर मक्का का जो है किसान भाइयों को बीज प्रति साल जो है बदलना पड़ता है, हाइब्रिड का जो बीज है किसान भाइयों को हर साल नया ही लेना पड़ेगा, लेकिन संकुल मक्का को किसान भाई चाहें तो अपना जो है बीज आगे अगली साल के उपयोग के लिए भी रखा जा सकता है। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं बात करूं आपको HQPM 1 जो है ये खाने की दृष्टि से बहुत अच्छी है और ये 90 से 95 दिन में जो है पक्के तैयार हो जाते हैं।

0: होती है और इसकी करीब 55 से 60 क्विंटल जो है पैदावार एक हेक्टर में हो जाती है। इसी प्रकार अभी नवीनतम किस्मों में जो है प्रताप शंकर मक्का 6 है, जो कि हमारा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर है, यहाँ से विकसित की गई है और ये उदयपुर संभाग के अलावा कोटा संभाग के लिए भी, बल्कि यूं कहूं कि ये संपूर्ण राजस्थान के लिए जो है काफी अच्छा एक हाइब्रिड है और ये करीब जो है 65 से 70 क्विंटल एक हेक्टर में, यानी बीघा की अगर मैं बात करूं तो 10 से 11 क्विंटल प्रति बीघा ये जो है पैदावार दे देता है। और खाने की दृष्टि से प्रताप क्यूपीएम 5 भी एक बहुत अच्छा हाइब्रिड है जो संपूर्ण राजस्थान के लिए उपयुक्त तो है ये, और 82 से 85 दिन में करीब ये पक जाता है, यानी जल्दी पकने वाली किस्म है और प्रति बीघा जो है 10 क्विंटल यानी करीब एक हेक्टर में 60 से 62 क्विंटल की इसकी पैदावार हो जाती है। और नवीनतम संकर किस्मों में जो है डीएमएच 117 है, जो कि ये तेलंगाना की कृषि विश्वविद्यालय से जो है विकसित की गई है तमिलनाडु से, बट इस क्षेत्र के लिए भी ये काफी अच्छी साबित हुई है और ये जो 105 से 107 दिन के करीब ये पकती है और इसकी प्रति हेक्टर पैदावार की बात करूं तो 60 से 65 क्विंटल की ये प्रति हेक्टर एक पैदावार दे देती है। ये जो किस्म है डीएमएच 117 ये मक्का में लगने वाले काफी रोग और कीड़ों के प्रति भी प्रतिरोधक पाई गई है। शशि जी, इसी प्रकार जो डीएमएच 121 किस्म है ये भी कोटा संभाग के लिए काफी उपयुक्त पाई गई है और ये डीएमएच 117 के मुकाबले थोड़ी सी जल्दी पक जाती है और इसकी पैदावार करीब 160 से 165 क्विंटल प्रति हेक्टर करीब हो जाती है।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ये आपने जो किस्मा बताई छे तो ये यहाँ की जो हार्ड होती की जलवायु छे उनका अनुकूल छे, यहाँ की मिट्टी का अनुकूल छे, पर अब बात आओ छे कि ये जो फसला छे, ये जो किस्मा छे, यहाँ को बीज किसान बन भाई कहते हैं कहाँ से मिलेगो और वह कहाँ पर जाकर संपर्क कर सके छे?
0: शशि जी, किसान भाइयों को ये जो मैंने जो ज्यादातर हाइब्रिड और वेराइटियां बताई है ये सरकारी सिस्टम की है, प्राइवेट सेक्टर की कुछ एक हाइब्रिड है, लेकिन इनका जो बीज है ये आपको उदयपुर में भी उपलब्ध हो सकता है और राजस्थान बीज निगम में कई किस्मों का जो बीज उपलब्ध है। इसके अलावा जो है जो प्राइवेट की कुछ जो हाइब्रिड्स मैंने बताए हैं वो जो है किसान भाई इनके जो ऑथराइज्ड डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं कोटा संभाग में, वहां से प्राप्त करें। बीज खरीदते समय किसान विशेष ध्यान रखें कि आजकल बीज में जो है नकली बीजों का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये जो है मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल विक्रेता है वहां से खरीदें और पक्का बिल लें और जब तक फसल पक्के पूरी तैयार नहीं हो जाती तब तक बिल्कुल भी संभाल के रखें ताकि किसी प्रकार कोई समस्या है तो उसका सुलझा किया जा सकता है।
1: बिल्कुल, जो बीज को कट्टो आओ छे तो ऊपर भी कोई पहचान आती होगी ना कि भाई यो बीज प्रमाणित छे, यहाँ पे यो बने छे, कान का ऐसी लिखी हुई आती होगी ना।
0: सचिव भाई, किसान भाइयों को जो बुआई के लिए काम में लिया जाता है वो प्रमाणित बीज काम में लिया जाता है और उसमें जो टैग लगा रहता है उसमें उसकी अंकुरण की क्षमता, भौतिक शुद्धता, जेनेटिक आनुवंशिक शुद्धता ये सभी लिखा रहता है। इसके अलावा भी जो है कई बार नकली बीज का जो है देखने में आया है, तो इसीलिए किसान भाइयों को मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि बीज के बिल को संभाल के रखें और उसके साथ जो टैग है उस टैग को भी तब तक संभाल कर रखें आप जब तक आपकी फसल जो है कट के और घर में नहीं आ जाती।
1: बहुत बढ़िया चे। अब बात आओ चे, आपने शुरू में खींच के बीज उपचार किसान बन भाई जरूर करे, तो मक्का में की तरीका से बीज उपचार करनी चाहो?
0: शशि भाई, किसान भाइयों को पता है कि सभी फसलों में जो है अगर बीज उपचार करके बोया जाए तो काफी कुछ बीमारियों और कीड़ों से बचा जा सकता है, तो इसी प्रकार मक्का में भी जो है बीज को बोने से पहले जो है बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए जो है फिप्रोनिल नाम की एक दवा आती है जो करीब 4 मिलीलीटर 1 किलो के हिसाब से किसान भाइयों को ये उपचारित करके बोना चाहिए। और जैसा किसान भाइयों को पता है कि बुआई के लिए मक्का की करीब 20 से 25 किलो बीज की एक हेक्टर के लिए, यानी अगर मैं बीघा की बात करूं तो 6 किलो के आसपास जो है प्रति बीघा इसकी आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो मक्का की बुआई जो है वर्षा के आगमन पर की जाती है, लेकिन फिर भी बुआई के लिए जो उचित समय है जो जून का अंतिम सप्ताह या जुलाई का प्रथम सप्ताह इसका होता है, और जैसा कि अभी शुरुआत में किसान भाइयों को बताया कि इस बार मानसून थोड़ा देरी से चल रहा है और अभी जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून के आने की संभावना है, तो 10 जुलाई तक किसान भाइयों को इसकी जो है बुआई निश्चित रूप से कर देनी चाहिए और 10 जुलाई के बाद अगर किसान भाई इसमें बुआई करते हैं या देरी करते हैं तो इसमें जो है प्रतिदिन जो है उत्पादन क्षमता इसकी घटती जाती है। और थोड़ा सा मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूंगा कि मक्का में जो है दूरी का जो है कतार से कतार की दूरी का और पौधे से पौधों की दूरी का जो है समुचित ध्यान रखें। मक्का को हम करीब 2 फीट की दूरी यानी 60 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाते हैं, कई किसान भाई करते हैं कि बहुत नजदीक नजदीक और जो है ज्यादा बीज डाल देते हैं, उससे जो है पौधों को आपस में फल फूलने का जो है पूरा जगह नहीं मिलती और मक्का के भुट्टे छोटे रह जाते हैं, भुट्टे छोटे रह जाते हैं तो दाने भी छोटे रह जाएंगे और जो है इसके प्रतिफल ये होता है कि प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है वो कम हो जाती है। साथ ही मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूंगा किसान भाइयों को, जब मक्का बोए तो उसको ज्यादा गहराई पर नहीं बोए, ये 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा बोने से अंकुरण क्षमता पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सभी बीजों का अंकुरण

0: पूर्ण तरह से नहीं हो पाता।
1: बिल्कुल। और देखा जाए अपन का किसान बन भाया के जो फसल व पौधा करे चो तो उनमें एक खरपतवार की समस्या हो चो और कीड़ा बीमारी भी लागे, तो मक्का में खरपतवार की समस्या की तरह की रह चो और उनकी रोकथाम किसान बन भाई कैसे कर सके चो?
0: शशि भाई, खरीफ के मौसम में यानी बरसात के मौसम में जो फसलें होती है बुआई बोई जाती है उनमें जो है खरपतवार का प्रकोप हमारी रबी वाली जो फसलें हैं जैसे ये गेहूं चना और सरसों इसके मुकाबले काफी ज्यादा होती है खरीफ वाली फसलों में। तो मक्का की फसल को शुरू के जो है करीब 30 दिन तक एक महीने तक जो है खरपतवार से मुक्त रखना बहुत ही जरूरी है, इससे जो है आपके उत्पादन पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए किसान भाई जो है बुआई के तुरंत बाद यानी बुआई करके अगले ही दिन जो है अट्राजिन नाम की एक दवा आती है जिसका आधी किलो सक्रिय तत्व के हिसाब से यानी करीब 1 किलो अट्राजिन को 600 लीटर पानी में घोल के और छिड़काव कर देना चाहिए। ये एक तरह की प्री इमरजेंस जो है खरपतवार नाशी है, यानी ये जो है आपके खरपतवारों को उगने ही नहीं देगी, उगने से पहले ही नष्ट कर देगी। तो ये करीब 30 दिन तक जो है खेत को खरपतवारों से मुक्त रखती है। इसके अलावा अगर खरपतवार दिखाई दे चौड़ी पत्ती या सगड़ी पत्ती के तो इसके लिए टेपरामेजोन नाम की एक दवा आती है, इसको 25.2 ग्राम जो है दवा या टेम्बोट्रान नाम की एक दवा आती है जो 28.7 मिलीलीटर दवा को जो है प्रति हेक्टर की दर से बुआई के करीब 15 से 20 दिन के बाद किसान भाइयों को इसका छिड़काव कर देना चाहिए। इसे सकड़ी और चौड़ी पत्ती सभी तरह के जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे।
1: बिल्कुल सांची बात है। अंत में डॉक्टर साहब, आप किसान बन भाया के लेकर मौसम का ताय देखता हो या मानसून का ताय देखता हो या कहीं सलाह दे चाहोगा जिससे वो मक्का की खेती कर रहे तो इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, ज्यादा उत्पादन ले सके?
0: मैं किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मक्का की जो खेती है वो मक्का की नहीं बल्कि किसी भी फसल की जो खेती आप वैज्ञानिक तरीके से करें, आपकी फसल में जो आपकी मेहनत होती है और लागत जो होती है वो तो वैसे ही होनी लगती है। तो आप जो है ये वैज्ञानिक तरीके से जो है खेती करें, इसमें खाद और उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें, समय समय पर कीड़ों का जो है प्रबंधन करें और खरपतवार का जो है प्रबंध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा किसान भाइयों किसी तरह की मक्का की जो है किसी प्रकार की सहायता की अगर जरूरत पड़ती है तो आप किसान भाई जो है हमारे कृषि विश्वविद्यालय कोटा में या कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मीदगंज पे जो है वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया। डॉक्टर पवन कुमार प्रेम मीणा साहब, आप चौपाल कार्यक्रम में पधारे और मक्का की उन्नत किस्म और खेती का बारे में आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, उनके लेकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम किसान भाई, राम राम।
2: कितनी बढ़िया बात आपने ताई डॉक्टर पवन कुमार प्रेम मीणा जी ने मक्का की खेती से संबंधित बताए, काजगर भाई बनाओ माँ की बात पर अपन वे अमल करनो छे और वैज्ञानिक तरीका से खेती करनी छे ताकि अपन वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो और ज्यादा से ज्यादा वहाँ का दाम अपन वे मिले। काजगर भाई बनाओ, अब हो गयो चौपाल कार्यक्रम में एक मीठा सा लोकगीत को टम सोमवार को दंच, तो सुन लिया भोलेनाथ को एक मीठो सो लोकगीत जगन्नाथ गोचर की आवाज में।

कतनो बढ़िया लोक गीत छो भगवान भोलेनाथ को, सावण को महीनो भी आबाड़ हो तो शंकर भगवान को स्मरण कर लियो अपन ने बहुत ही बढ़िया बात है। कादगार भाई बनाओ, कादगार भाई बनाओ चौपाल कार्यक्रम में जानकारी को भी एक विषय है। आज चौपाल कार्यक्रम में जानकारी को विषय फसल विविधीकरण, फसल विविधीकरण हो कहीं ये विषय में आप भी जानकारी दे दीजू। फसल विविधीकरण एक ही खेत में एक फसल की बजाय एक से अधिक फसलें उगावो, या पारंपरिक फसलों के साथ साथ नई या उच्च मूल्य वाली फसलों के ताई शामिल करबो, या कृषि चक्र में बदलाव करबो, ये फसल विविधीकरण के अंतर्गत आओ छे। कादगार भाई बनाओ, कादगार भाई बनाओ फसल विविधीकरण अपनार अपन अपनी आय के ताई दुगुनी कर सका छ। जिसे फसल विविधीकरण का भी दो तीन प्रकार छे, फलो प्रकार छे अंतर फसल। एक फसल के साथ साथ अपन दो फसलां बो सका छ, एक ही मौसम में दो फसला बो सका छा और आपन दुगुनो लाभ कमा सका छा। फिर उसके बाद आओ जो फसल चक्र, जैसे आपन खरीफ की फसल में एक फसल फसल जैसे पली, जैसे पली सोयाबीन ले ली तो अब आपन उम्र चेंज कर सका छा, अब आपन वहाँ धान बा सका छा। तो फसल चक्र अपना भी अपन फसल विविधीकरण के ताई आगे बढ़ा सका छा। इसके बाद आओ जो मिश्रित खेती, फसल के साथ साथ अपन पशुपालन, मुर्गी पालन या मछली पालन जैसे घना कृषि से जुड़िया अन्य कार्य कर सका छा, ताकि अपन भी दोहर लाभ मिल सके। ये फसल फसल विविधीकरण का अंतर्गत आओ छे। कादगार भाई बनाओ, एक साथ ही कादगार भाई बनाओ आज कोटा मंडी का भाव भी अपने पास आ गया। कोटा मंडी का भाव ही प्रकार से कादगार भाई बनाओ, कोटा मंडी में गेहूं बकिया जा 2301 रुपया प्रति क्विंटल से लेर 2655 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों बगीचे 6841 रुपया से लेर 7751 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन बगीचे कासगार बनाओ 6000

451 रुपए से लेकर 6,922 रुपए प्रति क्विंटल। धान बगीचे का आज गारबाई बनाऊं 3,801 रुपए से लेकर 4,561 रुपए प्रति क्विंटल। धनों बगीचे का आज गारबाई बनाऊं 10,475 से लेकर 15,051 रुपए प्रति क्विंटल। उड़द बकियाचे 5,675 सुलेर 8,270 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग बकियाचे 6,850 सुलेर 7,611 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का बकीचे 1,911 सुलेर 2,111 रुपया प्रति क्विंटल। चना बकियाचे 5,311 रुपया सुलेर 5,641 रुपया प्रति क्विंटल। लसन बगीचे का गारबाई बनाऊं 7,370 सुलेर 17,525 रुपया प्रति क्विंटल। ये चा कोटा मंडी का भाव का गारबाई बनाऊं। एक साथ ही चौपाल कार्यक्रम को टाइम पूरा होयो। द्योता का सुरेंद्र भाई के ताई इजाजत चला छा। राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटाबूंदी के चंबल चैनल से, FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला की रेडियो रिपोर्ट। श्रोताओं नमस्कार, प्रस्तुत है प्राकृतिक खेती पर राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम नयापुरा कोटा में आयोजित जिला स्तरीय वृहद कार्यशाला की रेडियो रिपोर्ट। श्रोताओं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को रसायन मुक्त कृषि के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कृषि विभाग कोटा की ओर से आज सोमवार दिनांक 29 जून 2026 को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम कोटा में जिला स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े विषयों पर किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम कृष्ण बिरला रहे। कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री संदीप शर्मा, लाडपुरा से विधायक श्रीमती कल्पना देवी, जिला प्रमुख कोटा श्री मुकेश मेघवाल, जिला कलेक्टर कोटा श्री पीयूष सामरिया भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कृषि विभाग कोटा के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में पधारे अतिथियों को साफा पहनाकर एवं पौधा भेंट कर पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले श्री अतीश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद कोटा ने स्वागत उद्बोधन दिया और विभाग की कार्य योजनाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी दी।
1: आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला के अवसर पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम जी बिरला साहब का जो आज सानिध्य हमें मिला है, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे इस लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की विधायिका माननीय कल्पना देवी जी, जो हमारे बीच में अपना समय निकाल करके बिराजी हैं, जिनके सानिध्य में हम सभी विभाग जो काम करते हैं, हमारे मुखिया जिले के जिला कलेक्टर सम्मानीय पीयूष जी समरिया साहब जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। सर, ये जो कार्यशाला एक अनूठा पहल जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिले में ही नहीं पूरे भारत देश में, ये मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक मृदा का जो संगठन होता

है उस संगठन को भारत सरकार ने पहचाना, वैज्ञानिकों ने पहचाना कि हमारे पास जो मृदा का संगठन है उसमें 50% सॉलिड होता है और 50% हमारा लिक्विड होता है। 50% जो हमारा सॉलिड है उसमें 45% हमारा भाग मिनरल्स होते हैं और 5% हमारा भाग उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। बाकी 25% जो सॉइल का कंपोजिशन है उसमें एयर होती है और 25% में वाटर होता है। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। आज हम देखेंगे सर हमारे पास जो मेन इश्यूज जो आ रहा है केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल करके हमारी सॉइल्स में आज 65% हमारे जिले की जो मृदा है उनमें ऑर्गेनिक कार्बन जिसका लेवल 0.5% से भी कम हो चुका है सर, ये स्थिति है सर। यही नहीं सर, ऑर्गेनिक कार्बन की कमी की वजह से हमारी सॉइल में सर 28% लोह तत्व की कमी हो गई है सर और 22% हमारे जो जिंक की कमी है सर, ये कमी भी हमारी क्रॉप्स में भी प्रदर्शित हो रही है। साथ साथ ये कमी जो हमारा प्रोड्यूस है हम लोग खा रहे हैं वो हमारे मानव स्वास्थ्य पर भी ये रिफ्लेक्टेड हो रहा है। ये कमियां मानव के स्वास्थ्य में भी लोह तत्व की कमी भी दिखाई दे रही है और जिंक की भी। हम लोग इस तरफ जो है अगर ध्यान देंगे तो ये कमियां हम केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग करके ही हम लोग दूर कर सकते हैं। सर हमारा विजन है सर, सरकार का जैसा विजन है कि 2047 तक सर हम लोग इसको 25% फार्मर्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा एरिया है सर 2,65,000 इसको कन्वर्ट करेंगे हम 25% तक सर लेके जाएंगे। एज ऑन डेट सर हमारे पास जो आज ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो स्टेटस है सर, हमारे पास करीब 4% किसानों की खेती हमारे कोटा जिले की सर कन्वर्ट हो चुकी है ऑर्गेनिक फार्मिंग में और ऑलमोस्ट फार्मर सर ये अवेयर हो गया है कि मेरे को अपने स्वास्थ्य के लिए तो कम से कम 1-2 बीघे की खेती तो करेंगे सर। हम लोगों ने सर पिछले साल जैसा हमें मार्गदर्शन मिला था सर, नेचुरल फार्मिंग जब से स्टार्ट हुआ जिले में सर 4,375 फार्मर्स को हम लोगों ने सर सेलेक्ट किया और इसके तहत किसानों को असिस्टेंस भी दिया 1,75,00,000 का। 1,75,00,000 का सर सीधा DBT किसानों के खातों में केवल इस बात के लिए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मोटिवेट हों। मोटिवेशन में केवल फील्ड की डिमार्केशन इसके लिए सर 2,000 रुपये दिए गए। साथ में जो गाय है उसका जो गोबर है उस गोबर से जो हम उत्पाद बनाएंगे उस उत्पाद को बनाने के लिए हमने उनको बड़े बड़े ड्रम्स और मग्गे स्प्रेयर्स ये चीजें उन्होंने किसान के पास स्वयं थी उसका पैसा सर 2,000। इस तरह से हम लोगों ने सर किसानों को 4,000 रुपये का 4,375 फार्मर्स को 1,75,00,000 रुपये का सर असिस्टेंस डिपार्टमेंट ने दिया है। इसी के पैरेलल परंपरागत कृषि विकास योजना जो चल रही है हमारे पास 60 क्लस्टर्स ऐसे हैं, इसमें भी करीब हमारे साथ 2,200 हेक्टेयर एरिया हमारा सर इसके अंतर्गत कवर हो रहा है। तो करीब जो अलग अलग इंस्टीट्यूट है उनको मिलाकर के सर जिले में आज की तारीख में 4% यानी कि करीब 8,600 हेक्टेयर एरिया हमारा सर एज ऑन डेट जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल फार्मिंग में ये कन्वर्ट हो चुका है सर। जैसा कि सर आपका मार्गदर्शन है कि हम किस तरह से किसानों को इस तरफ लेके जाएं, जगह जगह सर हम लोग कृषि विभाग गोष्ठी आयोजित कर रहा है सर, गांव लेवल पर, क्लस्टर लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर सर, ब्लॉक लेवल पर हम लोगों ने ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की हैं। आज मूर्त रूप सर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कार्यशाला है सर आपके सानिध्य में यहां संपन्न हो रही है सर। तो निश्चित तौर पे एक सर कारवा मिशन जो शुरू हुआ है डिपार्टमेंट ने जो शुरू किया है, जैसा कि फार्मर्स भी फील करने लगा है कि अगर हम जैविक उत्पाद पैदा नहीं करेंगे तब तक हम हमारे स्वास्थ्य को ठीक नहीं करवाएंगे और ये आज की आवश्यकता ही है। अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सर पिछले दिनों हुआ था सर, जैसा आपका निर्देशन था कि यहाँ के वैज्ञानिकों के साथ में किसानों की एक रूबरू कार्यशाला हो, किसानों का विजिट हो सर, जो संस्थानों का रखा उनको देखे, पूरे राजस्थान के सर ऑफिसर्स यहाँ 4 तारीख को विजिट करेंगे सर। यही नहीं सर, यहाँ पे कई ऐसे बायो रिसोर्स सेंटर्स भी हैं सर जिले में जो खुद पैदा कर रहे हैं, जैसे एक लटूरी गौशाला है सर, ये खुद जो अपना उत्पाद पैदा कर रही है सर और उनको मार्केटिंग कर रही है सर, उसको हम लोगों ने सर बायो रिसोर्स सेंटर के रूप में हम लोगों ने चयन किया है। 2 बायो रिसोर्स सेंटर हम लोगों ने पिछले साल बनाए थे जिनको 1,00,000 रुपए हम लोगों ने दिया, अभी फिर बनाएंगे और प्राकृतिक खेती को करने के लिए भी आप एकजुटे सर, हमारा पूरा कारवा तैयार है सर। हम लोग पूरे जिले में ही नहीं पूरे संभाग में सर, जैसा कि हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं सर, हर जगह ये चीजें चल रही हैं और जिले में जो है काफी अच्छी द्रुत गति से सर सारी संस्थाएं, चाहे वो गौशाला हो, चाहे कोई वायर रिसोर्स सेंटर्स हो, चाहे प्राकृतिक खेती के क्लस्टर्स हो, चाहे सर राजीव का की महिलाएं जो बैठी हुई हैं सर वो हो, ये सभी मिलके सर एक ऐसा क्लस्टर्स फॉर्म में
परंपरागत कृषि विकास योजना की ओर इनका मूवमेंट है सर। मैं इस अवसर

0: पर सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप कृषि विभाग को सर अपना स्पेशल अटेंशन देकर के एवरी डे आप चिंतित रहते हैं कि मेरे किसानों को कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, और ये कारोबार चलता रहेगा सर, आपका सानिध्य मिलता रहेगा, हम लोग सर इसी तरह से काम करते रहेंगे।
1: कृषि विभाग कोटा द्वारा प्राकृतिक खेती पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशालाओं में भाजपा कोटा देहात के जिला अध्यक्ष श्री प्रेम गोचर ने सभी किसानों से मिट्टी परीक्षण करवाने और उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने का आह्वान किया।
2: पूरे जिले से पधारे सभी किसान भाइयों, ये जो प्राकृतिक खेती की जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला की अति आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार किसान अपनी खेती में अनाज पैदा कर रहा है, वो अनाज धीरे धीरे जहरीला होता जा रहा है, जो खाद डाल रहा है, जो दवाई डाल रहा है, उससे ज्यादा पैदावार पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा हमारे स्वास्थ्य लेके हानिकारक होती जा रही है। इसलिए प्राकृतिक खेती की जिस प्रकार से हम पूर्व में

0: मिला होता जा रहा है, जो खाद डाल रहा है, जो दवाई डाल रहा है, उससे ज्यादा पैदावार पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा हमारे स्वास्थ्य लेके हानिकारक होती जा रही है। इसलिए ही प्राकृतिक खेती कि जिस प्रकार से हम पूर्व में खेती करते थे कि बरसात की जो खेती होती थी, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, उस खेती में बिना खाद के, बिना दवाई के पैदा होती थी और उसको जब आदमी खाता था तो स्वस्थ रहता था। कहते थे कि मोटा खाओ, मोटा पहनो और स्वस्थ रहो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि मेरा देश का व्यक्ति, मेरा देश का किसान समृद्ध हो, कुशल हो, स्वस्थ हो, ऐसी भावनाओं को लेकर काम कर रहे हैं। इसमें विशेष फोकस है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। हमें इस ओर सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। जिन लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने पहले खाद डाला होगा तो 10 किलो डाला होगा। सरों में जब खाद आया था तो लोग कहते थे कि खाद डालेंगे तो हमारी जमीन खराब हो जाएगी, लेकिन आज वही स्थिति हो गई कि ज्यादा खाद डाल रहे हैं और हमारी जमीन खराब हो गई है। हमारी जमीन का परीक्षण करना चाहिए, जमीन को किस आवश्यकता है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की है, या किसकी आवश्यकता है। किसी एग्रीकल्चर विभाग के किसी कृषि विभाग से किसान जानकारी नहीं लेता है। किसी दवाई की दुकान पे जाएगा और वह लाखों रुपए की दवाई उसके बांध देता है, ये ले जाओ, ये जमीन में इसको डालोगे तो मोटा तना हो जाएगा, फफूंदी नहीं आएगी, इससे फला नहीं होगा, आगे आने वाले में कीट नहीं लगेगा। लेकिन आप सबको पता है कि ये दवाई 15 दिन से ज्यादा काम करने वाली नहीं है, आपको दोबारा दवाई डालनी पड़ेगी। लेकिन किसान के बिना जागृति के, बिना सोच के उसमें काफी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है। हम सब आज बिना गोबर की खाद डाले हुए ही फसल पैदा करना चाहते हैं। आपने देखा होगी छोटे छोटे कहीं ऐसे किसान भी बैठे होंगे जो स्वयं के खाने के लिए तो जैविक खेती करते हैं। तो क्यों नहीं हम लार्ज स्टेज पे इसमें करें ताकि हम भी स्वस्थ रहें और हमारे अनाज को बेचने के बाद जो खाएगा वह भी स्वस्थ रहे। ऐसी भावनाओं से हमें काम करना चाहिए। कई लेक्चरारों ने अभी लेक्चर दिए होंगे कि किस प्रकार से गोबर की खेती, जो नीम के पत्ते से खेती, नीम के पत्ते के घोल से दवाई का स्प्रे करके हम फसल को बचा सकते हैं। कृषि के बड़े बड़े तकनीकी लोग कोटा के अंदर आ रहे हैं, कार्यशाला कर रहे हैं, किसानों को सिखा रहे हैं तकनीकी खेती कैसे हो सकती है, इसमें कैसे आमदनी उसकी बढ़े, खर्चा कम हो, इस प्रकार की योजना के तहत हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, कार्य योजनाएं बनाई जा रही है ताकि हमारा किसान खुशहाल रहे।
1: किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देती हुई आप हैं श्रीमती कल्पना देवी, विधायक लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र।
2: यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों सभी को मन से मेरा राम राम नमस्कार। यहाँ आपके साथ थोड़ा समय बिता रही थी और आपके साथ मेरा भी ज्ञान बढ़ा है। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सरकार ने पूरे क्षेत्र में सबकी अलग अलग जरूरतों के अनुसार बहुत सारी योजनाओं को आपको ध्यान में रखते हुए भी लागू किए हैं। किसान, युवा, महिला और मजदूर, इनके ऊपर विशेष उन्होंने ध्यान दिया है और योजनाओं उनके तहत बनाई है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करती हूँ तो जिस तरीके से, क्योंकि ये उदाहरण मैं मेरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए दे रही हूँ कि किसान को कैसे प्राथमिकता दी है और उनके लिए कैसे विशेष ध्यान में रखते हुए योजनाएं या बजट घोषणा की बात करें तो ये करके दिखाया है। पहले बजट में उन्होंने जो आलिया बांध से सिंचाई के लिए, जो सारे गांव वहां से सिंचाई का पानी लेते थे, उनके जो कम बारिश में समस्या होती है उसको ध्यान में रखते हुए 2 करोड़ रुपए की DPR स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा मंडाना जो डार्क जोन है वो पूरा क्षेत्र केवल बारिश के पानी पे निर्भर था और वो दूसरी फसल नहीं ले पाते थे, तो उनके लिए भी 2 करोड़ रुपए की DPR पहले बजट में स्वीकृत की गई। और मुझे गर्व है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के सहयोग से आलिया बांध की जो समस्या थी उसके लिए 100 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हो गए हैं क्योंकि DPR तैयार हो गया। और आने वाले समय पे मंडाना क्षेत्र के लिए भी DPR बन चुका है और जल्द ये भी स्वीकृत

0: हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये बात बताई गई है कि आप लोग इतना फर्टिलाइजर केमिकल यूज कर करके आप अपनी जमीन की उपज खराब कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम 5 बीघा अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं या 10 बीघा छोड़ के जा रहे हैं, पर क्या मतलब है अगर उसका उपज आप खत्म करके अपने अगले पीढ़ी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो ये आप एक तरीके से अन्याय भी कर रहे हैं। तो यहाँ जो बातें आपको बताई जा रही है इनका आप ध्यान रखेंगे, ग्रहण करेंगे और अगर अपने कार्यशैली में उसको आप लागू भी करेंगे तो वाकई में आप लोग लाभान्वित होंगे। मैं भी एक अभी कार्यशाला में गई थी, वहां जो कार्यशाला ले रहा था वो बता रहे थे कि हम यहाँ से सब आपको ज्ञान दे सकते हैं, पर अब आप उस ज्ञान का क्या मतलब निकालते हैं और कैसे ग्रहण करते हैं ये आपके ऊपर है। ऐसा ना हो कि यहाँ से जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है आप अलग तरीके से उसको ग्रहण कर रहे हैं। सही मायने में उसका ग्रहण करेंगे तभी आप लाभ पाएंगे। तो इसका जरूर ध्यान रखें और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, पर जो ज्ञान दिया जा रहा है आपके फायदे के लिए है और सही तरीके से उसका ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।
1: अपने संबोधन में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की बात कही।
2: सभी अन्नदाता किसान भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब अन्नदाता हैं, देश और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम से आप अन्न पैदा कर देश की खाद्य सुरक्षा को पूरा करने का काम कर रहे हैं और इसीलिए हमेशा हमारे अन्नदाताओं का विशेष सम्मान रहा है। आज हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक खेती हमारी विरासत है। प्राकृतिक खेती हमारी विरासत के साथ हमारा दर्शन है। आजादी के बाद जब देश में जनता की सरकार आई तो अलग अलग कालखंड के अंदर अलग अलग सरकारों ने किसानों की आमदनी बढ़े, किसान आत्मनिर्भर बने और उनकी जीवन समृद्धि खुशहाली आई, अलग अलग समय में काम किया। किसान के खेत तक पानी पहुंचाना हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। आप सबको जानते हैं कि सिंचाई परियोजनाएं में बनने में और उसको जमीन में आने में समय लगता है, लेकिन चाहे ERCP की योजना हो, चाहे परवन की योजना हो, उन सारी योजनाओं को इसी कार्यकाल के अंदर एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे और कई योजनाओं को इस साल पूरा करने का काम भी करेंगे। जब किसान के खेत तक पानी पहुंचेगा और मिट्टी को हम संरक्षण करने का काम करेंगे, हम प्राकृतिक खेती की ओर जाने का काम करेंगे, क्योंकि हम सबके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया कि हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम जिस अंधाधुंध तरीके से फर्टिलाइजर केमिकल का यूज कर रहे हैं उसके कारण हमारी जमीन की क्षमता कम होती जा रही है। हम पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी विचार करना होगा कि हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए हमारी जमीन उपजाऊ भी रहे, टिकाऊ खेती भी हो, उसके लिए हमें हमारी जमीन को संरक्षण करने की आवश्यकता भी है। हमें जैव विविधता के सुरक्षित रखने का काम भी करना होगा। हमें लागत कम, उत्पादन बढ़ाने में प्राकृतिक खेती के नए तरीकों को अपनाना पड़ेगा और इस कार्यशाला इसी बात की रखी गई है और कई किसानों ने इस प्राकृतिक खेती के श्रेष्ठ परिणाम भी अपने खेत पर करके देखे हैं और उसके परिणाम भी आए हैं, लेकिन हमें और किसानों को प्रेरणा देनी होगी। ये धरती माँ हमारी है, इसको उपजाऊ रखना, इसको टिकाऊ रखना, जैव विविधता का संरक्षण करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसलिए मेरा भी आपसे आग्रह रहेगा कि जिन जिन किसानों ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से अपनी जमीन को भी सुरक्षित रखा है और उत्पादन भी बढ़ाया है, ऐसे किसानों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा किसान जब तक दूसरे किसान की प्राकृतिक खेती को नहीं देखेगा, जब तक वह

अपने यहां प्राकृतिक खेती नहीं करेगा। हम परंपरागत रूप से प्राकृतिक खेती करते थे, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं। न हम कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते थे, न फर्टिलाइजर का उपयोग करते थे। हमारे खेती के संसाधन उसी में से ही खाद बनता था, उसी के अंदर ही हम खेती को जोतने का काम करते थे। ये सबको पता है। लेकिन आज जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन वैश्विक चुनौतियां है, इस कालखंड में हम प्राकृतिक खेती के माध्यम से ही हम हमारी उपज को बचाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जहां खेती में पड़ता है, मानव पर भी पड़ता है, जीवन के हर चक्र में पड़ता है। किसान की जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है, मैं जानता हूं। सरकार ने कई तरह की योजनाएं लाई है, उसके बाद भी किसान का जोखिम ज्यादा है। उस जोखिम को बचाने का एकमात्र उपाय भी प्राकृतिक खेती है। और जो हम समय समय पर करते थे कि जैसी प्रकृति जैसी जलवायु वैसी खेती, लेकिन आज समय चक्र में कुछ परिवर्तन हुआ है और इसलिए हमें टिकाऊ जलवायु अनुकूल खेती करने के प्रयासों की दिशा की ओर काम करने की आवश्यकता है। मेरा किसानों से आग्रह रहेगा कि कुछ कोटा जिले के अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट इस तरीके के लगे हैं जिन्होंने साबित करके दिखाया है कि प्राकृतिक खेती से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। वहां पर शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हमें परंपरागत खेती के साथ साथ खेती लाभप्रद हो, खेती से आमदनी बढ़े, इसके लिए पशुपालन से लेकर फल उद्यान की दिशा की ओर भी हमें जाना पड़ेगा। सब्जी और फलोद्यान के लिए इसी जुलाई महीने के अंदर देश की दिल्ली और बंबई की बड़ी मंडियों को हम आपसे कनेक्ट करने का भी काम करेंगे कि आप कोटा में बैठकर दिल्ली में किस सब्जी का क्या भाव है, बंबई में किस सब्जी का क्या भाव है, ताकि यहां से माल लेकर आप जाएंगे और वहां व्यापारी आपके माल को खरीदेगा। इसकी कनेक्शन करने का योजना भी जुलाई में हम बना देंगे। और रोड कनेक्टिविटी के कारण हमारा 8 लाइन आने वाले समय के अंदर दिल्ली में 4.5 घंटे और बंबई में 8 घंटे, 6 महीने बाद यहां किसान रात को 12 बजे चलेगा, दिल्ली 5 बजे पहुंचेगा, 9 बजे सब्जी बेचकर घर आकर सोएगा। ये कार्य योजना बनाने की योजना हमने बना दी है। आपको सिस्टम बना रहेगा कि दिल्ली के आजाद मंडी और गांव का बेटा किसान सीधा कनेक्ट रहेगा और आज का भाव किसका क्या है, आपने भाव भरा और व्यापारी आपके इस भाव के अंदर बेचने का काम करेगा। इसकी मार्केटिंग लिंकेज योजना का प्लान मैंने दिल्ली में बैठकर बना दिया। इससे मैं चाहता हूं कि हमारे इलाके का किसान खेती के साथ पशुपालक बने, सब्जी उत्पादन करने का कार्य योजना बनाए, फल उद्यान की दिशा की ओर बढ़े। और इसीलिए हर पंचायत के अंदर आपको निशुल्क रूप से 1000 पौधे फलोद्यान के मिलेंगे, ताकि धीरे धीरे धीरे हम फलोद्यान करने का प्रयास करें। और जैसा उन्होंने कहा, एफपीओ के माध्यम से भी आप फलोद्यान की एक नई योजना बना सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी के, चाहे अमरूद के, चाहे आम के, चाहे नींबू के, जामुन के, ये पेड़ हमारी जलवायु में उगते हैं। केवल एक बार प्रयास करने का काम करें। जब धीरे धीरे आप ये प्रयास करोगे तो मैं सभी तहसील हेडक्वार्टर पर आपको देश की सबसे बढ़िया प्रजाति जो यहां की जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है उनकी नर्सरी लगाने का काम भी होगा, ताकि नजदीक उसको फलोद्यान मिल सके और फलोद्यान की दिशा की ओर हम बढ़ सके। हमारे यहां पर अच्छे आम हो, नींबू हो, पपीता हो, जामुन हो, फिर हमारी महिलाएं जामुन के प्रोसेस करकर जामुन के जूस, जामुन का पाउडर जो डायबिटीज के लिए ठीक रहता है, यहां के आम देश और दुनिया में हम बेच सके, यहां का पपीता हम बेच सके, यहां के नींबू हम बेच सके। जैसे एक व्यक्ति के बहुआयामी प्रतिभा होनी चाहिए, वैसे ही खेती के लिए हमें विभिन्न योजनाएं बनानी पड़ेगी कि हम खेती के साथ पशुपालन भी करें, फलोद्यान भी करें, कुछ सब्जी भी करें, और धीरे धीरे धीरे हम उसकी मार्केटिंग लिंकेज का काम करने लगेंगे। जब बड़ी मात्रा के अंदर सब्जियां होने लगेगी तो 50 किसान की सब्जी एक जगह आई, स्टोरेज करी, सीधे दिल्ली

0: बम्बई गई और बेचकर आ गई, एक सिस्टम डेवलप कर देंगे। 10 गांव के नींबू का कलेक्शन सेंटर, नींबू आया दिल्ली गया, बम्बई गया, कौन से मंडी में भाव है, बेचकर सुबह आ गया। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर खेती को लाभ का बनाना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगियों को बेहतर करना है, तो हमें खेती के बहुआयामी तरीकों को अपनाना पड़ेगा। मैं कृषि विभाग के अधिकारियों को कहूंगा योजनाबद्ध बनाएं, फल उद्यान के 1-2 लाख जितने भी पौधे हैं, अच्छी क्वालिटी के पौधे किसान को देने का काम करें, पहले निःशुल्क देने का काम करें, जब धीरे धीरे हो जाएगी तो हम नर्सरी डेवलप करने का काम करेंगे। मैं आपका सेवक, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे किसानों की जिंदगी सुधरे, समृद्ध हो, खुशहाल हो, और उसके लिए जो भी प्रयास करने की आवश्यकता है समय समय में मैं करता रहता हूं, लेकिन आपको भी सहयोग करने की आवश्यकता है। अगर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो प्राकृतिक खेती करनी है, ताकि हम पीढ़ी को भी सुरक्षित रखें, हमारी धरती माँ को भी सुरक्षित रखें और मानवता को सुरक्षित रखें। यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, यही हमारा धर्म और कर्तव्य है जो देश का किसान करते आया। आज हमें कम लाभ होगा लेकिन कल हमारी पीढ़ी बचेगी। ये प्राकृतिक खेती, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता।
1: कार्यशाला में कृषि विभाग के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से प्राकृतिक खेती की तकनीकों, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वर्मी कंपोस्ट, मृदा स्वास्थ्य तथा जल संरक्षण जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। अंत में डॉ. अशोक शर्मा, अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद कोटा ने सभी अतिथियों, विशेषज्ञों एवं उपस्थित किसानों का आभार व्यक्त किया। श्रोताओं, कृषि विभाग कोटा द्वारा प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला की रेडियो रिपोर्ट अब यहीं संपन्न होती है। इस रेडियो रिपोर्ट की प्रस्तुति तेजराम मीणा की, संयोजन हिमांशु नामा का और प्रस्तुति सहयोग शशिकांत सुमन का रहा। अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी नचा दे।
1: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी कहीं भी आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।

श्रोताओं, ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। अब से कुछ ही देर में यानी रात्रि को 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:45 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या और फिर रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर।

रात 10 बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम, और रात 11 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। एफएम 102, एफएम 103 दशमलव 6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म जो जीता वही सिकंदर का गीत सुनिए, शब्द मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत जतिन ललित का।

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में पापा कहते हैं फिल्म का गीत अभी आपने सुना, संगीत राजेश रोशन का।
1: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: ओ पीव जी, ओ ढोला जी, ओ पीव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
1: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म कयामत से कयामत तक का गीत अभी आपने सुना। शब्द मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत आनंद मिलिंद का।

और आयुष और तमाम सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत बाजीगर फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और विनोद राठौड़ की, शब्द जफर गोरखपुरी के, संगीत अनु मलिक का।

और आयुष और तमाम सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत बाजीगर फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और विनोद राठौड़ की, शब्द जफर गोरखपुरी के, संगीत अनु मलिक का।

0: برلين نجم. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर हो

0: और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म एक विलन का गीत अभी आपने सुना, शब्द और संगीत मिथुन के।

जब वी मेट, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शान और उस्ताद सुल्तान खां की आवाजों में। इस गीत को लिखा इरशाद कामिल ने और संगीत दिया प्रीतम ने।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म ओम शांति ओम का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, शब्द जावेद अख्तर के, संगीत विशाल शेखर का।

0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर।
1: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी थोड़ी सी नचा दे।
1: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी कहीं भी आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।

एनिमल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज और संगीत विशाल मिश्रा का, शब्द राजशेखर के। और आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म का ये गीत, अरिजीत सिंह की आवाज में, शब्द कुमार के और संगीत अमाल मलिक का।

आयुषदेव आपको सुनवाते हैं फिल्म क्योंकि से, उदित नारायण और अलका याग्निक को, शब्द समीर के और संगीत हिमेश रेशमिया का।

बाबुल सुप्रियो को हंगामा में सुनिए, शब्द समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभिजीत भट्टाचार्य का लिखा गीत आपने सुना। फिल्म का नाम दंगल और संगीत प्रीतम का। आयुष दोनों आपको सुनवाते हैं फिल्म कपूर एंड सन्स का ये गीत। आवाजें हैं अरमान मलिक अमाल मलिक की, शब्द अभिरुचि चांद के और संगीत अमाल मलिक का।

और आयुष श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म ए दिल है मुश्किल से। आवाजें हैं प्रीतम और अरिजीत सिंह की, शब्द अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं और से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

जिधर देखें उधर मस्तियां हैं, शोखियां हैं, तेरी निगाहों के ए सनम, जरा घबरा के जरा शर्मा के लूटते जाना, जलवे हैं तेरी निगाहों के ए सनम।

धधक रहा है सीने में मोहब्बत का अंगारा, कोई क्या जाने कैसे बनेगा सहारा, ये बादल आवारा इसे कौन पहचाने।

ये रुत, ये नजारे, ये मस्त निगाहें भूलना नहीं है, ये पहली मुलाकात, ये प्यार भरी बातें जीने के सहारे इन्हें भूलना नहीं है।

तूफान उठाएगा ये जमाना, उठाने दो, दिल तो दौड़ता ही जाएगा अपनी मंजिल की ओर। नजरें मिली हैं तो सपनों की महफिल में शमा जलती ही रहेगी, दो दिल बढ़ते ही जाएंगे अपनी मंजिल की ओर।

0: सितारों का झिलमिलाना, चिरागों का जलना, दे रहा है इशारा, तुझे रोके तो कैसे। दिल पहले भी कब भरा था, आज भी प्यासा है, ये आजमाइश होती ही रहेगी, ए सनम तुझे रोके तो कैसे।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी

0: असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report.
0: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yuddha Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor, and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh, and